0: Sanathan World Cup updates on Hum, brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Build Caps Real Estate. Invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcaps.com. And Professional Visa Services, based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
1: हम पर आपको कुछ सनातन वर्ल्ड कप के अपडेट्स में दे दूं, जबकि 11 सनातन वर्ल्ड कप 2026 के जो ग्रैंड फाइनल्स है आज बिल मैकिनली पार्क में होने को है। दो पर MIB बा सनातन, ये जो कैटेगरी ओवर 55 है, ये सामना करेगी NZ रेकी रेकी सनातन का। तो याद रहे, शार्प 2 PM MIB बा सनातन टेक्स ऑन NZ राकी राकी सनातन। तो आप भी जाकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 3:10 PM पर NZ लोटोका लेजेंड्स, ये जो 50 का कैटेगरी है, इनमें NZ लोटोका लेजेंड्स ये सामना करेगी NZ रेवा सनातन का। तो दे टेक द फील्ड एट 3:10 PM NZ लोटोका लेजेंड्स, साथ में NZ रेवा सनातन। तो आप भी जाकर इनको सपोर्ट कर सकते हैं एट दी बिल मैकिनली पार्क ग्राउंड्स। और जैसे और कुछ अपडेट्स, रिजल्ट्स हमारे हाथ लगेगा, आपके साथ में शेयर करते रहेंगे।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जस्ट चिल
2: That's right, ये है जशिल आपके साथ में जबकि आज है 4th of October तो ऐसे में ऑन अ लेजी संडे आपको एंटरटेन कराता रहता हूँ और साथ में गाने भी सुनवाता रहता हूँ लेकिन बीच बीच में कुछ ज़रूरी बातें और क्वेश्चंस भी है जो आपसे पूछता रहूँगा न्यूजीलैंड में एक लैंडमार्क बिल्डिंग है जिसको कॉमनली दिया गया है नाम बी हाइव क्या आप जानते हैं ये कौन सी बिल्डिंग है जिसका नाम कॉमनली दिया गया है बी हाइव और ये कहाँ पर है 5599 पर ज़रूर हमारे साथ में शेयर कीजिए मैसेज करिए हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ये लैंडमार्क बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉमन नेम है रेफर किया जाता है एस बी हाइव और ये कहाँ पर है और इसके बाद में थोड़ी और बातें भी बताऊंगा आपको लेकिन अभी के लिए ये जवाब ज़रूर भेजिए विच बिल्डिंग इज़ कोल्ड बी हाइव एंड वेयर इज़ इट 5599 पर

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और अभी जो करंट टेम्परेचर है ओकलैंड में ये 15 डिग्रीज तक है। मैं स्टूडियो से प्रोग्राम भी सिंगल लेयर में ही कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा मैसेज का प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है कि लोग जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हुआ आज। कोई बात नहीं, 1:30 बज चुके हैं। आपको अगर जो पता है कि किस लैंडमार्क बिल्डिंग को हम कहते हैं बी हाइव, तो ये ज़रूर भेजिए हमारे पास में। और जब आप जवाब लिख रहे हैं तो अपना जो कोई चॉइस का गाना आप सुनना चाहते हैं ये भी लिख कर भेज सकते हैं, तो एक ही मैसेज में दो दो काम हो जाएंगे आपके। लेकिन अभी के लिए पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा एक लैंडमार्क बिल्डिंग है जिसको प्यार से कॉमनली बी हाइव कहते हैं, यही हमें आपसे जानना है। 5599 पर अगर जो आपको पता है, तो जो मैसेज का जो टेम्परेचर है, तापमान है, इसे थोड़ा बढ़ाइए तो पता तो लगे कि आप भी सुन रहे हैं और प्रोग्राम करने में भी मज़ा आएगा। जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ है, पंपिंग नंबर सुनवाता रहूँगा और बीच बीच में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी छेड़ता रहूँगा आपके साथ में। Just chill.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर अ ब्यूटीफुल संडे, और ढेर सारे लोगों ने अब जवाब दे दिया है। अब लग रहा है कि मैसेज का जो प्लेटफॉर्म है वार्म अप हो गया है। श्रुति ने मैसेज किया है, ट्रेवल कर रही हैं और रास्ते पर सफर करते करते हमको सुन रही है, थैंक यू सो मच साथ में जुड़ने के लिए। आपने भी जवाब भेजा है और इसके साथ में ईमान आपने भी जवाब भेजा है सही, और आपने इस गाने की फरमाइश की है तो क्यों नहीं बजाएंगे आपके लिए। बिल्कुल, इसके बाद में एक और एक रिक्वेस्ट है सासों की माला की, ये भी आपके लिए बजाएंगे। बस थोड़ी देर में जवाब की ओर भी देखेंगे। तो जबकि पूछा था सवाल कि ऐसा कौन सा बिल्डिंग है, लैंडमार्क बिल्डिंग है न्यूजीलैंड में जिसको हम प्यार से कहते हैं द बी हाइव, और कहां पर है, यही आपको जवाब देना था। लेकिन अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गुड फॉर नथिंग
1: नथिंग ना ना ना ना नथिंग ना।

हम पर ये थे शंकर महादेवन। और अक्सर कहा जाता था ना, जब कुछ लोग या बड़े नाराज़ होते थे तो कहते थे यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ऐसे में ये गाना हमने प्ले किया जबकि रिक्वेस्ट आई थी इसकी। और साथ में 56040 आपकी रिक्वेस्ट

इस पर ये जो अगला गाना है बजाने वाले हैं अमीरा, जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है आई कुडंट फाइंड इट ऑन द सिस्टम, तो अगर जो आपके पास में कोई और रिक्वेस्ट है तो ज़रूर भेजें, लेकिन अभी के लिए ये जो गाना है हमने लिया है, यानी अभी हाल में आपने मिर्ज़ापुर में इसको सुना।

0: हम पर कुछ 18 मिनट बाकी है 2 बजने में, और जो सवाल किया था उसका जवाब था द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द न्यूजीलैंड पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, जिसका जो आकार है, शेप है, रिजेंबल करता है एक बी हाइव को, और इसीलिए ये कॉमन नेम। तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच ईमान आपके जवाब के लिए। साथ में पल आपने भी मैसेज किया था, इसके साथ में हमारे साथ में जुड़ गए थे क्वीन, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए। और साथ ही साथ में 56040 आपने भी जवाब दिया, श्रुति आपने भी ट्रेवल करते करते लिखा है, इसके साथ में अमीरा आपने भी जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह आपके लिए 2 पर स्ट्रेट आफ्टर 2 लेकर आएंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, आज का जो एपिक बॉलीवुड चैलेंज है ये होने वाला है, जबकि जो गाना हमने चुना है ये काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, तो स्टे ट्यून्ड, इसका भी इंतज़ार करते रहिए। बस थोड़ी ही देर में 2 के बाद स्ट्रेट आफ्टर न्यूज़, ये चैलेंज आपके साथ में रहेगा।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
3: Hey, hey. आज लिए माज लिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए ते।

Just Chill. जस्ट चिल में मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ और आपको बता दूँ जबकि 7th of November को इस साल यानी कि अगले महीने इलेक्शंस होने को है न्यूजीलैंड में, तो इसको लेकर काफ़ी पार्टीज जो है अपना अपना कैंपेन कर रही हैं। और अभी हाल ही में एक यूँ कहें कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया कि उनकी जो होर्डिंग थी, जहां आप देखते हैं उनके पोस्टर को कई एरियाज में ये लगे गए हैं, तो यहां पर इनकी जो होर्डिंग थी उनको डैमेज किया गया, यूँ कहें कि उनको आग लगा दिया गया इनके होर्डिंग। तो और होर्डिंग था माउंट रोस्किल में, ऑकलैंड में, और यहाँ पर उसको सेटेलाइट किया गया। अभी तो मालूम नहीं है कि किसने वेंडलाइज किया है, लेकिन जो एमपी थे उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जहाँ पर सरडे नाइट को यानी कि कल रात को इनके जो पोस्टर थे, जो बैनर थे, यहाँ पर इसको आग लगाया गया है इन माउंट रोस्किल। तो ऐसे में अगर जो आप देखते हैं, मैंने भी कल जब मैं वापस स्टूडियो से जा रहा था घर की ओर, तो मैंने देखा कि काफ़ी जगहों पर जो कैंडिडेट्स है अपने अपने तस्वीर लगाते हैं, तो लोग काफ़ी क्रिएटिविटी उस पर दिखाते हैं, आकर उस पर स्केचेस करते हैं एंड दे ट्राई एंड गिव इट अ डिफरेंट लुक, ह्यूमरस लुक। ये सब तो गैरकानूनी हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आपको पकड़ा गया तो विलफुल डैमेज के लिए आपको चार्ज किया जा सकता है पुलिस द्वारा, जहां पर पेनल्टीज हो सकते हैं प्रिजन टर्म फॉर अप टू 3 months या फिर फाइन अप टू $2,000। तो अगर जो आपने किसी को देखा है, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं अनोनियमसली, तो 105 इज़ द प्लेस, या फिर ऑनलाइन रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो विलफुल डैमेज है, ये इस कैटेगरी में ये ऑफेंस फुल होगा अगर जो किसी भी पार्टी की जो बैनर्स है इसके साथ में छेड़छाड़ किया गया, इट विल बी काउंटेड एज विलफुल डैमेज या फिर वेंडलाइजिंग, एक्ट ऑफ वेंडलाइजिंग। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी ये जो बातें हैं बता सकते हैं औरों को भी कि ये विलफुल डैमेज है भाई, और आपको फाइन भी लग सकता है। लेकिन अभी के लिए 7th of November को इलेक्शंस होने को है, जहां पर आपके लिए आपके साथ में सिंडी रुजबे एवरी थर्सडे कोई ना कोई एक पार्टी कैंडिडेट या रेप को लेकर आते हैं, ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये बांट सके। और हालांकि हम लेकर आते हैं कैंडिडेट्स को, लेकिन हमारा काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि आप प्रिपेयर रहे। लेकिन हम आपको किसी भी पार्टी की ओर डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, यह आपका खुद का मत रहेगा, आपका खुद का डिसीशन रहेगा, और ये आपको खुद ही बनाना होगा। लेकिन इस मत को यानी कि वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए 25th of October से पहले आपको जाकर रजिस्टर भी होना पड़ेगा।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और समय इशारा कर रही है कि 2:02 हो चुके हैं जबकि हमारा और आपका साथ आज शाम 6 तक रहेगा। तो अब इस मोड़ पर आपके लिए लेकर आए हैं एपिक बॉलीवुड चैलेंज हमेशा की तरह, जहां पर आपके साथ में खेलते हैं बॉलीवुड से एक म्यूजिकल क्विज, कुछ अपडेट्स आपको देते हैं, ट्रिविया देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके बिना पर आपको पहचानना होता है कि किस गाने के बारे में बात हो रही है और जो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करके अपना जो जवाब है हमारे साथ में हमारे पास में भेज देता है 5599 पर अपने नाम के साथ में, वही इस वीक का विनर ठहराएगा। जैसे कि लास्ट वीक तेज ने जवाब दिया था, पार्टनर के टाइटल ट्रैक को पहचाना था बेस्ड ऑन द क्लूज और सबसे पहले ही अपना मैसेज भेज दिया था। तो बस वैसे ही आज भी यही कुछ होगा, आपके साथ में कुछ क्लूज बताएंगे एंड टाइम सिर्फ उतना ही है आपके पास में कि जब हम क्लूज बताना शुरू करें और गाना बजाने से पहले, तो टाइम इन बिटवीन इज़ द ओनली टाइम आपके पास में है कि आप उसी दौरान अपने मैसेज आपको भेजना होगा। तो आज का भी जो गाना है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, सो हियर इट गोज़। जब 90s की म्यूज़िक की बात होती है तो काफ़ी रोमांटिक नंबर्स की बात होती है और 90s की म्यूज़िक की बात जब भी होती है तो इस फिल्म के गाने की ज़रूर मेंशन होते हैं। ये ऐसा एक फिल्म का टाइटल ट्रैक है जिससे कई सारे उभरते कलाकार बॉलीवुड को मिले, म्यूज़िक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण, साथ में कुमार शानू, लिरिसिस्ट समीर, लीड रोल्स में राहुल रॉय और साथ में अन्नू अग्रवाल, दीपक तिजोरी जैसे कलाकार बॉलीवुड में आए। इस फिल्म को असेंबल भी अजीब तरीके से किया गया। इनिशियली टी सीरीज़ के लेट गुलशन कुमार ने कमीशन किया कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण को एक प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बनाना चाहिए, उसके लिए उनको बुलाया गया। समीर ने गाने लिखे और सारे के सारे गाने मेलोडियस, म्यूज़िकल और सुरीले बने। गानों को डायरेक्टर महेश भट्ट ने सुना और कहा ये सारे गाने तो काफ़ी बड़े हैं और इन्हें बिग स्क्रीन पर प्रेजेंट करने चाहिए। फिर रॉबिन भट्ट और साथ में आकाश खुराना ने गाने के इर्द गिर्द कहानी लिखी, यानी कि कहानी पहले से थी नहीं, तो उनको गाना सुनवाया गया और उसी गानों के बीच में उन्होंने अपनी कहानी लिखी ताकि गाने स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले से घुल मिल सके। तो अगर जो आपको जवाब पता है 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजते रहें। फिर जद्दोजहद के बाद लीड पेस को साइन किया गया। कैसे? महेश भट्ट गए थे इंदिरा रॉय को मिलने जो यूनिसेफ के लिए चैरिटी वर्क करती थी और वहाँ उन्हें राहुल रॉय मिल गए जो इंदिरा के बेटे हैं और उनको इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। उनको इतना पसंद किया गया कि एक क्रेज़ बन गया, हेयर सलून्स में राहुल रॉय कट यूथ्स डिमांड करने लगे। इस फिल्म की मेजोरिटी गाने कुमार शानू ने गाए और अपनी करियर की बिगनिंग में वो रेस्टोरेंट्स में गाते थे, वहीं से कुमार शानू ने शुरुआत की थी। और इंटरेस्टिंगली इस फिल्म की बिगनिंग में जो ये गाना लगता है, राहुल रॉय को भी रेस्टोरेंट में गाते दिखाया गया और यही गाना आज का चैलेंज है। इस फिल्म के बाद कुमार शानू केम इन टू अ बिग लीग और आज भी रेलेवेंट है, शोज़ करते हैं, काफ़ी माने जाने हैं, लोग आज भी उनको सुनना पसंद करते हैं और 1990 से लेकर 1994 तक लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। एक और एक मज़ेदार ट्रिविया ये है इस फिल्म में कि राहुल रॉय की वॉइस को आदित्य पंचोली ने डब किया। तो अगर जो आप इस फिल्म को रिविजिट करेंगे तो ज़रूर गौर फरमाइएगा कि इनकी जो आवाज़ है ये राहुल रॉय की नहीं, आदित्य पंचोली की है। इस फिल्म के और अवार्ड्स में शामिल हैं फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट समीर फॉर नज़र के सामने लिखने के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार शानू फॉर अब तेरे बिन जी लेंगे हम, और साथ में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल फॉर नज़र के सामने। ये फिल्म बनी थी एट अ बजट ऑफ 30 लाख, लेकिन इस फिल्म ने उस समय 5 करोड़ का बिजनेस किया और अब तो ये एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी बन गई है जिसमें अगली बार शायद आप कार्तिक आर्यन को देख पाएंगे इन अ लीड रोल। तो ये जो गाना आज बजने वाला है ये इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक है। 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजे, लेकिन ये गाना प्ले करने का समय हुआ और जैसे ही आप इस गाने को सुनेंगे जो ओपनिंग रिदम है, जो म्यूजिक आप सुनोगे, इट इज सो ब्यूटीफुल।
0: यू आर लिसनिंग टू अविनीत।

इस गाने को आप जितनी भी बार सुनो बस नहीं होता है, एक सुकून मिलता है गाने को सुनने के बाद में। और जब तक कि ये गाना चल रहा था, एक और एक मैसेज आया हमारे पास में। रोविन ने मैसेज किया और कहा कि ये हमारे पास में भी स्ट्रीट में एक लोकल राहुल रॉय थे, जिन्होंने इस फिल्म के सीधे बाद अपना जो हेयर स्टाइल है इन पर मॉडल किया था। तो ढेर सारे लोगों ने जवाब दिया है, अपना अपना जो मैसेज है भेजा है हमारे पास में। 688 आपका मैसेज हमें मिला, आपने सही पहचाना। इसके साथ में 3086 एशली, आपने भी जवाब दिया, थैंक यू सो मच। यास्मीन, आप भी प्रोग्राम सुन रही है, आपने भी जवाब दिया, शुक्रिया। इसके साथ में एश है वेलिंगटन से, आपने भी जवाब दिया है, सही पहचाना आपने भी। और इसके साथ साथ में आशिकी, आपने लिख के भेजा है। विजय शर्मा, आपने भी जवाब दिया, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से पहली बार हमारे शो में आपका मैसेज आया है, थैंक यू। आपने भी सुना और इसमें पार्टिसिपेट किया। बस एक सनम चाहिए क्वीन, आपका भी जवाब मिला है। इसके साथ में सुनील, आपने भी सही पहचाना। और इसके अलावा अंतरप्रीत, आपने भी जवाब दिया था, आपका दूसरा मैसेज था सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि आपसे पहले जिन्होंने जवाब दिया वो थे नन अदर देन दिवनेश आनंद। और दिवनेश ने अपना जो जवाब है सबसे पहले भेजा है। और अगर जो रिकॉर्ड्स की ओर देखें तो 9 अगस्त को इन्होंने तुम्बिन का टाइटल ट्रैक पहचाना था, उससे पहले इन्होंने 19 जुलाई को 3 इडियट्स का टाइटल ट्रैक पहचाना था। तो इनके नाम 3 विंस हो चुकी है हमारे एपिक बॉलीवुड चैलेंज में। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। और इसी तरह एक और एक कोई गाना लेकर आएंगे अगले वीक, जहां पर बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहे और मोर इम्पोर्टेंटली मेलोडियस भी रहे सुनने में। ये सभी कुछ रहेगा, जबकि अभी 2:15 हो चुके हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग अलोंग। एंड नेक्स्ट वीक एक और एक नया चैलेंज रहेगा आपके लिए, लेकिन इन द मीन टाइम अगले इस गीत में आप सभी को शामिल करते हैं। Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane.

0: It's On Hum, brought to you by NYF Services. Uber drivers, apply for your claims online at nyfservices.com. Buildcaps Real Estate, invest in Dubai. Book your one-to-one consultation today. Visit buildcaps.com. And Professional Visa Services, based in Auckland and Hamilton, offering multiple visa pathways with a team of licensed immigration experts.
1: हम पर समय हुआ कि आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स है 11 सनातन वर्ल्ड कप 2026 ग्रैंड फाइनल्स के लिए ये आपको बता दे, जबकि बिल मैकिनली पार्क में डिफरेंट एज कैटेगरीज में जो फाइनल्स है ये होंगे, और साथ में जो सबसे पहला ओवर 55 है यहाँ पर MIB बा सनातन साथ में NZ रकी रेकी सनातन के बीच में जो ग्रैंड फाइनल है ये रहेगा। फिर जो ओवर 50 की जो कैटेगरी है यहाँ पर NZ लोटोका लेजेंड्स सनातन साथ में NZ रेवा, याद रहे NZ लोटोका लेजेंड्स सनातन और साथ में NZ रेवा एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। फिर ओवर 45 का जो कैटेगरी है जिसे 420 के आसपास शुरू होना है, NZ द्रकेती सनातन 45 साथ में NZ बा सनातन ये मैदान लेगी। फिर जो ओवर 40 का जो कैटेगरी है 5:30 PM पर NZ सनातन और साथ में हैमिल्टन सनातन के बीच में रहेगा। और जो प्रीमियर का जो गेम है NZ मेनेकाओ सनातन और साथ में NZ सनातन ऑल स्टार्स के बीच में 6:40 PM बिल मैकिनली पार्क में रहेगा। तो अनलिमिटेड फन और एंटरटेनमेंट ये आपके लिए यहाँ पर रहेगा बिल मैकिनली पार्क में, अगर जो आप अच्छा खेल देखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी जो नेशनल डिस्ट्रिक्ट रेप्स है या फिर फोमा रेप्स है ये नज़र आने वाले हैं इन टीमों में, तो यू कैन डू दैट। और इसके साथ में फाल्गुनी आपका भी मैसेज मिला, थैंक यू सो मच, आपने भी पार्ट लिया था एपिक बॉलीवुड चैलेंज में, अभी भी आप करंट लीडर हैं और आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। और बस अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में बिल्कुल लाइव जैसा ये परफॉर्मेंस।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: No limit.

0: apply. Only at Noel Aiming.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
2: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Trishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
2: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Trishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
2: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.

हाँ, पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ और कल रात को मैंने दृश्यम फाइनली देख ली है सिनेमाज में, एंड आई मस्ट से इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंक्लूड भी किया गया है, लेकिन जो एक बात आउटस्टैंडिंग थी पूरे मूवी में ये थी, या मैं यूँ कहूँगा दो बातें थी। एक तो जयदीप अलावत का जो अभिनय था आउटस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल मेनेसिंग लगता है जब भी ये स्क्रीन पर आते हैं, और काफ़ी अच्छे सीन्स थे इनके। और इसके साथ में जो अजय देवगन ने अपने कैरेक्टर को निभाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से अंडर प्ले भी किया है। सो अ ब्यूटीफुल वॉच, अगर जो आपने देख लिया है तो ज़रूर 5599 पर बताएं कि कैसा लगा, या फिर अगर जो अभी तक आपने नहीं देखा है और देखने का प्लान कर रहे हैं तो यू मे डू सो, क्योंकि ये अभी आपके लोकल सिनेमाज में चल रही है।

हम पर यह है जशिल आपके साथ में, और कल रात को किसी एक ओकलैंडर की नसीब जो है ये बदल चुकी है, जबकि एक ओकलैंड में लोटो प्लेयर ने जीता है $15.3 million कल रात को, और इनका जो पावरबॉल और लोटो फिश डिवीजन प्राइज है ये दोनों इनके हाथ लगे हैं, तो इसीलिए $15.3 million का जो प्राइज मनी है इनके हाथ लग गया है, और जो विनिंग नंबर्स थे कल 03, 04, 05, 17, 18, 36 और बोनस नंबर था 7, साथ में पावरबॉल था 1, तो किसी को तो कल काम पर नहीं जाना पड़ेगा, और इनके हाथ में ये जो सम है $15.3 million का ये हाथ लग चुका है।

0: You're listening to Avineet. Bollywood ka asli blockbuster.
1: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz. The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: दस मिनट रह गए हैं 3 बजने में. मैं हूं आपका साथी अवि और आपको बता दूं कि फेसबुक पेज पर आज मैंने काफ़ी क्विजेज भी डाले हैं आपके लिए. वीडियोस भी अपलोड किए हैं जहां पर आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं. ये सभी कुछ आखिर में आप ही के लिए तो है.

हाँ पर अब समय हुआ कि आपके लिए जो आखिरी गाना है इस आवा का ये बजाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, या फिर आपके कुछ सजेशंस है तो 5599 पर ज़रूर भेजें, ताकि कहीं ना कहीं आपके लिए इसे हम ट्वीक कर पाए। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस एंड फीडबैक्स, तो 5599 पर आप इसे भेज सकते हैं। और 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और जबकि 3:01 हो चुके हैं तो ऐसे में we are halfway through the show और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और जबकि 3 बजते हैं तो अचानक से एक क्रेविंग आती है कॉफ़ी या चाय की, तो मैं भी बस आपको ये गाना सुनवाने के बाद में एक ब्यूटीफुल कप ऑफ कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। और आप भी अगर जो सफ़र कर रहे हैं या फिर किसी कैफ़े पर रुके हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं या फिर कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं या फिर घर पर चाय उबाल कर पीने वाले हैं, आप सभी को याद करते हैं इस प्रोग्राम में, जबकि इस नए आवा में आपका खास स्वागत करते हैं। ये है जस्ट चिल और थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आऊँगा सम नंबर गेम्स।

हम पर आप सुन रहे थे केके को, और अब समय हुआ कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, जबकि लेकर आए हैं आपके लिए नंबर गेम्स। तो आपको क्या करना होगा, 180 ग्राम्स का एक पैक है जिसमें गमी बेयर लोलीज है, ठीक है, 180 ग्राम्स का एक पैक है जिसमें गमी बेयर लोलीज है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे इक्वली 15 बच्चों में बांटें। तो पहला सवाल तो ये है कि ये बताएं कि जो एक पैक में कितने ग्राम की गमी बेयर लोलीज रहेंगी, अगर जो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग 15 किड्स। 180 ग्राम्स का एक पैक है जिसमें गमी बेयर्स है और आपको इसे 15 बच्चों में बांटना है। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक पैक में कितना ग्राम की गमी बेयर लोलीज आप रखेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर एक गमी बेयर लोली वेट करता है 3 ग्राम्स तक, तो एक पैक में कितने गमी बेयर लोलीज रहेंगे। तो एक बार फिर इसे आपके लिए दोहरा देता हूँ, 180 ग्राम्स का एक पैक गमी बेयर लोलीज है जिसमें से आपको 15 बच्चों के बीच में इसे बांटना है, और ये आपको बताना है कि एक पैक में आप कितने ग्राम की लोलीज गमी बेयर लोलीज रहेंगे। तो 180 ग्राम्स है, 15 किड्स है, और कितने एक पैक में ग्राम्स की लोलीज रहेंगे। फिर अगर जो एक गमी बेयर लोली वे करता है 3 ग्राम्स, तो एक पैक में कितने गमी बेयर लोलीज रहेंगे। बस यही आपको कैलकुलेट करके नंबर गेम्स में बताना है 5599 पर।

हम पर 3:15 हो चुके हैं और जो नंबर्स गेम में हमने सवाल किया है, अंतरप्रीत और राबिया ने तो लोलीज बांट भी दिए और काफ़ी क्विक एंड शार्प ये थे अंतरप्रीत और राबिया। तो एक बार फिर आपके लिए दोहरा दूं कि 180 ग्राम्स का एक पैक में गमी बेयर लोलीज है और आपको उस पैक को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 15 बच्चों के बीच में, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक पैक में कितने ग्राम के लोली रहेंगे और फिर उसके बाद में ये बताना है कि अगर जो एक गमी बेया जो है ये वे करता है 3 ग्राम्स तो एक पैक में कितने लोलीज रहेंगे। डू योर कैलकुलेशन, से मुझे बताइए कि क्या जवाब आपका आता है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नंबर गेम्स है ये, जस्ट चिल में, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड फन एज वेल।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते.
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
9: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
10: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
11: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
12: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
13: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
14: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
15: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
16: Non-stop Bollywood.
17: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में अंजू, हमें हैमिल्टन से सुन रही है. थैंक यू सो मच अपना जवाब भेजने के लिए. जबकि नंबर गेम्स है तो आखिरी बार इसको आपके लिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर जो आपको भी अटेम्प्ट करना है यू मे डू सो. जबकि 180 ग्राम्स का एक गमी बेयर लोलीस का पैक है और इसको आपको शेयर करना है इक्वली अमोंग 15 किड्स, 15 बच्चों में बराबर का बांटना है. तो हर एक पैक में कितने ग्राम के लोलीज होंगे ये आपको बताना है. और फिर दूसरा पार्ट है जो क्वेश्चन का कि अगर जो एक गमी बेयर का वेट है 3 ग्राम्स तो आपको एक पैक में कितने लोलीज डालने होंगे यही आपको बताना है. बस कुछ और गाने सुनवाते हैं और इसके बाद में जवाब की ओर भी नज़र करेंगे.

हम पर आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा को, और जो सवाल किया था हमने, जिसका जवाब हमारे पास में राबिया ने भेजा था, अंतरप्रीत ने भेजा था, साथ में अंजू हैमिल्टन से सुन रही हैं उन्होंने भेजा था। तो जब 180 ग्राम्स का जो गमी बेयर का पैक है ये बटेगा 15 बच्चों में, तो 12 12 ग्राम एक एक बच्चे को मिलेगा, और जबकि एक गमी बेयर का वेट है 3 ग्राम्स, तो 4 गमी बेयर्स एक पैक में रहेंगे। तो यही जवाब था, आप सभी ने इंटरेस्टिंगली अपना अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजा, थोड़ी सी मेहनत की होना संडे, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपकी बार उदित नारायण को शामिल करते हैं फ्रॉम वीरजारा।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: Okay, who drank all of the milk?
6: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
7: Shop Spring Sprung Savings store-wide this weekend at Risco's with half price off all air fryers, vacuums and microwaves and all sheets, towels and pillows too. Shop Daffodils on every shelf this weekend at Risco's. See online for T's and C's.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahi bhi.
10: हम पर 15 मिनट बाकी है 4 बजने में और 4 पर आपके लिए न्यूज़ भी रहेगा लेकिन अभी के लिए नोट योर फोल्ड सर्विसेज की ओर से एक इम्पोर्टेंट नोटिस है उबर ड्राइवर्स के लिए अगर जो आपने ऑलरेडी अपना जो क्लेम है लॉन्च कर दिया है विद नोट योर फोल्ड सर्विसेज तो ये प्रोसेस में है और क्लेम्स मैनेजर जल्द से जल्द आपको कॉन्टेक्ट करेंगे अगर जो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इनटेक फो अभी ओपन है खुला है आप अपना लॉजमेंट कर सकते हैं और हाँ ये भी याद रहे कि जो नोट योर फोल्ड सर्विसेज की फोन टीम है करंटली फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है इसीलिए आप उनको कॉल ना करें इंस्टेड आप ऑनलाइन जाकर nyfservices.com पर आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं

हम्पर, दिस इज मी अवि, कीपिंग यू कंपनी. और हर वीकडे आपके साथ में हो जाते हैं विजय और पूजा. सुबह सुबह आपके साथ में ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं, आपका साथ देते हैं. और जब आप सफर कर रहे होते हैं घर से निकलकर काम पर जाने के लिए, तो विजय और पूजा आपका साथ देते हैं. तो इसीलिए अगर जो आप जो इनका ब्रेकफास्ट कैचअप है, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर ये डिस्कस करते हैं या फिर ऐसे मुद्दों पर बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इम्पेक्ट करती है, तो BF लिखकर 5599 पर ज़रूर भेजें.

0: to Avineet.
1: हम पर इस जस्ट आफ्टर फोर, मैं हूँ अवि, कीपिंग यू कंपनी, और यह है जस्ट चिल, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर। इस आवा पर भी आपका खास स्वागत करता हूँ, वेलकम टू द शो, और आपका साथ देता रहूँगा 6 तक। ढेर सारे नगमे इस आवा पर भी है जो आपको बारी बारी से सुनवाता रहूँगा।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में सफर कर रहा हूं और ये जो कारवा है 6 तक चलता रहेगा, जबकि अगले महीने जनरल इलेक्शंस होने को है। तो ऐसे में सैंडी और रुजबे ने ढेर सारी बातें की हैं स्पेशल गेस्ट के साथ में, जो कि अपना अपना जो ओपिनियन है पार्टी प्रपोजल्स के बारे में ये बताते आ रहे हैं। साथ ही साथ में जो आपके सवाल है इनके जवाब देने के लिए भी वो हमारे पॉडकास्ट पर आ रहे हैं। तो इस बार के लिए अपने इलेक्शन स्पेशल में उन्होंने बातें की हैं सनी कौशल जी से, जो कि चेयरमैन एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, साथ में चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स के साथ में, इसके अलावा कई सारे टाइटल्स हैं उनके पास में। उन्होंने बातें की हैं खुलकर सैंडी और रुजबे के साथ में कि उनको क्या क्या उम्मीदें हैं जो आने वाली सरकार है उनसे। तो अगर जो आप ये सुनना चाहते हैं तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें ताकि आपको पूरा का पूरा एपिसोड मिल सके। इसके साथ में जब आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजेंगे आपको एक और एक लिंक मिलेगा जहां पर उन्होंने बातें की हैं शैली सेठिया के साथ में, जो कि बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने बताया कि जो उनकी जर्नी थी यहां न्यूजीलैंड से शुरू हुई और कैसे उन्होंने इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। ड्राइव लिखे 5599 पर ज़रूर भेजें।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और आपको याद दिला दूँ हम म्यूजिक स्टेशंस के बारे में जो कि रोवा ऐप पर है. तो अगर जो आप संडेज को इवनिंग में लेट इवनिंग में पुरानी यादों में खोना पसंद करते हैं, पुराने नगमों को सुनना पसंद करते हैं, तो हम रिवाइंड आपके लिए हैं जहाँ पर आप 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं. इसके अलावा जो 80s के नगमे हैं ये 80s जुक बॉक्स में आपको मिलेंगे. साथ ही साथ में फिजी भजन भी आप सुनना पसंद करते हैं तो 24/7 फिजी भजन यहाँ पर स्ट्रीम किया जाता है. साथ में अगर जो आप सुनना चाहते हैं पंपिंग पंजाबी हिट्स तो चर्दी कला का भी ऑप्शन है आपके लिए. इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह भी है जहां पर फिजी के कलाकारों की आवाज़ में यहां पर कीर्तन भक्ति रस कीर्तन आपके लिए रखे गए हैं. इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान की अलग फैन फॉलोइंग है इसीलिए उनके जो सूफ़ी है कवालियाँ हैं ये भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है. तो अभी तक आपने रोवा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, ढेर सारे फ़ायदे हैं. जैसे कि हमने बताया आप हम म्यूज़िक स्टेशंस को भी सुन सकते हैं वहाँ पर जो सेलेक्टेड नगमे आपके लिए रखे गए हैं.

हम पर, मैं हूँ आपका साथी। अभी आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रुकी हुई गाड़ी, एक पार्क की हुई गाड़ी, इसका डायरेक्शन आप नहीं बदल सकते। जब तक कि इस गाड़ी को आप मोशन में ना लाए, तब तक आप इसकी डायरेक्शन बदल ही नहीं सकते। इसी तरह से हमारी और आपकी लाइफ भी है। जब तक हमारी लाइफ, जिंदगी चलती रहती है, हम इसे चाहे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, स्टीयर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हारिए मत, चलते रहिए, लाइफ को निभाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अभी भी जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप ही के हाथ में है।

0: Streaming on Rover.
1: The interest dividend of $377 has just been paid. Woohoo! 374,000 Auckland households and businesses in the Entrust District are sharing $141 million. So go on, celebrate having a bit extra in your pocket. Treat yourself, pay some bills, or stash it away. You choose. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. Enjoy your Entrust dividend, Auckland.
2: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
3: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपके लिए कुछ लेकर आते रहते हैं, कुछ ज़रूरी बातें जिससे आप भी अपडेटेड रहे। तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ये डिसाइड हुआ था, जबकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो लोकल फार्मसीज थी ये कुछ ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो एक और एक कुछ नया इनमें एडिशन हुआ है, जबकि ऐसा बताया गया है हेल्थ मिनिस्टर द्वारा कि फार्मक एंड हेल्थ न्यूजीलैंड ये इंक्रीज़ कर रहे हैं द नंबर ऑफ फंडेड मेडिसिन जहाँ पर कम्युनिटी फार्मसीज इसे प्रोवाइड कर सकती है। आज से यानी कि 2nd of October को ये स्टेटमेंट आई थी, तो 2nd of October से जो कम्युनिटी फार्मेसीज है ये और ज़्यादा फंडेड मेडिसिन प्रोवाइड कर सकती है। और ये ऐसा तब हुआ जबकि हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कीवीज है ये जल्द से जल्द एक्सेस कर पाए मेडिसिन की जिनको उनकी खास ज़रूरत है और बिल्कुल अपने घर के आसपास से ही ये उनको प्राप्त कर सके। तो ये जो प्रपोजल है नया इन इफेक्ट आ गया है। और इसके साथ में ये भी बताया गया है कि जो मेडिसिन है जो फंडेड है और आपके कम्युनिटी फार्मसीज में अब अवेलेबल रहेंगे, इनमें शामिल है कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपके पेन या फीवर मैनेजमेंट के लिए है, साथ में ओरल रिहाइड्रेशन के लिए हैं, साथ में स्केबीज या फिर और कुछ बीमारी जैसे हैं, तो इनके लिए जो फंडेड मेडिसिन है अब ये लोकल आपके कम्युनिटी फार्मसीज में बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे।

0: टू अविनीत।
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि, और आपको एक और एक कम्युनिटी न्यूज में बता दूं कि श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में यहाँ पर श्री राम कथा प्रसंग चल रही है, जहाँ पर कथाकार हैं पूज्य राजन जी। तो आप इनको सुनना चाहते हैं और एक डिवोशनल जर्नी पर जाना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर तक आपके पास में समय है, जबकि हर इवनिंग 7 PM से लेकर 9 PM तक यहाँ पर कथा प्रसंग होती है। तो आपको सिर्फ जाना है श्री राम मंदिर एट 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, और 6 अक्टूबर तक 7 PM से लेकर 9 PM तक यहां पर कथा चलती रहेगी।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5-litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
3: Yes, that's all, thanks. But whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
2: Okay, sorry.
3: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
2: Oh, man.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Put your head to Gandhi.
6: Yo.
7: You're listening to Avineet.
8: देखते देखते हम फाइनल हवा में पहुंच ही गए हैं, जबकि इट्स जस्ट आफ्टर 5, तो 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और हर हवा की तरह इस हवा में भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ में करने को, ढेर सारे मेलोडियस गाने हैं जो भी आपको सुनवाने हैं बाकी है, तो ये सभी कुछ इस हवा पर भी रहेगा। तो 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं और साथ मिलकर 6 तक इस कारवा को तय करेंगे।

हाँ, पर मैं भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ कुछ कम्युनिटी न्यूज़, ताकि आपको पता रहे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है। तो वेद प्रचार वीक, इसकी शुरुआत हुई थी मंडे 28 सितंबर से। तो आज आपके पास में फाइनल दिन का मौका है जब आप जाकर इस सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं, जो रहेगा आज 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापटोई में 6:20 PM से। और इस साल का सेलिब्रेशन खास भी है क्योंकि 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं आर्य समाज कमेटी न्यूजीलैंड में, जबकि 30 साल हो गए हैं उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए। तो आप भी जाकर इन खुशियों में शामिल हो सकते हैं। 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापटोई फ्रॉम 6:20 PM दिस इवनिंग।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: MediaWorks Complaints. How can I help?
7: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
6: Nice.
7: And you talked me into creating this funny character.
6: Great.
7: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
6: Are you?
7: Yes.
6: Are you Bobby the Baker?
7: Yes.
6: What's that thing you do again?
7: Stop it.
6: You bring the mouse.
7: Stop it.
6: I'll bring the pie.
7: Stop it, please.
6: Okay.
7: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
6: So what's the problem?
7: My name's Bruce.
8: Advertise with MediaWorks.
6: New Zealand listens to us.
9: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
10: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
11: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
12: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
13: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
11: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा, बताना मुश्किल है।
11: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और यह है जसशील का कारवा। जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डायल है, तो ऐसे में चलो एक चक्कर आपके साथ में बॉलीवुड की लगा ही लेते हैं। अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पर टिप्स के मालिक रमेश तौरानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि काफ़ी इंसाइट्स दिए हैं बॉलीवुड को लेकर, साथ में म्यूजिकल इंडस्ट्री को लेकर। तो ड्यूरिंग वन ऑफ दोज कैंडिड कॉन्वर्सेशंस उन्होंने बताया कि जो नदीम श्रवण की जोड़ी थी उनमें से नदीम जो है ये काफ़ी मनी माइंडेड थे, यानी कि जब भी उनको किसी भी फिल्म के लिए साइन किया जाता था तो एक चीज़ तो शुरू से क्लियर थी, उनको कितना फीस इस फिल्म के लिए दिया जाएगा। एंड देट वॉज द फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स नदीम कभी डिस्कस करते थे, और वो तो काफ़ी अच्छी बात भी है, और क्योंकि वो डिजर्व भी करते थे। अगर जो आप 90s की दौर देखे तो काफी हिट नगमों को उन्होंने दिया है, साथ में काफी फिल्मों में, हालांकि फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन जिन फिल्म में इन्होंने म्यूजिक दिया है फिल्म के गाने जरूर चले हैं। तो यहाँ पर रमेश तौरानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नदीम सैफी वॉज वेरी क्लियर कि इस फिल्म के लिए उनको पैसे कितने मिलेंगे।

हम पर कुछ स्पोर्ट्स की बातें कर लेते हैं, जबकि मैं यहां से निकलने के बाद में नेशनल रग्बी लीग का फाइनल देखने वाला हूं। हालांकि ये रात को 9:30 के करीब शुरू होगी, लेकिन रूस्टर्स और न्यूकासल नाइट्स के बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा और मैं सोचता हूं कि इसको लाइव ही देखा जाए तो मज़ा आएगा। तो अगर जो आप भी लीग देखते हैं तो जस्ट अ रिमाइंडर कि आज ग्रैंड फाइनल है, जबकि रूस्टर्स और साथ में न्यूकासल नाइट्स के बीच में एक भिड़ंत होगी। और इसके अलावा अगर जो आप कुछ अच्छा एक्साइटिंग एक थ्रिलिंग मैच देखना चाहते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो मैच है रूस्टर्स और नाइट्स के बीच में इट विल डिलीवर। तो अगर जो आपने लीग पहले कभी नहीं देखी है एंड आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम, जबकि ग्रैंड फाइनल में ढेर सारी चीज़ें आपको एक्साइटिंग देखने को मिलेंगी।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Association with RNZ News. Change is in the air.
1: Spring आ गई है Mitre 10 Mega Henderson's Home and Garden Evening के साथ. Hands-on activities, delicious food, great deals और garden inspo. 4 to 7 p.m. Thursday, October 8th. सिर्फ Mitre 10 Mega Henderson में.
2: Hi, I'm Murray Harris, Head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. Canstar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
3: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver Plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
4: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tu
5: masa. Hum, playing Bollywood's biggest hits. Yeah.
6: बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको 5 टू 6 के बीच में कहीं ना कहीं एक गज़ल सुना दे, क्योंकि 6 बजे के बाद में जिकाश आते हैं, ढेर सारे मेलोडियस नंबर्स लेकर आते हैं, तो ऐसा ही कुछ सूदिंग सोलफुल म्यूजिकल आपको सुनना होगा 6 बजे के बाद में। लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा से आपको छेड़ ही दूँ एक गज़ल सुनाकर।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 12 बजे से आपने हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीकेंड पर होंगी। इन द मीन टाइम, जबकि कल से एक नया वीक शुरू हो रहे जा रहा है, तो ऐसे में आप खुद का ख्याल रखिएगा। बच्चे भी फाइनल वीक ऑफ स्कूल हॉलीडेज़ में घर पर ही रहेंगे, और हाँ, आप उनका भी ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप हमिंग, डू टेक केयर। हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर होगी। बाय।

आप कितने सुंदर दिखते हैं और आप कितने सुंदर इंसान हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, इन दोनों बातों में ज़्यादा फर्क है, लेकिन शायद आपकी पर्सनैलिटी और आपका चेहरा एक ही तरह है। जितना सुंदर आप दिखते हैं उतनी ही सुंदर पर्सनैलिटी आप रखते हैं, क्योंकि सुंदरता परमानेंट नहीं होती है, लेकिन आपका व्यवहार इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। जिसके साथ में या फिर किसी के साथ में आप कैसा व्यवहार करते हैं, एक वैसा ही छाप आपका बन जाता है उनके जहन में। तो भाई इस पर आप विचार करें। वैसे ट्रीटमेंट, व्यवहार, बिहेवियर के बारे में बातें करें तो आई होप द वीकेंड इज बिहेविंग वेल विथ यू। आई होप आपका जो वीकेंड है ये बढ़िया जा रहा है। आज है 4 तारीख अक्टूबर और संडे इवनिंग हो चुका है, तो मैं जिकाश आपके सामने आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ। कल हम रेडियो पब में भी थे, तो आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ब्रेक नहीं था, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे उसके कारण से रेडियो पर नहीं आ पाए। इधर उधर काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और काफ़ी फंक्शंस हमने अटेंड किए हैं, तो एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज। आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। कैसे मिजाज है आपके? आई होप यू आर डूइंग वेल, क्योंकि आपको आपकी संडे नाइट को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल हो चुका हूँ विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लस आपके पसंदीदा गीत और संगीत को सुनते हुए आज के इस सफर को हम तय करेंगे राइट टिल मिडनाइट, एक्सक्यूज मी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की विद लखविंदर बडाली और नीति मोहन की आवाज़ों में। क्योरा, नमस्कार।

आपके आसपास की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। वैसे 11 सनातन वर्ल्ड कप ये रैपअप हुआ है आज, और तमाम जितने भी टीम्स आई हुई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं फॉर द पार्टिसिपेशन। प्रीमियर फुटबॉल में देखें तो न्यूजीलैंड की 18 टीमें थी, फिजी से 8 टीम्स आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की 3 और यूएसए की 1 टीम थी। फोर्टीज फुटबॉल में भी 18 टीम थी, न्यूजीलैंड से 8, फिजी से 6, ऑस्ट्रेलिया से 3 और यूएसए से 1। सभी का नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेजर माइलस्टोन एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी कमिटी फॉर एनजेड सनातन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड। इन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर एन ऑसम ऑसम टूर्नामेंट। एंड अ बिग शाउट आउट गोज टू मुनी गाउंडर रोनिल फॉर विनिंग द सनातन वर्ल्ड कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026। सिर्फ 2 सालों से ये बंदा गोल्फ खेल रहा है एंड ही हैज़ वन द गोल्फ टूर्नामेंट, द सनातन वर्ल्ड कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फॉर रोनिल, फॉर मुनी गाउंडर, हु जो पेशे से एक शेफ रह चुके हैं एंड ही वर्क्स फॉर बीस फूड एंड ज्ञान प्रकाश श्रद्धा संघ के मंडली मेंबर हैं, पोकेनो में रहते हैं। आपको हम ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम योर कम्युनिटी, योर वाइफ एंड योर लवली डॉटर मायरा की ओर से आपको हम कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में और भी जानकारियाँ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कम्युनिटी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: सन्डे नाइट मेलोडीज में आपका हम स्वागत कर रहे हैं दोबारा। मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं। आपके आसपास काफ़ी कुछ कम्युनिटी में इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप हम तक पहुंचाएं, इन तमाम लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे बाय जस्ट गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन buzz@hamfm.com। यहाँ पर आप अपना ईमेल्स भेजें एंड वहाँ से आगे की जो जिम्मेदारी है ये हमारी होगी। श्री राम कथा जारी है एट दी श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, एंड बहुत ही स्पेशल ओकेजन है ये, क्योंकि 30 सितंबर से शुरू हुआ है ये राम कथा और हर रात ये राम कथा हो रही है टिल ट्यूसडे 6 अक्टूबर तक। 7 से 9 बजे के बीच में राम कथा होती है। महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है आपके लिए और यहाँ पर आप राम कथा सुनने वाले हैं इन दी होली प्रेजेंस ऑफ पूज्य राजन जी। इनको आपने लाइव देखा है ऑन टीवी एंड ऑनलाइन देखा है, वेल नाउ यू हैव द चांस कि इनके मुख से आप श्री राम कथा का प्रवचन सुन सके एट श्री राम मंदिर। मंगलवार तक के लिए आपके पास समय है, 7 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड एज आई सेड, महाप्रसाद का भी बंदोबस्त आपके लिए यहाँ पर किया गया है। वैसे शायद आपने तो सुना होगा कि पितृपक्ष ये भी जारी है, और पितृपक्ष में इफ़ यू नो अबाउट इट यू नो अबाउट इट, अगर नहीं जानते हैं तो लेट मी फिल यू इन। पितृपक्ष क्या है? दिस इज़ 14 डेज ऑफ ऑब्जर्विंग पितृपक्ष। एंड इसमें क्या होता है, ये एक हिंदू परंपरा है जिसमें अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, उनको ग्रेटिट्यूड आप दिखलाते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप श्राद्ध करते हैं, लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। एंड दे ऑब्जर्व दिस 14 डेज बहुत ही क्लोजली। तो अगर आप भी पितृपक्ष ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आप सभी को हम याद कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं हु ऑपरेट उबर चलाते हैं आप, उबर ड्राइवर हैं आप, तो आपके लिए खास जानकारी है, यू मस्ट नो अबाउट दिस नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज। अगर आपके आपने क्लेम किया है विथ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, आप धैर्य रखिए, घबराइए मत, क्योंकि आपका क्लेम इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड अ क्लेम्स मैनेजर विल बी इन टच विथ यू। इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक फॉर इज नाउ ओपन, दैट इज विथ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज। Please note that the Not Your Fault Services phone team is currently at capacity, so please do not call. Iske bajaye, you can apply online at nyfservices.com. That is Not Your Fault, nyfservices.com. यहाँ पर जाकर अपने क्लेम्स को आप दर्ज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, ऑलरेडी सबमिटेड अ क्लेम, आप घबराइए मत, आपके क्लेम्स It is moving forward and a claims manager will be in touch with you. This was for all the Uber operators out there.

Today is the 4th of October और next week हलचल मचने वाली है ऑकलैंड में क्योंकि हमारी All Blacks they are gonna be playing a very crucial match in the Bledisloe Cup. तो इसके बारे में और भी जानकारी हम आपको देंगे बस थोड़ी देर में.

Hey, welcome back to Hum, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. Sunday Night Melodies का सफर जारी है एंड 7 बज चुके हैं. 7 बज जाते हैं तो आपके लिए एक घंटे के लिए हम nostalgic moments क्रिएट करते हैं. कुछ गाने बजाते हैं, गानों के बारे में आपको बताते हैं एंड वो गाना किस साल का है उस साल को लेकर कुछ यादें हम शेयर करते हैं आपके साथ में. और अगर आप चाहें तो अपनी यादें भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं इन दिस प्रोग्राम. तो आइए शुरुआत करते हैं nostalgic moments की विथ दिस awesome सॉन्ग जो मुझे बहुत ही पसंद है. मोहित चौहान और शेखर राजवियानी की आवाज़ें हैं. तो इसे आप एंजॉय करें और फिर इस गाने के बारे में हम बातें करेंगे बस आफ्टर द सॉन्ग.

0: ये गाना हमको लेकर गया है लगभग 16 साल पीछे, 2010 में आई फिल्म अनजाना अनजानी से इस गीत को हमने लिया था। एंड टॉकिंग अबाउट दिस गाना, श्रुति पाठक, शेखर रावजियानी, मोहित चौहान, विशाल दादलानी, इनकी कंपोजिशन रही है। एंड 2010 में फिल्म आई अनजाना अनजानी, जिसमें आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ में देखा रणबीर कपूर को। उसी साल बहुत सारी चीज़ें हुई, हाइती में एक बहुत गंभीर अर्थक्वेक आया, जिसमें 7.0 पर इसको रजिस्टर किया गया ऑन द रिक्टर स्केल। एंड इट स्ट्रक नियर पोर्ट औ प्रिंस, किलिंग ओवर 200,000 पीपल एंड सीवियरली डैमेजिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा फरवरी में चिले में अर्थक्वेक आया 8.8 मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पर सबसिक्वेंट सुनामी भी आई, किलिंग ओवर 500 पीपल। और फिर इन अप्रैल 2010 में द वोल्केनो इन आइसलैंड इरप्टेड, सेंडिंग मैसिव एश क्लाउड्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डिसरप्टिंग यूरोपियन एयर ट्रेवल फॉर 6 डेज। तो ये कुछ दर्दनाक बातें थी ऑफ द ईयर 2010। इसके अलावा डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, ये हुआ इन अप्रैल एज वेल 2010 में, एन एक्सप्लोजन ऑन द डीप वाटर होराइजन ड्रिलिंग रिग इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको किल्ड 11 वर्कर्स एंड कॉज्ड द लार्जेस्ट मरीन ऑयल स्पिल इन हिस्ट्री। इसके कई सारे वीडियोज आए थे, और एक एनवायरमेंटल डिजास्टर ये रहा है, दैट हैपन इन 2010 एज वेल। ये कुछ दर्दनाक बातें थी। Now let's look at some positive events. End of Iraq war combat. August 19 May, the US military officially ended the Operation Iraqi Freedom, withdrawing the last combat brigades. August 19, 2010 ki baat hai. And usi saal Burj Khalifa, jiske bare mein gaane ke upar gaane ban rahe hain, aur Burj Khalifa ke upar bhi gaane ban rahe hain, matlab in there, on there. To January 4th ko 2010 में बुर्ज खलीफा की ओपनिंग हुई इन दुबई, ओपन एज द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी यादें जुड़ी हैं फ्रॉम द ईयर 2010। व्हेन यू से 2010, कुछ हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में आप सोचें तो 2010 वाज 16 ईयर्स अगो। जो लोग 2010 में जिनका जन्म हुआ है वो अब 16 साल के हो चुके हैं।
1: साथ हैं चिकाश।

0: It was.
1: I
0: right?
1: went yeah. there once. Yeah.
2: That was for Nikamma, na?
1: For Nikamma. Yes.
2: So, what do you think about Salman Khan?
1: मैंने सलमान सर के एक गाने का कवर किया था. मुझे उन्होंने कहा था कि तुमको गाना गाना है. एक तो ऐसे ठीक है. मैंने बहुत politely ऐसे उनको पूछा था कि आप please गाएंगे मेरे साथ. तो उन्होंने गाया भी था.
3: Shirley Setia, Unfiltered. Catch the full conversation on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
6: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
1: That is very that is a very acceleration.
6: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
1: Amazing acceleration.
6: This
1: record,
6: is my
1: I would
6: fancy
1: say.
6: English. That's a very.
1: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: FM 100 AM
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
2: This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
3: Playing Bollywood's biggest hit.

Now the next song is from Badshah and Aastha Gill, and I absolutely love this song. बहुत ही बढ़िया गाना है, one of my favorites from Badshah. तो इसको आप सुने, and इससे जुड़ी हुई एक याद है जो मेरे साथ चिपकी हुई है, क्योंकि I love the Hustle program, the Indian rapping show, जो इस साल season 5 में पहुंच चुका है. लेकिन I've been following Hustle from Hustle 2.0, and Hustle 2.0 में एक बंदा था जिसका नाम है तनिष्क सिंह, और इसका रैप नेम है पैराडॉक्स. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. पैराडॉक्स से पूछा गया कि भाई पैराडॉक्स, आपका ये रैप नेम पैराडॉक्स कैसे पड़ा? तो उन्होंने बताया स्टोरी अबाउट दिस नेक्स्ट गाना, जिसके वीडियो में दिखेगा. अगर आपने इसके वीडियो को देखा है तो दोबारा जाकर देखें. समय इन द वीडियो आप देखेंगे कि बादशाह के हाथ में एक किताब है जिसका नाम है पैराडॉक्स. उसको देख कर तनिष्क सिंह ने अपना नाम पैराडॉक्स रखा, एंड बाद में इनको जब इन्होंने एक किताब ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा कि ऐसा कोई किताब है ही नहीं. तो उस सिनेरियो को लेकर इन्होंने अपना नाम, अपना रैप नेम पैराडॉक्स रखा है. तो आइए सुनते हैं हार्टलेस फ्रॉम बादशाह एंड आस्था गिल. वैसे हसल 5.0 अपना होम ग्राउंड, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज वीक 8, सॉरी दिस इज वीक 9, लास्ट वीक वॉज वीक 8, और इनके दो एपिसोड्स, एक कल रिलीज हुआ है, एक आज रात को रिलीज होगा ऑन नेटफ्लिक्स, यू कैन चेक इट आउट. फिलहाल मैं हूं जिकाश, एंड सनलाइट मेलोडीज में आपके साथ में सम नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हम शेयर कर रहे हैं इन दिस आवर.

0: You're listening to Chikash.
1: Alright, हमने कहा था कि आपको बताएंगे about the Bledisloe Cup. Every time I hear this word, दिमाग automatically सोचता है कि Bledisloe Cup. it's very slow for the Australians क्योंकि इससे जीतने का ख्वाब काफी साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रही है. तो Bledisloe Cup ये शुरू होगा in the coming week जब All Blacks और ऑस्ट्रेलिया ये आमना सामना करने वाली है at 8:10 at Eden Park on the coming Saturday 10th October को 10 तारीख अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलने वाली है ईडन पार्क में. एंड देन उसके बाद 17th अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी न्यूजीलैंड को. तो दो मैचेस, आई होप द बेटर टीम विंस. वैसे वी एब्सोल्युटली नीड अ विन आफ्टर द बैशिंग दैट द ब्लैक ऑल ब्लैक्स हैव रिसीव्ड द हैंड्स ऑफ स्प्रिंगबॉक्स इन साउथ अफ्रीका. वो ऐसी यादें हैं जो हम याद करना ही चाहते. इस साल बहुत ही बुरा हाल किया है ऑल ब्लैक्स का साउथ अफ्रीका ने. तो होपफुली वी रिकवर एंड वी परफॉर्म वेल अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम कम द 10th अक्टूबर अगले शनिवार को 8:10.
0: You're listening to Chikash.

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: Dilsey.
3: Sunday Night Melodies में Nostalgia Nights हम सुन रहे हैं, enjoy कर रहे हैं between 7 and 8 and मैं हूँ जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूँ. Now, the next song is from the year 2018, a very good song as well from Atif Aslam. Film का नाम है Baagi 2 and 2018 ये वो साल था जहाँ पर New Zealand won the 3 match T20 international series against India by 2-1. February 2019 में ये matches हुए, sorry, yep. February 2019 में मैच हुआ, which was part of the 2018-2019 bilateral tour, और इसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई, और इस टूर में तीनों खेल वैसे फरवरी में हुए थे 2019 में, लेकिन दिस वाज टर्म्ड एज द 2018-2019 bilateral tour. इसके अलावा न्यूजीलैंड में बहुत कुछ हुआ. एक्स प्राइम मिनिस्टर Jacinda Ardern announced her pregnancy in January and gave birth to baby Neve in June, making international headlines. And ye wo saal tha jahan par Labour Party were in power and they did a lot of things. Bahut sari cheeze ki hain, achhi cheeze ki hain, buri cheeze ki hain. We'll leave it to you to decide. Lekin yep, Labour was in power in 2018. Offshore oil and gas ban kiya tha Labour ne. In April, the government announced a ban on granting new offshore oil and gas exploration permits to combat climate change. Aur kai sare strike bhi hue the. Tens of thousands of nurses, teachers and healthcare workers held mass industrial strikes across July and August demanding better pay and conditions. To aisa nahi hai ki jo public sector wale inhone strike kiya hai just because of national. Inhone bahut bada strike kiya tha jab Labour bhi power mein tha. तो यू एज सिटीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड, अगर आपके पास पावर है टू वोट, आपको तो याद होना चाहिए कि दिस ईयर 2026 नवंबर 7th को जनरल इलेक्शंस होंगे एंड आपको वोट करना है. तो पिछले कुछ बातें आप याद करें, अभी आपके साथ गवर्नमेंट कैसा बर्ताव कर रही है. हैज़ द गवर्नमेंट मेड इट ईजियर टू गेट योर PR, योर रेसिडेंसी, योर सिटीजनशिप, या फिर क्या ऐसी पार्टी आने वाली है जो सिटीजनशिप को रोकने वाली है. तो भाई ये सब सोच विचार करके आपको वोटिंग करना है, या फिर वो कौन सी पार्टी रहेगी जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी इफ़ दे कम टू पावर. ये बात आप सोचे एंड सोचकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले फॉर दिस ईयर्स इलेक्शन. नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम आतिफ असलम.

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

Hey, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। 8 बज चुके हैं, 8 से 9 बजे के बीच में आपके लिए हम बॉलीवुड अनप्लग्ड लेकर आते हैं कुछ ऐसे गीत जो आपके दिल के करीब है लेकिन इन अ डिफरेंट वर्जन दैट हैज बीन अडेप्टेड बाय वेरियस आर्टिस्ट्स इन देयर own way and form. So let's kick off with Sri Ram Chandra, one of the artists jo main sochta hu ki inko utni zyada safalta nahi mili in Bollywood jitni milni chahiye thi, kyunki bahut hi versatile ye screen ko bhi own kar lete hain whenever he performs. Agar inko aapko dekhna hai to jab Indian Idol mein aaye the unke videos ko check out kare and you'll just love his performance. So inka ek unwind version of this next track. I absolutely love and adore this rendition of Pal Bhar Ke Liye. So aaiye isi geet ke saath mein kick off karte hain 8 to 9 Bollywood Unplugged right here on Hum Sunday Night Melodies. Mein main Jikash aapka saath de raha hoon. Keep humming, kyunki is geet ke baad mein hum aapke saath mein share karenge the tour details of the Indian soccer team. Yep, they are coming over. कब कहां पर खेलने वाले हैं हमारे ऑल वाइट से ये जानकारी थोड़ी देर में।

Alright, unplugged versions of some beautiful Bollywood songs आपके लिए हम पेश कर रहे हैं between 8 and 9. मैं हूँ जिकाश and मैंने कहा था आपको बताएंगे about the Indian soccer team जो बहुत ही अच्छा खेल दिखा रही है. अभी हाल ही में ब्राज़ील के साथ में इन्होंने खेला है इन इंटरनेशनल फ्रेंडली एंड 4-3 से सिर्फ इनकी हार हुई एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ सोका रोनाल्डिनो वहाँ पर उपस्थित थे एंड काफ़ी अच्छा समय बिताया है इंडियन टीम ने विद द ब्राज़ीलियन टीम. नाउ आफ्टर दैट द इंडियन टीम आर कमिंग ओवर टू न्यूजीलैंड एंड दो मैच होने वाले हैं अगेंस्ट द ऑल वाइट्स. हमारी न्यूजीलैंड सोका टीम के खिलाफ ही खेलने वाली है. थर्सडे 12 नवंबर को गो मीडिया स्टेडियम में ऑकलैंड में खेल होगा एट 7 PM एंड देन द फॉलोइंग वीक सॉरी उसी वीक संडे 15 नवंबर को ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया ये होने वाला है क्राइस्टचर्च में एट द वन न्यूजीलैंड स्टेडियम. तो टू मैचेस एंड बहुत ही हिस्टोरिक ये मैचेस होने वाले हैं क्योंकि उसी समय के आसपास इंडियन क्रिकेट टीम भी आने वाली है. तो भाई इंडियन स्पोर्ट्स का मेला लगने वाला है न्यूजीलैंड में एंड इसके लिए आप भी तैयार हो जाए क्योंकि टिकट्स बहुत ही जल्द बिक जाएंगे. तो इसके बारे में भी जानकारी टिकट्स के बारे में जानकारी अभी आपको हम प्रदान करेंगे बस थोड़ी देर में. ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया फर्स्ट मैच थर्सडे 12 नवंबर को गो मीडिया स्टेडियम ऑकलैंड में, संडे 15 नवंबर को क्राइस्टचर्च में वन न्यूजीलैंड स्टेडियम में ऑल वाइट्स और इंडिया अपना दूसरा मैच खेलेगी एट 4 PM.

0: बहुत ही हिस्टोरिक मैचेस अबाउट सोका हम आपके लिए इसकी जानकारियां लेकर आ रहे थे बिटवीन ऑल वाइट्स एंड इंडिया जो नवंबर में होने वाला है लेकिन टिकट्स बिकने लगे हैं. नाउ फॉर द सोका मैचेस न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया यू हैव टू गो टू प्रीमियर टिकटेक डॉट को डॉट एन जेड. दैट इज टिकटेक की साइट पर आपको जाना है लेकिन द वेबसाइट इज प्रीमियर डॉट टिकटेक डॉट को डॉट एन जेड. यहाँ पर जाकर आप ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं. मैच वन टिकट्स फॉर गो मीडिया स्टेडियम पेनरोज ऑकलैंड में और मैच टू जो क्राइस्टचर्च में होने वाला है इसके लिए टिकट्स बाद में आपके लिए हम जानकारी देंगे. नाउ इसके अलावा ब्लैक कैप्स वर्सेस इंडिया ये भी होने वाला है. द फर्स्ट मैच T20 पांच मैचेज जो पहला मैच होगा T20 मैच वन ऑफ फाइव दिस विल बी ऑन द 22nd ऑफ अक्टूबर 8 PM पर. And then the second match, 24th of October, third match, 27th of October, fourth match, 30th of October, and then the fifth T20 ka match between New Zealand and India is happening on the 1st of November. Tickets ke liye aapko jana hai StubHub, New Zealand cricket tickets versus India. These tickets are on sale on StubHub.com. Go there and grab your tickets now kyunki I'm looking at it right now and the red tag on that website is saying almost sold out at StubHub.com. to agar aapko cricket enjoy karna hai Indian cricket team ki against black caps go to StubHub.com and grab your tickets right now.
1: Hum par aapke saath hain Jikash.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: आज है 4 तारीख अक्टूबर एंड सनी नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। 4 तारीख है लेकिन कल था 3 तारीख, उससे पहले था 2 तारीख। ऑब्वियसली 2 तारीख को विजय सलगांवकर की फैमिली पंजी गई थी और 3 तारीख को सत्संग सुनने के बाद, फिल्म देखने के बाद लौटकर घर को आई थी। वी आर टॉकिंग अबाउट दृश्यम 3, जिसके रिव्यूज बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं। क्या आपने इसको देख लिया है अभी तक? हैव यू वॉच्ड दृश्यम 3, द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दृश्यम? क्योंकि बहुत ही प्रोमिसिंग ये मूवी होने वाली है एंड अपने दावों पर खरी उतरी है। क्रिटिक्स रेटिंग इसको 3.5 मिला है, एवरेज यूजर रेटिंग 3.5 मिला है, लेकिन जितने लोगों से मैंने बातें की है जिन्होंने इस मूवी को देखा है, बस तारीफें ही कर रहे हैं अबाउट अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत और प्रकाश राज। इसमें भर भर के आर्टिस्ट और आर्ट आपको देखने को मिलेगा। दृश्यम द कंक्लूजन, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं इन आवर थिएटर्स। तो ये बात रही है दृश्यम की। नाउ 2 अक्टूबर वॉज ऑल्सो गांधी जयंती। गांधी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है एंड 2 अक्टूबर अंडर द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर इज ऑल्सो द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। क्या आप जानते हैं कि दिस स्पेशल डे डेडिकेट किया गया है ऑन महात्मा गांधीज बर्थडे एज वेल? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वॉज ऑब्जर्व ऑन द 2 अक्टूबर दिस ईयर एंड एवरी ईयर ये ऑब्जर्व किया जाता है अंडर द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर। देयर इज़ नो वे टू पीस, पीस इज़ द वे। दिस इज़ वन ऑफ द कोट्स फ्रॉम द लेट महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ आर इनसेपरेबल एंड प्रीसपोज वन अनदर। वी मे नेवर बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एंटायरली नॉन वायलेंट इन थॉट, वर्ड और डीड, बट वी मस्ट कीप नॉन वायलेंस एज आवर गोल एंड मेक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट। So these were some of the sayings, some of the sayings from late Mahatma Gandhi. इनके शब्द हैं ये and इन पर आपको भी reflect करना है। बहुत सारे सारे अच्छे articles हैं under the UN.org website, इसे आप checkout कर सकते हैं in relation to the International Day of Non-Violence, 2 अक्टूबर।
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

0: थोड़ी देर पहले हमने दृश्यम के बारे में बातें की है जो सिनेमास में अभी लग चुके हैं, होइट्स में आप जाकर इसको देख सकते हैं, इवन सिनेमास में भी ये मूवी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसके आए हैं। इसके अलावा और भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है अभी हाल ही में। 2 अक्टूबर को प्रेम कीटाणु मूवी आई है जिसमें वीर पहाड़िया इनको देखा जाएगा। इसके साथ में आफिया साईद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय इस मूवी में हैं। अभी तक क्रिटिक्स ने इसको 3 स्टार्स की रेटिंग दी है। लव लॉटरी, आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस मूवी। अक्षय ओबरॉय, हेली दारूवाला और कबीर दुहान सिंह की ये मूवी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द वन। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी, इसके VFX के बारे में, एंड ऑल्सो स्टार कास्ट भी बहुत ही बढ़िया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, अनूप सोनी और श्वेता तिवारी। फिल्म शायद उतनी अच्छी अभी तक नहीं चली है, पता नहीं क्या हुआ है। एक्टर्स एक्ट्रेसेस तो अच्छे अच्छे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तमन्ना भाटिया है। जहाँ तक मैं जज कर रहा हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवीज़ को, आई डोंट थिंक ही इज़ गेटिंग एन अवॉर्ड विनिंग स्क्रिप्ट। शेरशाह वॉज अ गुड वन, जिसमें इन्होंने अपना बहुत ही बढ़िया अभिनय दिखाया, लेकिन उसको छोड़कर जो फिल्में ये कर रहे हैं, द स्क्रिप्ट दैट ही इज़ गेटिंग, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स डूइंग जस्टिस टू द टाइप ऑफ एक्टर ही इज़। एनीवे, द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, इसको क्रिटिक्स ने अभी तक 2.5 स्टार्स ही दिए हैं। 25 सितंबर को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। ओए चिलरमार, ये फिल्म आई है 25 सितंबर को। प्राची बंसल, तेजस देवरुखर और सूफिया तनवीर इस मूवी में नज़र आए हैं। देयर सम अपकमिंग मूवीज़ जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, रब ने करा दी शादी, अभांश कुमार की मूवी 8 अक्टूबर को आने वाली है। इसके अलावा रजनी, द जेलर 2, रजनीकांत, मोहनलाल, राम्या कृष्णन और योगी बाबू की ये मूवी 15 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। 9 अक्टूबर को आ रही है आयुष्मान खुराना का उड़ता तीर, जिसमें सारा अली खान के साथ में ये नज़र आने वाले हैं। राम कपूर और गुलशन ग्रोवर भी नज़र आने वाले हैं। आई वॉच्ड द ट्रेलर फॉर दिस मूवी उड़ता तीर, एंड काफ़ी अच्छा हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी ये होने वाली है, रिलीजिंग ऑन द 9th of October। इसके अलावा द अनटोल्ड स्टोरी प्रहार, राजकुमार राव, वामिका गैबी, जयदीप अलावत और सिकंदर खेर की आने वाली मूवी है। 16th of October को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। एंड ऑन द सेम डे 16th October को प्रहार को टक्कर देने आने वाली है यामी गौतम विथ नई नवेली। आई एम बैकिंग यामी गौतम क्योंकि स्त्री 2 टाइप का फील आ रहा है, लेकिन यामी गौतम इज़ स्टेपिंग थिंग्स अप विथ आदिनाथ कोठारे, आदित्य कुलश्रेष्ठ और सुनीता रजवार के साथ में। फिल्म का नाम है नई नवेली, रिलीजिंग ऑन 16th of October।
1: You're listening to Chikash.

क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।

और दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Hey, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर फिलहाल Sunday Night Melodies में आप Bollywood Unplugged Music enjoy कर रहे हैं। अगर आप भी एक artist हैं and you do covers for Bollywood songs and आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो भाई get in touch with us and we can do something for you, या फिर we can collaborate and make some magic happen। अगर आप एक अच्छे artist हैं तो we can make you reach your target audience as well. हमारे पास में आप अपना गाना भेजें on buzz@humfm.com पर। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बढ़िया रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो हम रेडियो पर बजा सके। ऑफ कोर्स विद ऑल द राइट्स आपसे हम चाहते हैं टू प्ले योर सॉन्ग ऑन एयर। अगर आप जानते हैं, आप सोचते हैं कि आप एक बढ़िया आर्टिस्ट है, गेट इन टच विद अस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द मंथ ऑफ मई इज NZ म्यूजिक मंथ, तो उसी मंथ में हम लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी हमारे साथ में कॉन्टेक्ट आइए एंड वी कैन डू समथिंग टुगेदर। तो buzz@humfm.com पर आप हमें रीच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बातें करनी है बहुत सारी, एंड दिस इंक्लूड्स द रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026। दिस इज जस्ट अराउंड द कोना। 15th अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो इसके अपडेट्स भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे थोड़ी देर में लेटर इनटू दिस कार्यक्रम। एंड वेदर अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर करना है, कैसा आपका आने वाला सप्ताह गुजरने वाला है, जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो बस जुड़े रहें, इसके बारे में भी हम बातें करते चलेंगे राइट हियर ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। फिलहाल सनडे नाइट मेलोडीज में बॉलीवुड अनप्लग्ड आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं जिकाश,
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

All right, so let's quickly have a look at the weather in store for us for the coming week. Aaj to bas khatam hi hone wala hai, overnight badal kuch chhaye rahenge lekin barish hone ki sambhavna bahut zyada nahi hai. Now looking at Monday, a stellar of a day hone wala hai, 5th of October, bahut hi fine spells aap enjoy karne wale hain. ट्यूसडे को बादल और थोड़ी मोड़ी बारिश हो सकती है शाम के समय. वेंसडे को बदली और धूप का सिलसिला चलेगा. थर्सडे को और फ्राइडे को भी ऐसा ही वेदर रहने वाला है. तो मंगलवार को शायद कुछ बारिश हो, अन्यथा द कमिंग वीक इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बीइंग आउट एंड अबाउट. तो छतरी रख ले, मौसम का भरोसा तो नहीं है लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड वी आर गोइंग टू हैव ए स्टेला वीक इन टर्म्स ऑफ वेदर. 17 से 20 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर रहने वाला है ड्यूरिंग द डे. ओवरनाइट टेम्परेचर ऑन एवरेज 10-11 डिग्रीज रहने वाले हैं. तो देयर यू गो, मंडे को रात को शायद ज़्यादा ठंड पड़ेगी 8 डिग्रीज, क्योंकि दिन में क्लियर वेदर रहने वाला है तो रात को थोड़ी ज़्यादा ठंड रहती ही है ड्यूरिंग दिस सीजन. वैसे वी आर इन स्प्रिंग लेकिन ठंड जा नहीं रही है. हैव यू नोटिस्ड? आई हैव. देखते हैं क्या होता है आगे चलकर.

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: Non-stop Bollywood.
5: Jo bhi karte hain, shiddat ke saath karte hain.
4: Hum playing Bollywood.

Hey Kira and welcome back to Sunday Night Melodies. 9 बजने का आए हैं. अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं 104.2 FM and on Rova. Rova पर अगर हमें सुन रहे हैं, drop me a message कि आप कहां से सुन रहे हैं. आपको हम shout out करते चलेंगे जो भी कुछ आप कर रहे हैं. A shout out to all our राइट शेयर ऑपरेटर्स, उबा है या फिर लेटली ऐसो दीदी या फिर डीडी, बोल्ट आ गया है या फिर आप टैक्सी ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी हो आप सभी को हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में. प्लस ऑल दी नाइट शिफ्ट वर्कर्स जो तैयारियां कर रहे हैं टू क्लॉक इन एट 10 o'clock एंड ऑल दी आफ्टरनून शिफ्ट वर्कर्स जो क्लॉक आउट करने का इंतज़ार कर रहे हैं एट 10 o'clock ताकि आप अपने घर की ओर बढ़ सकें. जो भी आप कर रहे हैं आप सभी को हम शामिल कर रहे हैं इस घंटे में. ये घंटा डेडिकेट हम कर रहे हैं टू ऑल दी गज़ल लवर्स. कहकशन में आपके लिए हम एक से बढ़कर एक गज़ल लेकर आए हुए हैं. तो सिट बैक एंड रिलैक्स दिस ऑसम आवर ऑफ सम ग्रेट रेंडिशंस ऑफ लवली गज़ल्स बाय योर चहिते आर्टिस्ट. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लेट पंकज उदास जी. और इस पहले गज़ल में ऑल दी पीपल जो न्यूजीलैंड को घर बनाए हुए हैं बाहरी देश से आकर, चाहे फिजी से आए हैं, चाहे पाकिस्तान से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, चाहे इंडिया से आए हैं, नेपाल से आए हुए हमारे जितने दोस्त हैं, आप सभी को इस गज़ल में हम शरीक कर रहे हैं. स्वागत कर रहे हैं आप सभी का बुला क्योरा इन टू कहकशन. मैं हूँ जिकाश.

कहकशन में कुछ बढ़िया बढ़िया गजल्स आप एंजॉय कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाय सोनू निगम, जो इन्होंने गाया था बैक इन 1995. बेवफा सनम फिल्म आई थी और बहुत ही पॉपुलर इस गज़ल को सोनू निगम ने कर दिया था, सिंगिंग इट द वे ही सेंग. लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गज़ल हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं. लेकिन इसको सबसे पहले बार गाया था दी गज़ल गायक अताउल्ला खान. और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ये ओरिजिनली क्रिएट किया गया था एंड संग बाय दी लेजेंडरी पाकिस्तानी फोक गज़ल एंड सूफी आर्टिस्ट अताउल्ला खान ऐसा खेलवी. His original rendition is highly celebrated for its raw, vulnerable and minimalist arrangement compared to the polished Bollywood production. Ataullah Khan, he was said to be a master of painful heartbreak songs, often referred to as Dard Bhari Gayaki. And his vocal style is deeply grounded in traditional Pakistani folk and classical music, bringing a heavy, grief-stricken resonance to the track. Album के बारे में अगर हम बातें करें, द ट्रैक वॉज ओरिजिनली रिलीज्ड इन द अर्ली 1990s एज पार्ट ऑफ हिज वाइल्डली सक्सेसफुल प्राइवेट एल्बम्स सच एज बेदर्दी से प्यार का एंड ऑल्सो फीचर्ड कंपाइलेशंस लाइक राता. कंपोजिशन और पोएट्री के बारे में बातें करें तो अताउल खान कंपोज्ड द मेलोडी हिमसेल्फ. द लिरिक्स फीचर क्लासिकल उर्दू पंजाबी हार्टब्रेक मेटाफोर्स. तो That's the original one, लेकिन इसको बाखूबी निभाया है सोनू निगम ने एंड ही मेड द ट्रैक मोर पॉपुलर अमंगस्ट एवरीवन, हम कह सकते हैं. तो आइए एंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये दर्द भरा गज़ल.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
0: Indelible Homes, your building expert.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें.

0: Sathin Chikash.
1: वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर कहकशन फिलहाल जारी है बिटवीन 9 एंड 10 एवरी संडे नाइट को ये कार्यक्रम हम लेकर आपके लिए लेकर आते हैं। रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही बिजी साल 2026 रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस। एक तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद में अब तैयारियाँ हो रही हैं फॉर द रग्बी लीग वर्ल्ड कप एंड नेक्स्ट ईयर रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप होने वाला है। तो आइए बातें करते हैं अबाउट दी रग्बी लीग वर्ल्ड कप। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में होगा, दिस इज़ को होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ निगिनी। तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड हैपनिंग एट 10:05 PM, दैट इज 11 डेज अभी से अगर ले तो 11 दिन बाकी रह चुके हैं। उसके बाद में 16 अक्टूबर को सामोआ और फ्रांस खेलने वाले हैं एट 7:45 PM, ऑल दिस टाइमिंग इज़ इन न्यूजीलैंड टाइम फॉर्मेट। और उसी रोज़ 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और सामोआ खेलने वाले हैं इन द वीमेंस डिवीजन। पापुआ निगिनी फ्रांस वीमेंस टीम खेलने वाली है 17 अक्टूबर को 3:15 PM पर, और उसी रोज़ पापुआ निगिनी और लेबनन मेंस टीम भी खेलने वाली है। नाउ लुकिंग एट द पूल ड्रॉज, दो पूल्स हैं, पूल ए है एंड देन पूल बी एंड सी, इसको कंबाइन किया गया है। पूल ए में है ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी और न्यूजीलैंड। पूल बी एंड सी कंबाइंड इंग्लैंड, फ्रांस, लेबनन, पापुआ निगिनी, सामोआ एंड टोंगा। द टॉप टू टीम्स फ्रॉम द कंबाइंड टेबल ऑफ पूल बी एंड सी विल प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल्स एंड देन द टॉप टू टीम्स फ्रॉम पूल ए विल बी गोइंग टू द सेमीफाइनल्स। तो ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी, न्यूजीलैंड में से दो टीम सेमीफाइनल्स में जाएंगी एंड देन पूल्स बी सी में इंग्लैंड, फ्रांस, लेबनन, पापुआ निगिनी, सामोआ एंड टोंगा में से दो टीम्स जाने वाली है सेमीफाइनल्स में। आपको क्या लगता है, पूल्स बी और सी जिसमें है इंग्लैंड, फ्रांस, लेबनन, पापुआ निगिनी, सामोआ एंड टोंगा, इनमें से कौन सी दो टीम जाने वाली है? आई एम प्लेसिंग माई बेट्स ऑन पापुआ निगिनी एंड टोंगा टू क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स। और फिर पूल ए में से ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, अगर अपसेट नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स, दैट्स माई बेट, अगर कोई मेजर अपसेट्स नहीं हुए तो। लेकिन फिजी हैज़ अ टेंडेंसी टू टर्न थिंग्स अराउंड, दे वुड बी द अंडरडॉग्स इन पूल ए। तो देयर यू गो, दैट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ द पूल्स फॉर दिस ईयर्स रग्बी लीग वर्ल्ड कप।
2: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
2: India आ रहा है Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को All Whites के अगेंस्ट Go Media Stadium Thursday 12 November को एक rare chance अपनी national team को न्यूजीलैंड की जमीन पर live देखने का. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets सिर्फ $20 से शुरू, kids $10 से, plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.

9 से 10 बजे के बीच में कहकशन कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑन हम संडे नाइट मेलोडीज में हर संडे को. एंड इफ़ यू थिंक कि आप कोई खास गज़ल सुनना चाहते हैं जो शायद अभी तक हमने नहीं प्ले किया है ओवर द वीक्स, तो गेट इन कॉन्टेक्ट विथ अस ऑन 5599 या फिर buzz@humfm.com पर आप ईमेल करें आपके रिक्वेस्ट के साथ में. वी विल ट्राई टू गेट द राइट्स फॉर दोज गज़ल्स एंड वी विल भरसक प्रयास करेंगे टू गेट दैट गज़ल ऑन एयर इन दिस प्रोग्राम, ताकि आप भी इंजॉय करें और आपके साथ में हम भी कुछ रिफ्रेश्ड गज़ल्स इंजॉय कर सकें. तो गेट योर लिस्ट टुगेदर, चाहे एक हो दो हो, जितना भी आप गज़ल्स चाहे, जो भी आप चाहे, अगर आपने अभी तक उसको नहीं सुना है हम पर, तो वी विल हैव अ लुक, वी विल हैव अ डिस्कशन एंड वी विल लुक इनटू व्हाट गज़ल्स वी कैन ब्रिंग फॉर यू ऑन एयर. फिलहाल आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों को इन दिस ऑसम ऑसम नेक्स्ट गज़ल.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: संडे नाइट मेलोडीज कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं। 10 बजने को आए हैं, पीपल हैव क्लॉक्ड इन फॉर द नाइट शिफ्ट एंड पीपल हैव क्लॉक्ड ऑफ फॉर द आफ्टरनून शिफ्ट। अगर आप काम खत्म करके घर की ओर जा रहे हैं तो बस हौले हौले आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, कोई भी हड़बड़ी ना करे, और रास्ते पर अगर आप हैं तो स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो धक्का धुक्की करते हैं, जो टेल गेटिंग करते हैं, अपने आप को आप सेफ रखें। डोंट ट्राई टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रोड रेज, क्योंकि किसी के मुंह लगना आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। दे आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल अराउंड अस, तो जितना सेफ आप रहे, अगर आपको कोई कट ऑफ कर रहा है ऑन द रोड, बेनिफिट ऑफ द डाउट आप दीजिए कि शायद उनका उनको जुलाब लगा हुआ है, इसीलिए वो इतना रफ ड्राइविंग कर रहे हैं एंड दे हैव कट यू ऑफ। उनको जाने दे और आप ही थोड़ा 2-3 सेकंड उनसे पीछे हो जाए ताकि यू आर सेफ एंड सेफली अपने चाहने वालों तक आप पहुंच सकें। काम शुरू कर रहे हैं तो टेक 5, इसके बारे में तो आप जानते हैं, आसपास देख ले कि एवरीथिंग इज़ सेफ अराउंड यू, और आपके काम करने से आप किसी को अनसेफ नहीं कर रहे हैं। अगर इधर उधर कुछ चीज़ें पड़ी है तो समेट ले एंड वॉक सेफली ताकि काम ख़त्म करके आप कल सुबह दोबारा अपने घर पर सेफली पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ में आइए शुरू करते हैं दिस ऑसम आवर ऑन संडे नाइट मेलोडीज। हर संडे को 10 से 12 बजे के बीच में हम आपके लिए लेकर आते हैं 90s दिल से, तो 2 घंटे के लिए 1990s के awesome tracks आपके साथ में हम शेयर करते चलेंगे। मैं हूं जिकाश, सनडे नाइट मेलोडीज में आपका दोबारा स्वागत हम कर रहे हैं। क्योरा
1: हम पर

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: One of our favorite New Zealand artists, Shelley Sethia. इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं और एक ऑसम सा कैचअप किया है शैली सेतिया के साथ में हमारे रूजबे और सैंडी ने. और इस कैंडिड एंड रिवीलिंग कन्वर्सेशन में शैली सेतिया ओपन्ड अप अबाउट हर जर्नी फ्रॉम न्यूजीलैंड टू इंडिया, द रियलिटीज ऑफ नेविगेटिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज एन आउटसाइडर एंड द चैलेंजेस दैट कम विद ट्राइंग टू फाइंड योर प्लेस इन एन इंडस्ट्री वेयर कनेक्शंस, expectations and perceptions can play a huge role. तो बहुत ही आई ओपनिंग एपिसोड और बड़ा ही फन फील्ड एपिसोड शैली के साथ में सैंडी एंड रूजबे ने क्रिएट किया है, जहाँ पर दे टॉक अबाउट द गुड, द बैड एंड द ब्रूटली ऑनेस्ट साइड ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ बींग एन आर्टिस्ट एंड डीलिंग विद पब्लिक ओपिनियन टू द स्ट्रगल्स ऑफ बींग एन आउटसाइडर एंड बिल्डिंग अ करियर ऑन योर ओन टर्म्स. तो दिस कैंडिड कन्वर्सेशन अनफिल्टर्ड में आप सुन सकते हैं. ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पर एंड यू विल गेट द लिंक फॉर दिस एपिसोड.
0: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

सनातन वर्ल्ड कप ये रैप अप हुआ है आज. टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द 11th सनातन वर्ल्ड कप, जिसमें बहुत सारे खेल हुए, बहुत सारी टीम्स आई हुई थी अलग अलग देशों से, एंड कई सारे लोग आए थे जिन्होंने खेलकूद में भाग लिया है, एक दूसरे से इन्होंने मीट एंड ग्रीट किया है, एंड क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ हैप्पी पीपल हैव गोन बैक होम. लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ निराशाएं व्यक्त की हैं एंड गॉट इन टू कॉन्टेक्ट टू से व्हाट दे वांटेड. तो हमने कहा भाई आई एम नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, वी वर जस्ट द मीडिया आउटलेट जहां पर हम आपको जानकारियां दे रहे थे. एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन जिन्होंने हाथ बटाया है टू मेक दिस 11th सनातन वर्ल्ड कप अ ग्रैंड सक्सेस. अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, यू नो फीडबैक इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ताकि आइंदा से और भी बढ़िया और भी बेहतर इस इवेंट को बनाया जा सके. तो फेसबुक पेज पर जाइए, सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड इनका अपना फेसबुक पेज है, वहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं एंड ईमेल भी है sanatanworldcup@gmail.com. यहाँ पर जाकर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, कितने खुश होकर आप गए हैं, या फिर यू हैव नो नोटिस्ड कि कुछ चीज़ें और भी बेहतर की जा सकती, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. चीज़ें चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसमें कुछ ना कुछ और सुधार किया जा सकता है. तो सजेशंस आप भेज सकते हैं sanatanworldcup@gmail.com के ईमेल्स पर, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो ऑर्गेनाइजर्स है दे विल टेक योर कमेंट्स ऑन बोर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप वुड बी इवन बेटर देन द वन दैट वी जस्ट विटनेस. Shout out to all the members of the Sanatan World Cup Sports and Cultural Incorporated, jinhone tirelessly work kiya hai to make this Sanatan World Cup a grand success. And also a shout out to all the awesome sponsors and supporters. Hum par aapke

हमारी विनिंग टीम मतलब सैंडी और रुजबे ये तो बाली जा रहे हैं, इसके बारे में तो आपने सुना ही है। टू कंट्रीज वन एपिक एडवेंचर एंड जीरो स्ट्रेस, इसके लिए जो प्रोमोशनल टिकट्स है 50% सोल्ड आउट। टुक टुक थ्रिल्स से लेकर बीच क्लब चिल्स, ये सब आप एंजॉय करने वाले हैं बाली एंड बैंकॉक गेटवे विद सैंडी एंड रुजबे। नेक्स्ट ईयर मार्च में ईस्टर गेटवे ये प्लान हो चुका है। ये एक ऑल इंक्लूसिव हैसल फ्री एडवेंचर गेटवे रहेगा और आपको बस टिकट्स बुक करने हैं एंड अपने बैग्स पैक करने हैं फॉर एन एपिक एडवेंचर। फ्री सेकंड एंड थर्ड क्रूज पैकेज ऑफ कार्निवल क्रूज ये भी वैलिड है फॉर एन ईयर एंड ट्रांसफरेबल टू एनीवन इफ बुक्ड बाली एंड बैंकॉक बाय दिवाली, ये दिवाली प्रमोशन के लिए जारी किया गया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है इसके लिए यू कैन ज्वाइन सैंडी एंड रुजबे, चाय पे चर्चा करने वाले हैं जिनसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट फ्लाइट्स होटल्स आइटिनरी कॉस्ट्स एंड क्या आप एक्सपेक्ट करने वाले हैं और क्या आप लेकर जा सकते हैं लेकर नहीं जा सकते हैं, ये सभी बातें आप सैंडी और रुजबे से कर सकते हैं। ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पर, आपको फॉर्म मिलने वाला है टू ज्वाइन देम फॉर चाय पे चर्चा। क्वेश्चंस आप रेडी कर ले और आंसर्स सैंडी एंड रुजबे आपको देने वाले हैं। एज आई सेड 50% सोल्ड आउट एंड स्पेसेस आर लिमिटेड। सन टूअर्स को आप कॉल करें ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट इज 0800 4 786 8688 टू सिक्योर योर स्पॉट बिफोर इट्स ऑल गॉन। You're listening to Chikash.

बहुत ही बढ़िया न्यूज मेरे हाथ लगी है एंड दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर ऑल आवर इस्लामिक फॉलोअर्स. हमारे इस्लामी भाई बहन जो है स्पेशली इन कैलिफोर्निया, अगर आप हमें सुन रहे हैं इन कैलिफोर्निया, आई होप समवन आउट देयर इज लिसनिंग थ्रू रोवा. अगर आपके वहाँ पर परिवार वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कैलिफोर्निया में हैं, फ्रेंड्स हैं एंड वो फिजी, न्यूजीलैंड, इंडिया, नेपाल से बिलोंग करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो हमें सुने, तो लेट देम नो अबाउट द रोवा ऐप, क्योंकि वी ट्राई टू कैटर फॉर द यू नो द ग्रेटर ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो द न्यूज़ इज़ अबाउट कैलिफोर्निया एंड क्यों ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि California has formally recognized Eid al-Fitr and Eid al-Adha as state holidays after Governor Gavin Newsom signed the AB 2017 on September 28, 2026. The law adds both Islamic celebrations to the state holiday calendar and allows state and school employees to use existing leave to observe them. K-12 schools and community colleges may also close for Eid through locally negotiated agreements. The designation does not automatically require state offices, schools, courts or private businesses to close, nor does it establish a universal paid holiday. Again, I think this is a win for the Islamic community in California, jahan par aram se they can celebrate Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Way to go, California. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुनें।

Alright, Sunday Night Melodies के final hour में हम आ चुके हैं. The 4th of October. ये बस ख़त्म होने वाला है. एक घंटे में हम भी यहाँ से निकल कर चले जाएंगे अपनी घर की ओर. तो आप hopefully you are enjoying the program so far. मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है. I'm loving all these songs जो हमने लाइनअप किए हैं आपके लिए. Now, coming into the final hour, हम आपका सुकून आपको लौटाना चाहते हैं. Whatever you're doing, keep humming. और ये जो लाइन अप ऑफ सॉन्ग्स है हमने आपके लिए चुना है, इसको एंजॉय करते रहे. हाथ में शायद आपका एक बहुत ही प्यारा सा वार्म ड्रिंक है, आप इसको एंजॉय करते रहे. और हम बीच बीच में आने वाले हैं टू टेल यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट्स हैपनिंग अराउंड अस. हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपसे हम किस तरह की मदद चाहते हैं इन मेकिंग आवर प्रोग्राम्स मोर यू नो बेटर फॉर यू. तो ये कुछ जानकारियाँ हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं. फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद दिस लवली ट्रैक फ्रॉम रूप कुमार राठौड़.

ROVA, Rover, that is the app जो आपके फ़ोन पर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि through that you get in touch with us, चाहे हमारे promotions हो चाहे हमारे events हो and not just हम we are a part of a bigger family, MediaWorks, ये तो आप जानते ही है न्यूजीलैंड listens to us, तो क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा सिस्टर स्टेशंस है जिसके साथ में होकर कई सारे एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कई सारे इवेंट्स और प्रमोशंस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं. नाउ इफ़ यू गो टू रोवा एंड आई राइट नाउ एंड गो टू दी विन सेक्शन, आपको पता लगेगा कि कितने सारे प्रमोशंस चल रहे हैं, जैसे कि द ग्रेट क्लासरूम एस्केप जहाँ पर एल्पाइन आइस के साथ में होकर आप ऑसम ऑसम प्राइजेस जीत सकते हैं. मो एफएम कैंटरबरी में है एंड हैज़ टीम्ड अप विद एल्पाइन आइस टू गिव वन लकी क्लास द चांस टू डिच द क्लासरूम एंड हेड टू द आइस फॉर एन आफ्टरनून ऑफ स्केटिंग लाफ्स एंड स्कूल हॉलीडे फन. तो ये आपको कैसे एंटर करना है, बस आपको बहुत ही सुपर बहुत ही सिंपल है, एंटर योर चाइल्ड्स क्लास इन डिटेल्स इन दैट फॉर्म जो आपको मिलेगा रोवा ऐप पर. नाउ दैट्स वन. द नेक्स्ट वन इज समा आने वाला है, समा के लिए कई सारे फेस्टिवल्स भी लाइन अप हो चुके हैं, तो इन सारे फेस्टिवल्स के लिए आपको टिकट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लेनवे फेस्टिवल हो चुका है और दी लेक्स फेस्टिवल, इसके लिए भी टिकट्स दिए जा रहे हैं. दी मोशन एनजेड टूआ 2027 के लिए, कई मोशंस एनजेड टूआ ये भी होने वाला है 27 में, इसके लिए भी टिकट्स आप जीत सकते हैं जस्ट बाय गोइंग टू रोवा एंड एंट्रिंग योर डिटेल्स इन द रेस्पेक्टिव प्रमोशंस. तो रोवा खोले फटाफट और हमें आप सुने रोवा पर. वाइल लिसनिंग गो एंड चेक आउट द विन सेक्शन अंडर रोवा और वहां पर ढेर सारे प्रमोशंस में आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
9: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

0: Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: हमारा तो यहाँ से निकलने का समय हो चुका है. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए राइट फ्रॉम 6 PM टिल नाउ. अब हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह शनिवार को विद अनदर सेगमेंट ऑफ रेडियो पब. तब तक के लिए आप अपना भरपूर ध्यान रखें, जो भी कर रहे हैं मेक श्योर सेफ्टी इज पैरामाउंट, कीप हाइड्रेटेड एंड स्टे फिट एंड हेल्थी. मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए आप सभी को जिकाश का नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे टिकट्स बुक हो गए।

0: ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Night flight on.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: मुझे हिट गाने।
3: Night Fly.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: MediaWorks complaints. How can I help?
2: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
1: Nice.
2: And you talked me into creating this funny character.
1: Great.
2: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
1: Are you?
2: Yes.
1: Are you Bobby the Baker?
2: Yes.
1: What's that thing you do again?
2: Stop it.
1: You bring the mouth.
2: Stop it.
1: I'll bring the pie.
2: Stop it, please.
1: Okay.
2: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
1: So what's the problem?
2: My name's Bruce.
3: Advertise with MediaWorks.
1: New Zealand listens to us.
4: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
5: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से हाय हाय

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्मड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
10: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 5644424.
0: Playing Bollywood's biggest hit.

ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है है है है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है।

0: सनी साइड अप।
1: तो चलिए आज की सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं, एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम इंडिया इन वाराणसी, जहां पर 75 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार। और राजकुमार जी की कहानी जो है ये इंटरनेट पर वीडियोस के जरिए, लोगों की वायरल यू नो स्टोरीज के जरिए जो है ये सामने आई है। इनके बारे में कहा जाता है कि वाराणसी के जो घाट है यहाँ पर ये हर रोज जाते हैं, तलाशते हैं और ढूंढ कर लेकर आते हैं लोगों द्वारा फेंके शादियों के कार्ड, ब्रोकन चूड़ियाँ जो होती हैं, और मेटल का कोई एक बिट्स एंड पीस हो, पेपर्स का कुछ यू नो पड़ा हो सामान, तो ये लेकर आते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो रबिश है, दे डोंट पिक इट अप एंड दे डोंट क्लीन इट, लेकिन इनके लिए जो बाकियों का रबिश है ये बन जाता है आर्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब ये उठाकर लेकर आते हैं तो इनका एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर ये बैठते हैं, और फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर ये एक ब्यूटीफुल डेकोरेशन जो है इसी वेस्ट के सामान से बनाते हैं। एंड ही एक्चुअली मेक्स दिस थिंग्स, जहाँ पर इनका कहना है कि वाराणसी की कहानी, यहाँ के लोगों की कहानी जो है ये इन छोटी मोटी चीज़ों के ज़रिए जो अपना जो भी डेकोरेशन जो भी आर्ट बनाते हैं उसके ज़रिए ये लोगों तक पहुँचाते हैं। And his beautiful work has, you know, come all the way from India to New Zealand. एक वीडियो के ज़रिए जो एक पर्टिकुलर पेज जो है इन्होंने पोस्ट किया था अपने उस पर जाकर, इंस्टा के अकाउंट पर जाकर, जिसे बेटर इंडिया के नाम से ये यू नो पोस्ट करते हैं या अपडेट करते रहते हैं। तो इसके ज़रिए एक तो ये चीज़ कि कभी कभी जो चीज़ जो आप फेंक देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि उसकी खूबसूरती क्या होती है जब तक कोई और उसे बदल कर उसका अलग रूप आपके सामने ना रखे। और दूसरी चीज़ कि रिसाइकल एंड रीयूज़ ये कोई नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, इट हैज़ बीन देयर सिंस मेनी ईयर्स, बस अपना अपना तरीका होता है ना।
2: बिल्कुल, एक तो वो आर्ट जो है ये प्रेजेंट तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ यू नो साफ सफाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: एब्सोल्युटली। तो आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैन राजकुमार जी, जो कि 75 इयर्स के हैं और ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी इंडिया से इनकी कहानी आज सुबह सुबह ऑन हम आपको हम सुना रहे थे। 16 मिनट हो रहे हैं 6:00, मंडे 5th of October, इसका मतलब अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है और ये स्पेशल दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो रिमाइंड करा रहे हैं आपको 5599 यानी 5599 इस नंबर पर आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है अपने बर्थडे ग्रीटिंग्स, और आप हमें बता सकते हैं कि आज का ये दिन आप क्या कुछ स्पेशल जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: हे देखो हम आ गए।
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
6: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
10: कॉफी द यूजुअल,
11: how about the unusual?
12: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
13: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki, jaise ghar par milti thi. To milwate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinade karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
14: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
15: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं, डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
14: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
16: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। That's commonwealthvault.co.nz।
5: The beat of Bollywood.
0: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko. Global headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, भारत के हरियाणा कांग्रेस में फैक्शनलिज्म फिर सामने आई है, जहां फॉर्मर स्पीकर कुलदीप शर्मा ने 2029 इलेक्शंस के लिए किसी भी नेता को सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करने की सलाह दी है। पंजाब इंचार्ज सचिन पायलट के कलेक्टिव लीडरशिप का फॉर्मूला का सपोर्ट करते हुए शर्मा ने कहा कि किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित चुनाव से पार्टी को पहले भी नुकसान हुआ है। शर्मा का ये निशाना सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सीएम फेस बनने के चल रहे कैंपेन पर माना जा रहा है। फिजी में फिजी लेबर पार्टी लीडर महेंद्र चौधरी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जल्दबाजी में पास करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एमपीज को इसे समझने और डिबेट करने का पूरा वक्त नहीं मिला। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार चौधरी ने एनएफपी लीडर विमान प्रसाद पर अपने स्टैंड से पलटने का आरोप लगाया और कहा कि उनके सपोर्ट की वजह से सरकार को बिल आगे बढ़ाने के जरूरी नंबर्स मिले हैं। स्पोर्ट्स में अगर देखें, यूएफा नेशंस लीग के मैचेस आज एक बार फिर जारी हैं। आज अजरबैजान की जीत लिथुआनिया के खिलाफ 1-0 से हुई। अभी कोसोवो और ऑस्ट्रिया दूसरे हिस्से में 0-0 से बराबर हैं और माल्टा की जीत एंडोरा के खिलाफ 1-0 से हो रही है। आज के बाकी के मैचेस में 8:15 इसराइल आयरलैंड से खेलेगा, वेल्स की भिड़त डेनमार्क से होगी, पोर्चुगल नॉर्वे का सामना करेगा, नेदरलैंड सेबिया से खेलेगा और ग्रीस की भिड़ंत जर्मनी से होगी। रूस्टर्स टीम ने इस साल के एनआरएल टाइटल को अपने नाम कर लिया है। कल हुए ग्रैंड फाइनल में रूस्टर्स की जीत नाइट्स के खिलाफ 19-18 से हुई। एशियन गेम्स मेडल टैली पर चाइना ने अपनी पकड़ जो है ये सबसे मजबूत बनाए रखी। चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है इस गेम्स के दौरान जीते हैं। उनके पास 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जापान के पास 83 गोल्ड, 95 सिल्वर, 91 ब्रॉन्ज मेडल और वो दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया है, जिनके पास 39 गोल्ड, 43 सिल्वर और 68 ब्रॉन्ज मेडल्स रहे। और इंडिया के पास चौथा पोजीशन रहा, जहां पर उन्होंने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
5: Most wanted.
17: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्वाति शर्मा और साथ में नवराज हंस की आवाजों में आपके लिए आज का चार्ट बस्टर हम शामिल कर रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल अगर देखिए समय की ओर तो इधर हमारे स्टूडियोज में अभी तो 30 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। सबसे पहले तो आज मिस्टर माटा माटा ने सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग कहा है, हैप्पी मंडे विश किया है एंड ऑल द वे फ्रॉम नैंडी इन फिजी से ये हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरी ओर आज बॉबी मान जी, इनका भी मैसेज आया है, इन्होंने सभी को जय शिव शंभू कहते हुए कहा है वो ब्यूटीफुल वीक अहेड। और इसके साथ साथ विनीता जी ने भी अ वेरी गुड मॉर्निंग और ग्रेट वीक जो है ये विश किया है सभी को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस हमें सेंड करने के लिए
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समय की खातिर। अभी 29 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आर माधवन, दिशा पाटनी, श्रेया सरन ये सभी अक्षय कुमार के साथ शामिल हो चुके हैं साजिद खान की अपकमिंग कॉमेडी मूवी के लिए।
0: अच्छा,
1: और अभी टाइटल नहीं दिया गया है इस फिल्म को और एकता कपूर इसे प्रोड्यूस कर रही हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो अभी रिवील नहीं किए गए हैं। आर माधवन और अक्षय कुमार आई थिंक इन्होंने एक साथ केसरी चैप्टर 2 में काम किया था।
0: हाँ।
1: और उसके बाद ये दोनों वापस एक साथ काम करने जा रहे हैं। इन दोनों ने यू नो कोर्टरूम ड्रामा में राइवल्स जो है ये प्ले किया था। दिशा पाटनी और श्रेया सरन हैव आल्सो कम ऑन बोर्ड द प्रोजेक्ट एंड विल प्ले द रोमांटिक लीड्स। और कहा जा रहा है मिडिल एज मैन जो हैं और उनके जो कॉमेडी ऑफ एरर्स होती हैं जिंदगी में उस पर ये मूवी जो है ये बेस्ड हो सकती है। अक्षय कुमार जो है इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे जैसे ही वो सम्मुख में काम जो है ये पूरा कर लेते हैं। ये कनिष्क वर्मा की एक एलियन सर्वाइवल थ्रिलर है।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। दूसरी ओर मेरे पास भी खबर है, इट्स अबाउट द मूवी दृश्यम 3। इसके बारे में कहा जा रहा है कि दृश्यम द कंक्लूजन इस फिल्म के बारे में बताया गया, इतनी बड़ी ये साबित हो रही है कि जो लास्ट दृश्यम आई थी विच वॉज दृश्यम 2, फर्स्ट वीकेंड ऑफ ओपनिंग में दृश्यम द कंक्लूजन ने दृश्यम 2 से भी ज़्यादा कमाई जो है ये की है। तो पहला वीकेंड दृश्यम 2 ने जितना कमाया था उससे ज़्यादा दृश्यम द कंक्लूजन ने अपने पहले वीकेंड में कमाया है। एंड नॉट जस्ट दैट बट इसे इनफैक्ट इस फिल्म को ओपनिंग डे का सेकेंड हाइस्ट ऑफ 2026 जो है ये माना गया है, बिकॉज आफ्टर धुरंधर द रिवेंज 2026 में जो मूवी आई है अपने ओपनिंग वीकेंड में इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई की है। सो इट्स द सेकेंड हाइएस्ट वन आफ्टर धुरंधर द रिवेंज, इट्स डूइंग क्वाइट गुड। और अभी बहुत से अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं इसके बारे में। आई हैवन सीन द मूवी सो आई डोंट रियली नो व्हाट्स टू एक्सपेक्ट इन दिस फिल्म, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि इस फिल्म की कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अब एक नई तारीख जो है ये लोगों को याद रहेगी। जब दृश्यम 1 और 2 आई थी तो 2 अक्टूबर इज समथिंग दैट पीपल वर क्वाइट फोकस्ड ऑन, वो तारीख लोगों को याद रह गई थी ना। तो दृश्यम द कंक्लूजन देखने के बाद कहा गया एक नई तारीख जो है ये अब लोगों को हमेशा याद रहेगी। व्हाई? वेल यू हैव टू वॉच द मूवी फॉर दैट जस्ट टू फाइंड आउट। फिलहाल चलिए आपके लिए थोड़ी देर बाद हम लेकर आएंगे आज 5 अक्टूबर से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां, एज इन आज क्या कुछ मार्क किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड आपको बताएंगे आज का हमारा पहला सवाल क्या है जिसका जवाब देते हुए हमारे साथ प्रोग्राम में आप बेशक शामिल हो सकते हैं।
2: Accurate traffic.
3: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
4: Fine spells with plenty of cloudy patches as well today, a high of 17 degrees. Coming into the city, northern motorway flowing pretty well. 17 minutes Constellation Drive to town, 37 from Silverdale. Slowing at Silverdale, heavy at Constellation and then slow to Sunnynook. Northwestern, better traffic but flowing well. Southern 22 in from Monaco, 37 dreary to the city, slow at Manurewa and Papatoetoe.
3: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
5: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
6: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
2: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
7: James, this is a radio ad.
2: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: अभी 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. आज कई स्पेशल डेज जो है ये मार्क किए जा रहे हैं. आज अक्टूबर 5th है ना, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है. वर्ल्ड डे ऑफ बुलिंग प्रिवेंशन ये आज मार्क किया जा रहा है. वर्ल्ड हैबिटेट डे ये भी 5th ऑफ अक्टूबर को रहता है. इसके अलावा के दिन को अगर देखें वर्ल्ड मेनिनजाइटिस डे ये आज मार्क किया जा रहा है. और इसके साथ आज जो चीज़ें हैं बलून्स अराउंड द वर्ल्ड डे. बलून्स अराउंड द वर्ल्ड डे ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा है. एंड कई कंट्रीज में आज बी नाइस डे है.
3: सिर्फ आज? ओके, इंटरेस्टिंग. अच्छा, तो इसमें से जो भी आपका दिल करे वो आप ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं. जो आपको लगे दैट नीड्स योर अटेंशन एंड योर टाइम, तो आप ज़रूर इस पर अपना ध्यान जो है ये दीजिए, पे अटेंशन टू इट. बट दूसरी ओर याद रहे कि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग जो डिटेल्स है ये हम लेकर आते रहेंगे. आज जैसे कि आपने कहा वर्ल्ड टीचर्स डे ना, तो ये भी आज सेलिब्रेट करेंगे ज़रूर. और उम्मीद है कि इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे. फिलहाल चलिए आपके लिए आज का हमारा पहला सवाल जो है ये हम लेकर आ रहे हैं. आज जो मूवी है ये आपको गेस करनी है, और इस मूवी के बारे में यू नो हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, एज इन इसका प्लॉट जो है ये आपको हम बताएंगे विदाउट गिविंग यू द एंटायर यू नो स्टोरी अवे. और आपको गेस करनी होगी कि ये कौन सी मूवी है. तो आपको बतानी है कि ये जो मूवी जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एज अ बॉलीवुड मूवी फॉर द डे, इस फिल्म के बारे में आपको बता सकते हैं कि इसमें द स्टोरी इज़ बेसिकली बीइंग सेड कि ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं ये इनकी रियल लाइफ पर आधारित है. इट्स बेस्ड ऑन द डायरेक्टर्स रियल लाइफ, समथिंग जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में है ये.
2: ओके.
3: दूसरी चीज़ आपको इसके बारे में जो हम बता सकते हैं वो है ये कि इस फिल्म की कहानी जो है इट इज़ बेसिकली अबाउट म्यूजिक डायरेक्टर और उनकी जो सिचुएशन है जहाँ पर ही हैज़ टू फैमिलीज, और उनकी एक जो पत्नी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की है जिनकी वजह से उनको उनकी फैमिली उनकी माँ एक्सेप्ट नहीं करती है. जिसके बाद उनकी एक और एक शादी जो है ये होती है ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन जो उनकी माँ एक्सेप्ट करती है. सिचुएशंस हैपन एंड दिस गाय पासेस अवे, और इनके पास जो इनकी फर्स्ट वाइफ है उनके साथ दो बच्चे जो है ये रह जाते हैं.
2: ठीक है.
3: तो जो बच्चा छोटा था वट एवर दिस बॉय एक्सपीरियंसेस, ये बड़ा होकर अपनी एक बहुत यू नो दर्दनाक और ड्रेडफुल सिचुएशन के दौरान अपनी लाइफ की जो स्टोरी है ये याद करते हैं. और अपने छोटी भाई को कहीं ना कहीं उस स्टोरी के बारे में, उस कहानी के बारे में, सिचुएशन के बारे में जो ये बताते हैं, समथिंग रिलेटेड टू देयर मदर, जो शायद छोटे भाई को नहीं पता था लेकिन बड़े भाई को पता था. ना इस फिल्म के बारे में हम आपको बताएं कि एक चीज़ जो शायद आपको इस फिल्म की याद दिलाए वो है इस फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना, बहुत ज्यादा पॉपुलर गाना.
2: ओके.
3: आई वुड से और
2: हाँ पता नहीं कौन सा गाना था.
3: जिस तरह का एक्सप्रेशन आपने दिया मुझे लगा आपको पता चल गया कौन सा गाना है. यू स्टिल डोंट नो?
2: ना.
3: ओह माय गॉड. ओके एनीवेज, तो अच्छा इस फिल्म का एक बहुत पॉपुलर गाना है, जब भी ईद का टाइम आता है ना तो मस्ट ये गाना लोग सुनते हैं. चांद को जब देखते हैं या पहला चांद जब यू नो ईद का देखने को मिलता है सुनते नहीं ऐसे लोग. हम आरजेज तो ये गाना बजाने लगते हैं. वो एक बात है. बट इट्स मोर लाइक अ रोमांटिक सॉन्ग, इट्स नॉट अ रिलीजियस सॉन्ग. इट हैज गॉट नो कनेक्शन विद ईद, लेकिन फिर भी हम बजाते हैं.
2: चांद पर गाना है.
3: हाँ, चांद पर बेस्ड है.
2: मुझे पता, आप पता है.
3: अभी मैंने जो क्लू दिया ना उसके जरिए आई थिंक यू शुड बी एबल टू टेल. बट ये जो पर्टिकुलर मूवी है इट्स अ वन वर्ड मूवी, सिर्फ एक ही नाम है इस फिल्म में, फिल्म के टाइटल में सिर्फ एक वर्ड एंड देन यू गेट द नेम ऑफ द मूवी.
2: या
3: वन वर्ड मूवी. Right?
2: Very easy, very easy.
3: हाँ, क्योंकि मैंने इतने सारे clues जो दिए हैं. Now I've given you all the clues for you to guess आज की फिल्म. अपना आंसर आप हमारे पास जरूर भेजें on 5599 और BF लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर भेज देना है हमारे पास. तो याद रहे आज की जो हमारी बॉलीवुड मूवी है दिस इज अपेरेंटली बींग सेड कि इट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. दूसरी चीज, फिल्म की कहानी इज अबाउट अ म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी एक सिचुएशन होती है जहाँ पर उनकी माँ इज नॉट अप्रूविंग ऑफ हिम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट एनी वट वाइज ही गेट्स मैरिड. फिर उनकी माँ उनकी एक और एक शादी जो ये कराती है विद द गर्ल जो उनको चाहिए था ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन. लेकिन इनके दो बच्चे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है. एंड मैनी ईयर्स लेटर जब एक बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन इनकी लाइफ में होता है, तो जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं अब, और बड़ा भाई इस सिचुएशन को पास करते थ्रू, इस सिचुएशन से जुड़े कुछ डिटेल्स को यू नो एक्सप्लोर करते अपने छोटे भाई को, अपनी माँ और अपनी कहानी जो ये बताते हैं हाउ दे हैव एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स. फिल्म के बारे में ये हमने आपको बताया है कि इसमें एक बहुत पॉपुलर गाना है, और जब भी चांद को देखते हैं तो ये गाना जो है ज़रूर दिमाग में तो आता ही है कि यार ये गाना है. रोमांटिक सॉन्ग है एंड इट्स अ वन वर्ड मूवी. कौन सी मूवी है ये, थोड़ी देर बाद आपके आंसर जरूर देखेंगे, पर तब तक के लिए BF स्पेस योर आंसर योर नेम 5599 पर आपको सेंड करना है.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ
5: ये गलत बोल दिया यार
4: और पहनता भी नहीं है उसको
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो
5: अभी ब्रांड हो गया ना
4: रुजबे के बाल लगे उस
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2. Accurate traffic.
7: Everything for gardens, lawns and landscaping at Dalton's Landscape Supplies.
8: Fine spells today, plenty of cloud, a high of 17 degrees. Northern motorway, if you're coming in, quite heavy gravel to Constellation. Not a big patch of the motorway, but it's quite a slow period. Otherwise, we're pretty much okay. Slowing at Silverdale too. 16 in from Constellation at 42 Silverdale to town. Northwestern 20 in from Massey, slow from Grey Lynn. Southern 26 in from Monaco, slow patches Manurewa to Mount Wellington.
7: Easy ordering or pickup. Daltonslandscapes.co.nz.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीज

0: BMI.
1: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: 12 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 7 बजने में और ठीक 7 पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं कि हमारी आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है इसका क्या हाल हो रहा है. सोफा रोनल्ड है, साथ में आज हर्षदा है, प्रीतेश है, जीनत है और उसके साथ साथ यान है जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें सेंड किए हैं और गेस किया है कि आज की हमारी बॉलीवुड मूवी कौन सी मूवी है. क्लूज हमने इतने सारे आपको दिए हैं सो आई थिंक शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसी वजह से. चलो स्टेप बाय स्टेप वापस से क्लूज रिपीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको बताना चाहते हैं, पे अटेंशन टू दीज क्लूज, क्योंकि अब इसके बाद हम क्लूज वापस से नहीं दोहराएंगे.
5: जैसी आपकी मर्जी.
1: अगर आपको क्लू देनी हो कोई भी इस फिल्म को लेकर ताकि लोगों के लिए आसान हो टू गेस, कौन सा क्लू देंगे आप?
5: पूजा भट्ट.
1: ओ माय गॉड, दिस वाज नॉट अ क्लू.
5: इट वाज अ क्लू.
1: मैं क्या ही बोलूं, वैसे डायरेक्टली मतलब एक ही नाम ले लिया आपने डायरेक्टली. ओके सो आज की हमारी बॉलीवुड मूवी, जैसे कि हमने आपको बताया, इट्स अ वन वर्ड मूवी, मतलब सिर्फ एक वर्ड और आपको इस फिल्म का नाम मिल जाएगा. दूसरी चीज हमने जो आपको बताई, इस फिल्म का प्लॉट, व्हाट द सिचुएशन इज. अब देयर इज दिस गाय हु लाइक्स दिस गर्ल, कांट गेट मैरिड क्योंकि उनकी रिलीजन अलग अलग है, पर फिर भी वो शादी करते हैं. उनकी मम्मी जो है, जो लड़के की मम्मी, वो उनकी शादी वापस से कराती है विद सम अदर गर्ल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन जो उनको चाहिए था. फिर इनके जो फर्स्ट मैरिज इनकी हुई, उनसे दो बेटे हुए एंड जो बड़ा वाला बेटा है, ही नोज ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस जो उनकी माँ जो है जिससे गुजरी है. द फादर डाइज एंड उसके बाद चलकर सालों बाद एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन इनकी फैमिली में होती है, इनकी लाइफ में होती है. एंड दी एल्डर ब्रदर एक्चुअली उनकी माँ से जुड़ी जो डिटेल्स है, जो उनकी लाइफ से जो डिटेल्स है, वो अपने छोटे भाई को बताते हैं. दैट्स हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, राइट?
5: ओके.
1: तीसरा क्लू कि इस फिल्म में एक बहुत पॉपुलर गाना है विच इज एसोसिएटेड विद द मून, यानी चांद के साथ. चांद शब्द सुनते ही कहीं ना कहीं ये गाना डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगा. इट्स लाइक दिस सॉन्ग इज वेरी मच एसोसिएटेड विद चांद, मून, राइट? और आखिरी क्लू, एक और एक क्लू दिया था ना?
5: हाँ, कुछ था,
1: कुछ तो था, खैर हम खुद भूल गए. आखिरी क्लू चलो यही ले लो कि इन्होंने बताया कि पूजा भट्ट, ये नाम इस फिल्म से जुड़ा है. कैसे जुड़ा है वो आप पता कर सकते हैं. तो आज की हमारी बॉलीवुड मूवी कौन सी है, आप अपना जवाब हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं. जवाब देने के लिए आपके पास अनदर 5 मिनट्स का टाइम है. आफ्टर 7 AM न्यूज हम देखेंगे आप में से कितने लोगों ने हमें सही सही आंसर जो है ये दिए हैं. एंड ऑन द अदर हैंड चलिए अब बारी है थ्रोबैक की.
5: आज का जो थ्रोबैक है ये आप एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ ये भी आपको याद दिला दें, आज आपको हमारे साथ शामिल रहना है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, क्योंकि आज आपके काम की बहुत बड़ी बात जो है ये हम आपको बताने वाले हैं.
1: आज आपके लिए आपके फायदे की बहुत बड़ी बात हम लेकर आए हैं एक्चुअली.
5: समथिंग
1: दैट्स गोना बेनिफिट यू अ लॉट.
5: और ये तभी होगा जब आप सुनेंगे द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. मेक श्योर यू डोंट मिस आउट, क्योंकि ये कब होगा, क्या होगा और क्या है ये, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तो डिटेल्स हम आपको नहीं देंगे. इसीलिए आपको सुनते रहना है, सुनते रहना है. एंड जैसे ही जो अनाउंसमेंट हो पता चले आपको, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं.
1: एब्सोल्युटली, सो स्टे विद अस फॉर दिस, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी बड़ा अनाउंसमेंट जो है ये आज ऑन द शो हम करने वाले हैं. एडन ने पापा कुरे से मैसेज किया है कि चांद छुपा बादल में, नहीं वो तो आप गाने के बारे में बता रहे हैं, और चांद छुपा बादल में जो गाना है इट्स फ्रॉम द मूवी हम दिल दे.

0: 1034.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
3: Hello, good morning, Kiora, and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 3 minutes ho rahe hai, 7 bajkar. This is The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Hum Playing Bollywood's Biggest Hits par 104.2 FM par aap mein sun rahe hai, ya Rover app ke zariye hamare saath jude hue hai. Thank you so much aap sabhi ke saath ke liye, aapke samay ke liye. पिछले घंटे आज की बॉलीवुड मूवी गेस करने के लिए हमने आपको क्लूज दिए थे, जिसके बाद आपने अपने मैसेजेस भेजे. प्रीति है साथ में, निकिता है, आपका भी मैसेज हमारे पास आया है, आपने भी अपने जवाब जो ये दिए हैं. शायद आज थोड़ा डिफिकल्ट था लोगों के लिए टू रिमेंबर विच मूवी वी वर टॉकिंग अबाउट. क्लूज हमने दिए, बट इवन देन प्रोबेबली थोड़ा हार्ड हो गया, बट नेवरदलेस चलिए रिवीलिंग द आंसर. द राइट आंसर जो आज हमारी बॉलीवुड मूवी थी वॉज 1998 में आई फिल्म जख्म, जिसमें काम किया था पूजा भट्ट, अजय देवगन, कुणाल खेमू, सोनाली बेंद्रे, आशुतोष राणा और नागार्जुना ने.
4: इतने सारे लोगों ने काम किया था भाई इस फिल्म में.
3: बिल्कुल, और इसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने. मुकेश भट्ट ने तो इसे प्रोड्यूस किया था, बट महेश भट्ट ने इसकी कहानी भी लिखी थी और इसे डायरेक्ट भी किया था. तो देयर यू गो, फिलहाल 4 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, एंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस.
4: और मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हर सुबह हम लेकर आते हैं मेगा फाइनेंस की ओर से, जो आपको हेल्प आउट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो आपका होम लोन हो या फिर रीफाइनेंस हो, और साथ में अन्य कई लाजवाब आप सर्विसेज जो हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं. तो परमेश और उनकी टीम से डेफिनेटली आप बातें कर सकते हैं एट मेगा फाइनेंस. इस घंटे थोड़ी देर बाद आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, जितने भी लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. प्लस जैसे हमने आपको बताया है कि आज तो आपको सुनते रहना है, क्योंकि समथिंग स्पेशल इज कमिंग अप टुडे ऑन द ब्रेकफास्ट शो.
3: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो रेडी रहिएगा इसके लिए. बट डोंट फॉरगेट, सेकंड वीक ऑफ स्कूल हॉलीडेज इज स्टार्टिंग ऑफ विद टुडे मंडे, 5th of October फाइनल वीक है, जिसके बाद अब नेक्स्ट वीक से बच्चे वापस से स्कूल जाएंगे. सो बहुत सी चीजें हो रही है. इफ यू हैवंट प्लान्ड थिंग्स फॉर दिस वीक, क्या करना है क्या नहीं, आइडियाज हम आपको जरूर दे सकते हैं लेट इन द शो टुडे.

0: Deluxe Experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: तो चलिए जानते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप्स आपकी राशि वाइब्स में. सबसे पहले
3: मेष यानी एरीज, आज अपने ऑफिस में अपने काम को लेकर बहुत ही केयरफुल रहे, जरा सी भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है. बिजनेस में अचानक कुछ अप्स एंड डाउन आप नोटिस करेंगे. ये जरूरी है कि अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को आप ध्यान से सुने और आज कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो जल्दबाजी में बिल्कुल ना ले.
2: और उसके बाद वृषणी टॉरस, मंडे है आज, सो टेक थिंग्स एट अ स्टेडी पेस, ये सलाह आपको दी जा रही है. प्रैक्टिकल डिसीजन जो भी आप लेंगे, इट कुड हेल्प यू फील मोर ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशली अगर वो आपके काम से या आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो तो.
3: उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके काम को प्रेज किया जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है. बिजनेस में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर आज आप काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं और आपकी निजी जिंदगी में फैमिली लाइफ में सुख और शांति जो है ये आप एक्सपीरियंस करेंगे.
2: कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है यू मे नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा पेशेंस आज के इस दिन पर. टेक अ सिचुएशन लाइक जहाँ पर अगर आपका कोई पेशेंस टेस्ट कर रहा हो जो यू नो ड्रेस्टिकली आपका मूड विद इन सेकेंड्स चेंज कर दे, तो ध्यान दीजिए कि इन लोगों से आप दूर रहे. फोकस ऑन व्हाट कीप्स योर एनर्जी पॉजिटिव, और इसीलिए आज आपको खुद पर बहुत मेहनत करनी होगी व्हेन कम्स टू योर मूड एंड योर पेशेंस.
3: और फिर सिंह यानी लियो, आज आप अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो आपको बाद में ये फैसला बदलना पड़ सकता है. और आज प्रॉपर्टी से जुड़े जो डील्स होंगे इससे आपको फ़ायदा होगा और यू विल बी फोकस्ड अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जो है ये देने के लिए.
2: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आप ऑर्गेनाइज्ड मोड में रहेंगे आज. आज आप काफ़ी चीज़ें जो है ये क्लियर करते रहेंगे, बहुत से पेंडिंग टास्क हैं जिन्हें आज आप पूरी करेंगे. एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ये भी कहा गया है कि यू गेट दिस सरप्राइजिंग सेंस ऑफ रिलीफ, क्योंकि आज जिस तरह से आप अपना दिन बिताएंगे इसकी वजह से आपका पूरा वीक बहुत ही आसानी से बीतेगा.
3: तुला यानी लिब्रा, आज काफ़ी सपोर्ट आपको काम में मिलने वाला है, बिजनेस में पैसों का फायदा होगा और आज काफ़ी पॉजिटिविटी आप फील करेंगे अपने आसपास.
2: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प रहेंगे आज, पर्टिकुलरली आज के इस दिन. इफ़ समथिंग डजेंट क्वाइट एड अप, डजेंट फील राइट, तो आप ज़रूर अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, टेक अ क्लोजर लुक बिफोर आप कोई भी फैसला जो है ये करें. और दूसरी ओर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इग्नोरिंग योर हेल्थ इज नॉट अ गुड थिंग टू डू टुडे.
3: उसके बाद आज आपके धनु यानी सेजिटेरियस, आपके लिए कहा गया है कि पेशेंस से काम लेना, झगड़ा झंझट से दूर रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा. बिजनेस में कोई लेन देन आप कर रहे हैं, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ये पढ़ें और आज परिवार में किसी इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कशन हो सकता है.
2: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, फोकस्ड और डिटर्मिन रहेंगे आप, जिसकी वजह से इस पूरे वीक आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप ज़रूर यू नो हासिल कर पाएंगे. बस एक सलाह दी जा रही है कि रियलिस्टिक प्रायोरिटीज़ जो है ये सेट करें. ये याद रखें स्टेडी प्रोग्रेस जो है ये ओवरनाइट प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जहाँ पर यू थिंकिंग लाइक कि अभी करना है, अभी चाहिए, अब भी इसका रिजल्ट जो ये पाना है. धीरे धीरे आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें.
3: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों के बीच आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और लंबे समय में आपको फायदा देगा. साथ ही में आज हेल्थ अच्छा रहेगा और काफी एनर्जेटिक आप फील करेंगे.
2: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, स्टार्ट योर वीक बाय प्रोटेक्टिंग योर पीस. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो जैसा फील करता हो वैसा आप भी फील करें, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि अगर आज कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे कि आपकी शांति भंग हो रही है, स्टे अवे फ्रॉम इट, डोंट एब्जॉर्ब इट, और फोकस करें ऑन थिंग्स जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो आपको पॉजिटिव फील कराए. बिकॉज आज आपके लिए भी बताया गया है आपके लिए काफ़ी टेस्टिंग फेज जो है ये रहेगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है ये ज़रूर हो सकती है. सो ये थी आज की आपकी राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ मूविंग ऑन आज मॉर्निंग मैडनेस में थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे हमारा सेलिब्रिटी अलार्म.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: It's Woolworths Health and Body Sale. Get in quick for half price on Asano products and 1 litre palm olive body wash or 700ml shampoo or conditioner, just $6.89 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
1: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
2: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
3: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
4: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: With BNZ Rapid Save, your money gets the salary it deserves. In the past year, Rapid Save paid out more interest per dollar saved than any other major bank. So give your money a pay rise, make it go to work. Because if your money's not collecting more interest, it's collecting less. Open a BNZ Rapid Save account today. Bank of New Zealand. Let's find a way. Based on advertised rates for personal savings accounts available to customers age 18 years and over with the other major NZ banks. T's and C's and fees apply.
6: 35 minutes and we've moved 3 kilometres.
7: Welcome to peak hour commute, mate.
6: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
7: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
6: Yeah, that sounds like me.
7: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
6: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
8: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
9: Celebrity Alarm. Hit it.
11: तो चलिए वादे निसार आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए लेकर आए हैं और आपको अनुमान लगाना है कि आज की ये जो आवाज़ आपको हम सुनाने जा रहे हैं ये किसकी आवाज़ है. और वंस यू थिंक यू गॉट द आंसर तो बस आपको हमारे पास अपना जवाब जो है ये टेक्स्ट करना होगा. सो हियर वी गो, पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर ऑडियो.
12: 45 डिग्री में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा घर से बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव का सलवार कमीज पहन के जाना वरना लड़की छेड़ देंगे. तो हम क्या करें, पॉपकॉर्न बन के फूट जाए गर्मी में.
11: तो ये आवाज किसकी है आपको बतानी है आज.
13: I think I've seen this movie.
11: हाँ मैंने भी देखी है और yeah. I liked it. I don't know how many of you liked it or not. वो अलग बात है but है कौन मूवी तो खैर छोड़ो अभी मूवी नहीं बतानी आपको. हाँ. ये सेलिब्रिटी कौन है ये आपको बतानी है.
13: हाँ तो बताओ भाई BF आंसर और नाम 5599 पर आप हमारे पास भेजो. देखिए कितने लोगों को पता है कि ये कौन है.
11: राइट एंड चलिए एक बार फिर से सुना देते हैं उसके बाद विल मूव ऑन विद आज का बॉलीवुड मोस्ट वांटेड. सो रिमेम्बर ये आवाज़ सुनिए और फिर बताइए किसकी आवाज़ है. BF लिखे सबसे पहले फिर आप अपना आंसर लिख सकते हैं और अपना नाम लिख कर 5599 पर हमारे पास सेंड कर दीजिएगा. हियर वी गो.
12: 45 डिग्रीज में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा घर से बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव का सलवार कमीज पहन के जाना वरना लड़की छेड़ देंगे. तो हम क्या करें, पॉपकॉर्न बन के फूट जाए गर्मी में.
11: राइट तो आंसर्स अपने हमारे पास अब सेंड कीजिए. थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या किसी ने सही जवाब दिया है या नहीं. 20 मिनट हो रहे हैं 7:00. थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे
13: न्यूज हेडलाइंस इस प्रोग्राम में.
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: News Headlines.
3: सुबह के मुख्य समाचारों में, सेंट्रल ऑकलैंड के एप्सम में पुलिस द्वारा रोके गए एक फ्लिंग ड्राइवर की गाड़ी से हैज़र्डस मटेरियल्स मिलने के बाद पूरे इलाके को कल कॉर्डन ऑफ करना पड़ा। कराका से भाग रही इस कार को मार्केट रोड के पास स्पाइक्स बिछाकर रोका गया और ड्राइवर को अरेस्ट करके गाड़ी की तलाशी ली गई, जहाँ संदिग्ध चीजें बरामद हुई। घटनास्थल पर हॉट जोन टेप लगाकर फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड की तीन गाड़ियों के साथ रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। कल न्यूजीलैंड इलेक्शन कैंपेन में लेबर ने अपना फिजिकल प्लान रिलीज किया, जिसमें केयर और सपोर्ट वर्कर्स के लिए पे राइज का वादा शामिल है। दोनों मेजर पार्टीज के बीच पे इक्विटी पर तीखी बहस हुई, जबकि विंस्टन पीटर्स ने अपने कोलिशन पार्टनर्स पर कोपिंग का आरोप लगाया। एक्ट पार्टी ने रिसोर्स कॉन्सेंट्स के कंपलसरी करखिए हटाने की और कीवी सेवर अर्निंग्स पर टैक्स हटाने की पॉलिसी लॉन्च की। वहीं तेपाती माउरी ने 2026 इलेक्शन के लिए 1% पार्टी लिस्ट का ऐलान करके सभी को हैरान कर दिया। एनपीसी कंपटीशन के अंतर्गत सप्ताहांत कई इंटरेस्टिंग मैचेस जो है ये खेले गए। कल हुए एक मैच में बे ऑफ प्लेंटी की जीत नॉर्थ हावा के खिलाफ 38-21 से हुई। तारानाकी ने वेलिंगटन को 68-26 से हराया और वीकेंड के अन्य मैचेस में टेस्मैन 50, वाइकाटो 33, काउंटीज मेनकाउ 12, होक्स बे 7, कैंटरबरी 22, मनुवातु 12 और साथ में फ्राइडे को नॉर्थलैंड की जीत साउथलैंड के खिलाफ 28-14 से हुई थी। क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस इस सप्ताह खेले जाएंगे। शुक्रवार को रात 7 बजे नॉर्थलैंड टेस्मैन को होस्ट करेगा। शनिवार को 2:35 PM पर नॉर्थ हार्बर तारानाकी का मुकाबला करेगा। शाम 4 बजे ओटागो होक्स बे से खेलेगा, जबकि संडे को 1:35 PM पर कैंटरबरी वाइकाटो को होस्ट करेगा। सनातन वर्ल्ड कप के अंतर्गत सप्ताह भर मैचेस जारी रहे। फुटबॉल कंपटीशन के ग्रैंड फाइनल्स की ओर अगर देखें, ग्रेड 55 में मेन इन ब्लैक बा की जीत फाइनल में एनजेड रकिराकी के खिलाफ 2-1 से हुई। ग्रेड 50s में एनजेड लोटोका ने एनजेड रेवा को 3-1 से हराया। ग्रेड 45s में एनजेड ड्रेकेती की जीत एनजेड बा के खिलाफ 3-0 से हुई। ग्रेड 40s में न्यूजीलैंड सनातन ने हैमिल्टन को 3-0 से हराया, जबकि प्रीमियर फाइनल्स में मेनुकाउ सनातन की जीत न्यूजीलैंड सनातन ऑल स्टार्स के खिलाफ 2-0 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
4: सनातन वर्ल्ड कप अपडेट्स ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय NYF सर्विसेज। उबर ड्राइवर्स, अप्लाई फॉर योर क्लेम्स ऑनलाइन एट nyfservices.com। बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन दुबई। बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन टुडे। विजिट buildcaps.com। एंड प्रोफेशनल वीजा सर्विसेज बेस्ड इन ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ऑफरिंग मल्टीपल वीजा पाथवेज विद अ टीम ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। हम एक्यूरेट ट्रैफिक।
5: सिंपलिसिटीज लोअर्ड कीवी सेवर फीस again.
6: A mostly fine day, plenty of cloud, got a high of 17. And on the southern motorway, 34 minutes Manukau to town, 48 from Drury. We're slow on and off Manurewa all the way to Green Lane. Northwestern, 26 minutes Massey to the city, pretty quick. Slow from the causeway, heavy at St. Luke's. Northern, 22 from Constellation, 42 from Silverdale. Slow at Silverdale to Snow Planet and all the way from Greville into the city.
5: Keep more of your money with Simplicity, the low fee, non profit KiwiSaver provider.
7: TradeDepot.co.nz.
8: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Swimming pool heat pumps under $2,000. Outdoor four-piece resin lounge set just $299. Outdoor gazebos just $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
7: TradeDepot.co.nz.
9: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
12: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
0: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Birthday greetings.
14: इसका बर्थडे भाई?
15: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
16: Happy birthday to you.
17: A very happy birthday, many many happy returns of the day आपको wish कर रहे हैं. आज यानी the 5th of October अपना birthday celebrate कर रहे हैं. हिल्सब्रा में वीना मांद्रेकर जी हैं और साथ में लिनफील्ड में हैं एम चंद्रशेखरन नायडू जी. आपको भी a very happy birthday, many many happy returns of the day हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से. And if you are also celebrating your birthday today, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपनी पूरी की पूरी टीम की ओर से और ब्रेकफास्ट विद विजन पूजा की ओर से आपको जरूर विश कर रहे हैं.

0: 0800 634 234।
1: अभी 26 मिनट रह गए हैं 8:08 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम जरूर लेकर आएंगे। और उससे पहले ये भी आप याद रखें कि 8:15 आने वाला है आज का बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास अनाउंसमेंट जिसके बारे में हमने आपको बताया है।
2: तो इसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है। बरन यादव है, आज हमने जो सवाल किया था, बेसिकली सवाल नहीं मतलब आवाज सुनाई थी और आपको कहा था कि आपको गेस करना है कि ये किसकी आवाज है। और इसके लिए आपको अपने मैसेजेस हमारे पास सेंड करने थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं। गुंजन है, साथ में मोविन है, एनजी है, दिव्या है, गौतम, सनीता, नितिका, इसके साथ साथ हमारे पास सनीश और इसके साथ राज, राहुल, जॉर्डन, साथ में प्रियंका है, शिव है और साथ में शायला, आपका भी मैसेज आया है, कृष्णील है, नम्रता है, आप सबने अपने मैसेजेस भेजे हैं। एक और एक दिव्या है, श्वेता है, कुणाल है, आपके मैसेजेस हमें मिले हैं, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली कुछ सही तो काफ़ी गलत आंसर्स आए हैं, जैसे दो नाम जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ गलत है और ये काफ़ी आए हैं। मोविन आपने कहा है राधिका आप्टे, तो ये राधिका आप्टे की आवाज़ नहीं है। और दूसरी ओर हमारे पास एक और एक मैसेज जो है ये आया है, विच इज़ नीति मोहन। नीति मोहन इज अनदर नेम दैट आई कैन सी क्वाइट अ लॉट हियर। तो
1: वो क्या है,
2: नीति मोहन सिंगर है।
1: हाँ, वही तो।
2: तो इफ़ यू हियर दिस व्हाटएवर दिस ऑडियो इज, उससे आपको पता चली जाता है कि एक डायलॉग है।
1: हाँ,
2: डायलॉग डिलीवरी करने के लिए फिल्मों में आना, शोज में आना, एक्ट्रेस यू नो कम इवेलुएट करते, तो उस हिसाब से ये एक एक्ट्रेस द्वारा बोली गई डायलॉग है, राइट? आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे बताऊं मैं।
1: हाँ,
2: तो क्योंकि नीति मोहन लाइक वैसे इंटरव्यूज वगैरह में भी दिखी है ना, तो ऐसा दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू, इट्स बेसिकली
1: इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स अ डायलॉग
2: फ्रॉम अ मूवी।
1: यस,
2: क्योंकि हमने बोला था हमने देखी है मूवी।
1: हाँ,
2: राइट। तो एक बार फिर से आपको हम सुना रहे हैं ये ऑडियो, इट्स नॉट नीति मोहन, इट्स नॉट राधिका आप्टे, कौन हो सकती है आज की हमारी सेलिब्रिटी, ये आपको अनुमान लगाना है।
3: 45 डिग्री में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा घर से बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव का सलवार कमीज पहन के जाना वरना लड़की छेड़ देंगे, तो हम क्या करें, पॉपकॉर्न बन के फूट जाए गर्मी में।
2: तो कौन है ये, आपको बस अनुमान लगाते हुए अपना आवाज हम जवाब हमारे पास भेजना है। आवाज हमने आपको सुना दी है, अब देखते हैं कितने लोग हमारे पास सही और कितने लोगों के गलत आंसर जो है ये भेज आते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज आवाज सुनने के बाद, इफ यू थिंक यू हैव एन आंसर, BF लिखना है आपको सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम और 5599 पर आपको सेंड कर देना है। रिमेंबर BF, फर्स्ट अप आपको ये लिखना है, फिर आंसर, फिर नाम और 5599 पर हमारे पास इसे आपको भेज देना है।
4: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800-RACHNA. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800-RACHNA. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो आज की हमारी जो सेलिब्रिटी, इनकी आवाज़ हमने आपको करीबन 4 बार सुनाई. फिर हमने आपको ये भी कहा कि ये नीति मोहन और राधिका आप्टे नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कुछ और भी गलत आंसर्स आए हैं. एक और एक नाम जुड़ चुका है, इट्स तापसी पन्नू. बलजिंदर जी ने कहा नहीं, ये भी गलत है. साथ में हमारे पास पंकित का या पंकिति का मैसेज आया है. पंक्ति का मैसेज आया है. साथ में तनीषा है और सरिता है, रोज है, इन्होंने भी अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं. सो फाइनली लेट्स रिवील, आज की हमारी सेलिब्रिटी इज नॉन अदर देन यामी गौतम. यामी गौतम जो है बड़ी खूबसूरत अदाकारा है. इनकी आने वाली मूवी वैसे नई नवेली, इसके लिए आई एम क्वाइट एक्साइटेड और लुक फॉरवर्ड जो ये कर रही हूँ मैं कि देखने को मिले. धूमधाम फिल्म का जो डायलॉग है ये हमने आपको सुनाया था. और यामी गौतम के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल्स दें तो शी एक्चुअली मूव टू मुंबई एट द एज ऑफ 20 अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए. और जो पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था इनका जिसमें ये नज़र आई थी, इट वॉज टाइटल्ड चांद के पार चलो. इसमें इन्होंने जो किरदार है ये प्ले किया था, लीड कैरेक्टर जो है ये प्ले किया था. और सब्सिक्वेंटली इन्होंने कुछ और भी शोज जिसमें यू नो लीड कैरेक्टर्स जो है ये प्ले किए थे.
3: इज शी मैरिड टू आदित्य धर?
2: यस, शी इज मैरिड टू आदित्य धर. यस, तो उसके बाद इनफैक्ट इन्होंने कई टेलीविजन शोज किए, बट आई थिंक देयर वाज दिस शो ये प्यार ना होगा कम, जिसमें ये नज़र आई थी विद गौरव खन्ना. इनके ऑपोजिट इन्होंने काम किया था और ये शो था जहाँ पर लोगों ने इनको धीरे धीरे फिर पहचानना शुरू किया. शी वाज आल्सो यू नो एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड फेयर एंड लवली, जिनके बहुत से एडवर्ट्स भी इन्होंने किए और उससे भी इनको काफ़ी जाना गया. बाद में चलकर शी मूव्ड ऑन टू ट्राई हर लक विद मूवीज़, और इन्होंने पहली फिल्म जो की थी वॉज बेसिकली 2010 में कनाडा लैंग्वेज की मूवी, ये इसमें नज़र आई थी. एंड द फर्स्ट हिंदी मूवी शी हैड डन सुजीत सरकार की रोमांटिक कॉमेडी विकी डोना ऑपोजिट आयुष्मान खुराना, दैट वॉज द फर्स्ट.

0: हैं तो BF बस अपना नाम ये लिखकर 5599 पर भेज दो, और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो हमारा जो फेसबुक पेज है ये विजिट करें, हम 104.2 FM विद अ ब्लू टिक, और वहाँ पर आपको मिलेगा काउंटडाउन का एक पोस्ट, उसको आपको शेयर करना है, और साथ में लाइक भी कर लेते तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: राइट,
0: देखें अभी आप में से कितने लोग तैयार हैं इन सभी चीजों के लिए। अरे अभी तक एक भी टेक्स्ट नहीं आया ना।
1: हाँ ऑब्वियसली, अभी तो बोला आपने ना, गिफ्ट गिव इट सम टाइम।
0: हाँ हाँ, नॉर्मली बहुत तेजी से ये मैसेजेस जो है ये आ जाते हैं, बट लेट्स सी 8 o'clock न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद। अच्छा, सबसे पहले सोशल मीडिया, उस टेक्स्ट आने से पहले सोशल मीडिया पर शेयर हो गया है।
1: Oh nice.
0: Yeah.
1: Right. तो there you go. More active on social media, I guess. जल्दी जल्दी आप भी जाकर चेकआउट करें और हमारे साथ बने रहिए just to find out what is happening after 8 AM today. क्या special announcement आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। फिलहाल 9 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में, या माफ कीजिएगा 10 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में। ठीक 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में देखा जाए तो आज का वेदर मोस्टली क्लाउडी जो है ये रहने वाला है और सनसेट 7:29 PM पर होगा. टेम्परेचर राइट नाउ 9.8 डिग्रीज है. ओवरनाइट 8 डिग्रीज रहेगा एंड हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
2: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. 3 मिनट हो रहे हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 8 बजकर, एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जहां पर रश आवर आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं. और बारी है कि आज का ट्रेंड पेट्रोल जो है ये आपके लिए हम लेख रहा है. ट्रेंड पेट्रोल में आज आपको बताते हैं क्या कुछ जो है ये फिलहाल ट्रेंड कर रहा है.
4: हाँ जी,
1: सबसे पहले आपको बता दें एक शख्स है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और इनका नाम है विवेक रामास्वामी. इनका एक ऑकवर्ड मोमेंट ये वायरल हुआ जब एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की ओहायो रैली जो है यहाँ से सामने आई. इस वीडियो में एक दिखा गया है कि ऑन स्टेज जो शख्स है विवेक रामास्वामी जी, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे टू लिफ्ट अ चाइल्ड, एक बच्चे को गोद में लेने के लिए. एंड सोशल मीडिया वाज एक्चुअली हैविंग अ फील्ड डे जब ये ऑकवर्ड मोमेंट जो है ये सामने आया और लोगों ने इसके बहुत से वीडियोस जो है ये बनाकर, अलग अलग मीम्स बनाकर जो है ये डालने शुरू कर दिए. एंड ऑन द अदर हैंड जो है ये देखें तो एक और एक चीज़ काफ़ी ट्रेंड कर रही है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ AI के फेक वीडियोज़, जहाँ पर एक सेलिब्रिटी डिबेट जो है इसके ज़रिए ये शुरू हो चुका है. एक न्यू डिस्कशन जो है ये सामने आया है अराउंड मोफ्ट AI सेलिब्रिटी वीडियोज़, जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत से वीडियोस के बारे में अपनी अपनी राय जो है ये दी है और वॉर्न किया है कि लीगल एक्शन कुड फॉलो, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनमें जूनिया NTR और साथ में जानवी कपूर के मोफ वीडियोस जो है ये सामने आ रहे हैं. एंड पीपल आर एक्चुअली क्रिएटिंग सच कंटेंट, जिसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं और इसके चलते कहा गया है कि स्ट्रिक्टर एक्शंस जो है ये लिए जाएंगे.
4: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. यू नो, अभी रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और अलग अलग लेवल पर अलग अलग, यू नो, लोग जो हैं विद इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री जो हैं ये काफ़ी अग्रेसिवली आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेकर.
1: यस, एब्सोल्युटली. सो लेट्स सी कि अभी AI तो सभी इसको यू नो प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में बातें कर रहे हैं, लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं टू यूज़ इट मोर, बट हाउ आर यू यूजिंग इट और हाउ यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग इट, दैट इज़ अनदर थिंग जिसके बारे में हमेशा बातें जो है ये होती रहती है, बिकॉज इसके फ़ायदे तो हैं ही लेकिन नुकसान भी काफ़ी सारे. कवनेश गाउंडर है, गुड मॉर्निंग आपको, साथ में नीलेश दयाल है, शेरल है, इसके साथ साथ आइरीन है, क्रिस्टीन है, आपके भी मैसेजेस आए हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ शामिल होने के लिए और हमारे पास अपने अपने मैसेजेस जो है ये भेजने के लिए. याद रहे ये है रश आवर और थोड़ी देर बाद खुलासा होगा
4: कि द बिग रिवील क्या है, जिसके लिए हमने आपसे कहा है कि आपको सुनते रहना है.

0: with Vijay and Pooja.
1: Coffee? The usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
5: Lots.
4: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
5: Probably.
4: Am I paying for this free coffee?
6: Definitely.
4: Will they talk me into an upgrade?
5: Oh.
4: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
7: True Midas.
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers just $249. Cordless leaf blower and battery just $70. Cordless weed eater and battery just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
11: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 Degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: अभी देखें तो 14 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच आपको हम कहना चाहेंगे और लो भाई 8:15 बज चुके हैं हमने आपको क्वार्टर पास्ट 8 का टाइम दिया था होपफुली यू हैव बीन लिसनिंग
14: यस क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि अब इतने बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पेशल अनाउंसमेंट जिससे में आपका फ़ायदा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन्फेक्ट हो सकता है और ये ख़ास तौर पर हम आपके लिए ही कर रहे हैं
13: बिल्कुल तो पहले सुना देते हैं ना
14: हाँ पहले सुनाते हैं तो आपको क्या करना है रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लीजिए ताकि आपको और क्लियरली जो ये सुनाई दे एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल दैट यू आर गोइंग टू हियर नाउ
15: हे चैट जीपीटी दिवाली आने वाली है ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए
16: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ
15: बढ़िया है अच्छा ग्रोसरीज लेना है पूरे घर की पेंटिंग करवानी है नया सोफा लेना है इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए और हाँ कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए
16: इंटरेस्टिंग और कुछ
15: बस इतना ही
16: सर मैं चैट जीपीटी हूँ अंबानी नहीं हमसे ना हो पाएगा
17: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स फ्यूल वाउचर्स होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैरिंगटन लिविंग मनोको ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
13: तो लीजिए भाई दिवाली को एक महीना रह गया है और हमने बड़ी कड़ी मेहनत की और वो आपके लिए तैयार करने की कोशिश की जो चैट जीपीटी नहीं कर पाया।
14: बिल्कुल ट्रू। अभी जो डिमांड्स होते हैं, जो सिचुएशन होता है, महंगाई का जमाना है ना,
13: बहुत
14: इतनी सारी चीजें करनी होती है, वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू बी डन। और साथ में ये भी है दिमाग में कि भाई पैसे बच जाए, पैसे बच जाए किसी तरह से, पैसे जो ये जो जा रहे हैं अकाउंट से ये इतना ना जाए या फिर जाने के बजाय आ जाए, ये दिमाग में होता है हमेशा। और काम भी करना होता है, और दिवाली के दौरान तो खर्चे ही खर्चे होते हैं, कितनी सारी चीजें करनी होती है ना।
13: देखिए भाई, साल की शुरुआत जब होती है, बैक टू स्कूल के साथ हम लोग आपको इनाम देना शुरू करते हैं। कोई भी ओकेजन हो, हर एक ओकेजन पर खुशियां बांटने की हमारी हमेशा से परंपरा रही है।
14: राइट।
13: और अब दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में पहली बार हम पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हम का फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून।
14: यस,
13: ये हमारा एक अलग ही फेस्टिवल हम मना रहे हैं दिवाली से पहले ही।
14: बिल्कुल।
13: और इसमें हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू विन $5,000 वर्थ ऑफ एपिक प्राइजेस। ऐसे प्राइजेस जिसके बारे में आप सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई, दिस इज समथिंग दैट आई वांट।
14: राइट। तो हमने आपको बता दिया है क्या कुछ जीतने का मौका है, है? अभी हाँ, ओ नहीं, हमने बताया नहीं।
13: आप अलग ही दुनिया में घूम रही हो।
14: सॉरी सॉरी, मैं प्रोमो पे ध्यान दे रही थी ना, कि प्रोमो में तो हमने बताया कि आप ये जीत सकते हैं, वो तो बताया हमने कि आप जीत सकते हैं हमारे साथ फ्यूल वाउचर्स, और साथ में आप होम और डेको, होम डेको और फर्नीचर के वाउचर्स, और माइटरटेन के वाउचर्स, न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स, और कैश इनाम जो ये सब जीत सकते हैं।
13: तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में आपको हम बता देते हैं इस दिवाली से पहले ड्रॉ डेट क्या है, ये पहले आप बताओ।
14: 30th of October, इट्स अ फ्राइडे, 30th of October को जो ड्रॉ है ये हो जाएगा। 8th of November को दिवाली है, तो वंस द ड्रॉ हैपेंस एंड इफ यू गेट योर वाउचर्स ऑन दैट डे तो नहीं मिलेगा आपको, इतना बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फ्राइडे,
13: बट एटलीस्ट यू विल नो and you can go and spend your money during
14: because
13: Diwali,
14: because you know ki uska return aane wala hai aapke paas,
13: aa jayega aapke paas. To hum kya aapko de rahe hain, so aaj se sirf 25 day ya 25th day par draw ho jayega.
14: Right.
13: So aaj se opportunity aapko milegi to win $1,000 of fuel voucher.
14: $1,000 worth of fuel voucher.
13: Itna manga, $3.
14: Ye to main bhul gayi thi.
13: Haan, $3.50, $3.30, something like that.
14: Aye bhai, maine dekha $3.80 tha.
13: Haan, kal. To $1,000 worth of fuel voucher, thanks to Indelible Homes. Bahut bahut shukriya unko hum kehna chahenge. Uske alawa, $1,000 lagat ka furniture या home and living vouchers जो है Harrington Living की ओर से, जो कि the breakfast show with Vijay and Pooja के को sponsor भी हैं।
14: Absolutely।
13: तो ये दे रहे हैं $1,000 worth of voucher।
14: तो जब आप ये voucher अगर जीतोगे, you can go and visit Harrington Living का जो branch है, और वहाँ पर जाकर $1,000 worth of आपको चाहे home decor लेना हो, furniture लेना हो, जो भी है, you can equate whatever you choose to $1,000 and you can buy that.
13: You can get that, not buy that.
14: क्योंकि वाउचर आपका जो रिडीम करेंगे आप, अगर कुछ ज्यादा पसंद आया तो एक्स्ट्रा आप खरीद भी सकते हैं ना,
13: आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इनाम जो हम आपको दे रहे हैं,
14: यस,
13: NZPMI पोल से हमारी बातें जो है ये होती है ट्यूजडे को,
14: yes.
13: और NZPMI जीतने का मौका आपको देने जा रहे हैं $1,000 worth of MITRE 10 vouchers.
14: Yes, और ऐसे में अभी स्प्रिंग जो है दो फील नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, पहला महीना गया है अभी। बहुत से लोग अपने गार्डन्स तैयार करेंगे, DIY प्रोजेक्ट्स जो आपके पेंडिंग होंगे ना, ऐसी ऐसी चीजें भी पड़ी है आपको करने के लिए, एंड यू लाइक कि चलो अभी रहने तो भी नहीं करना है बिकॉज बहुत महंगा है। अब आप अगर MITRE 10 के वाउचर्स जीत गए ऑल थैंक्स टू NZPMI, तो वॉन्ट यू यूज इट बिफोर दिवाली, आप ये चीज़ें जो है ये करना चाहेंगे, या फिर आप उसे एटलीस्ट जीतने के बाद यू विल कीप इट एंड देन यू विल डिसाइड कि चलो ये करना एंड नाउ आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज मेरे पैसे नहीं खर्च हुए, आई एम गोना स्पेंड दिस एंड गेट दिस डन, वाउचर रिडीम करते हुए।
13: सो $1,000 वर्थ ऑफ MITRE 10 वाउचर्स थैंक्स टू NZPMI। नेक्स्ट प्राइस $1,000 worth of New World vouchers.
14: Shopping करना है, दिवाली की मिठाइयाँ बनानी है, घर पर गेस्ट आने वाले हैं जिनके लिए आप खाने का सामान जो ये देखेंगे, या फिर यू नो यू हैव बीन गिविन अ लॉट ऑफ रिटर्न गिफ्ट्स दिवाली के दौरान ना, गिफ्ट देने का चलन होता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें करनी है, और उस हिसाब से देखें तो ये सब कुछ तो न्यू वर्ल्ड में मिल ही जाएगा आपको।
13: एंड ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस गुरु कंडोला और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. एंड द फाइनल प्राइज इज $1,000 कैश.
14: $1,000 कैश ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून जो कि हमारे ब्रेकफास्ट शो के स्पॉन्सर्स भी हैं. इनकी ओर से आपको $1,000 कैश जीतने का मौका मिल रहा है. सो एक जरूरी बात हम आपको बता दें, ये जो भी प्राइजेस हमने आपको बताया है, $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स इंडेलिबल होम्स की ओर से, $1,000 वर्थ ऑफ होम डेको और फर्नीचर वाउचर्स जो कि आप हैरिंगटन लिविंग की ओर से जीत सकते हैं, $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 के वाउचर्स जो कि आप NZPMI की ओर से जीत सकते हैं, $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के जो वाउचर्स हैं All thanks to Logic Finance, इनकी ओर से जीत सकते हैं, and $1,000 cash जो आप Fortune की ओर से जीत सकते हैं. ये जो सारे के सारे prizes हैं, ये divide नहीं होंगे 5-10 winners के बीच में, ये सब किसी एक एक एक को मिलेगा. यानी जो $1,000 cash है, ये किसी एक शख्स को मिलेगा. There are no division among the winners.
13: ऐसा नहीं कि 5 लोग $200 जीतेंगे, 2 लोग $500 जीतेंगे. One person will win $1,000 cash. One person will win $1,000 worth of New World vouchers. एक person $1,000 worth of Mitre 10 vouchers. एक person $1,000 worth of Harrington Living का जो voucher है, और एक person $1,000 worth of fuel voucher जो है ये जीतेगा. तो 5 winners होंगे जिनको $1,000 लागत के इनाम जो है इस दिवाली के मौके पर हम देने जा रहे हैं. और ये शानदार इनाम जीतने के लिए अब करना क्या है आपको?
14: बहुत ही सिंपल सी चीज, जब भी आपको हम मौका दे कि ओके नाउ कंपटीशन लाइंस आर ओपन, अब हम एंट्रीज ले रहे हैं हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के लिए, तो वैसे आपको अपनी एंट्री हमारे साथ रजिस्टर करानी है. हर एक इनाम जीतने के लिए एक कीवर्ड होगा. वो कीवर्ड हम आपको कॉम्पिटिशन से पहले बताएंगे कि अच्छा ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना है अपने नाम के साथ. रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, बहुत जरूरी है. कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और आपका नाम इक्वली इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें आपको लिखनी है. बस दो मैसेजेस टाइप करने, दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स टाइप करने होंगे. वो लिखने के बाद आपको इसे हमारे पास सेंड करना होगा ऑन 5599, बिकॉज देयर आर 5 प्राइजेस और ये 5 प्राइजेस जीतने के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, राइट? एंड इन कीवर्ड्स को आप टेक्स्ट करेंगे अपने नाम के साथ, यू विल गो इन अ ड्रॉ. 30th ऑफ अक्टूबर को जब ड्रॉ होगा, तो जब सिस्टम हमारा विनर पिक करेगा, आपने गलत कीवर्ड लिखा होगा, आपकी एंट्री नहीं आएगी. आपने अपना नाम नहीं लिखोगा, एंट्री इनवैलिड हो जाएगी. तो इसीलिए
13: जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे वो बेसिकली फॉलो करने होंगे.
14: yes.
13: दूसरी बात, आप न्यूजीलैंड में कहीं पर भी रहते हैं, यू कैन टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. इट्स वेरी सिंपल. आप अगर फ्यूल वाउचर जीतते हैं तो अपने एरिया में यूज कर सकते हैं, yeah. जहाँ कहीं पे भी जा सकते हैं. सो वेर एवर यू लिव अक्रॉस द कंट्री, कहीं से भी इस कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा ले सकते हैं. नाउ इतनी सारी जरूरी जरूरी बातें जो है ये हमने आपको बता दी, आपने सुना. आप अब सोच रहे होंगे भाई
14: मौका कब मिलेगा.
13: बता रहे हो, सुना रहे हो, जीतने का मौका भी दोगे या नहीं?
14: yes. सो चलिए शुरुआत हम करते हैं विद द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आप हमारे साथ ड्रो में शामिल होकर जीत सकते हैं. और जबकि पहला मौका हम दे रहे हैं, तो पहला मौका भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बस आपको मजा आ जाए एंड यू लाइक कि हाँ ये तो बढ़िया है. तो क्यों ना आज जो पहला कॉम्पिटिशन अपॉर्चुनिटी आपको हम दे रहे हैं फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेने का, इसमें आप जीत सकते हैं $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर, जो याद रहे एक शख्स को मिलेगा, वन विनर ओनली, और $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर आपका हो सकता है इफ यू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन. ऑल थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स. विजिट www.indelibleholmes.co.nz डिटेल्स के लिए. और इनकी ओर से ये $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर जीतने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा
13: IH.
14: Indelible Homes का शॉर्ट फॉर्म है. Remember, I for ice cream, H for house, right? IH. There is no space in between these two letters. दोनों एकदम साथ साथ लिखना है. IH लिखना है, फिर स्पेस देकर आपको अपना नाम लिखना है और 5599 पर हमारे पास भेज देना है. So, ये जो दो लेटर्स हैं, ये आपकी एंट्री वैलिड करा सकते हैं.
13: एंड सिंस इसमें कोई सवाल नहीं है, आपको कुछ रिसर्च नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, सो टाइम लिमिट्स के साथ हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे दिस टाइम अराउंड.
14: यस, 4 मिनट्स, क्योंकि अगला गाना हमारा सिर्फ 4 मिनट का है. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग जैसे फिनिश होगा वैसे ही एंट्रीज लेना हम बंद कर देंगे.
13: सो IH अपना नाम 5599 पर आप हमारे पास भेजें फॉर योर अपॉर्चुनिटी टू विन $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स इस दिवाली के मौके पर, ऑल थैंक्स टू इनडेलिबल होम्स. चार मिनटों का वक्त आपका शुरू हो चुका है।
14: और ये याद दिला दे आपको कि अगर आप जानना चाहते हैं आपकी एंट्री सही तरीके से हमारे पास पहुंची है या नहीं, तो जब भी आप जो भी कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद अपना मैसेज सेंड करेंगे, ऑटो रिप्लाई में आपके पास उस पर्टिकुलर जो स्पॉन्सर है हमारा उनका एक बिजनेस लिंक आएगा। इफ दैट कम्स अक्रॉस इट मीन्स यू हैव सेंट इन योर एंट्रीज करेक्टली। हमारे पास एक मैसेज आया है, दिप्सिया मेरे ख्याल से इनका नाम है, इन्होंने जो जिस तरीके से अपना मैसेज भेजा है इसकी वजह से इनकी एंट्री इनवैलिड हो गई बिकॉज शी हैज़ नॉट गिवन एनी स्पेस इन बिटवीन द कीवर्ड्स एंड हर नेम। सो यू हैव टू गिव स्पेस, पहले कीवर्ड लिखना है इस कॉम्पिटिशन के लिए IH, फिर स्पेस देकर अपना नाम लिखकर हमारे पास 5599% करना है। और ये याद रखे कि ऑटो रिप्लाई में आपके पास जो हमारे जो स्पॉन्सर है उनका बिजनेस लिंक आ जाएगा, मतलब उनका वेबसाइट लिंक आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू नो योर एंट्री इज वैलिड। स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई जब भी आप हमारे पास अपने एंट्रीज जो है ये टेक्स्ट करते हैं ऑन 5599। सो गेट गोइंग, और आपका टाइम शुरू हो चुका है, चार मिनट जिसके बाद एंट्रीज विल क्लोज।
6: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना ए गेम।
6: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: तो लीजिए भाई, गाना खत्म हुआ, मतलब जो पहली अपॉर्चुनिटी थी फॉर यू टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन कम्स टू एन एंड। बहुत सारे लोगों ने आप में से अपनी एंट्रीज जो है ये भेजी हैं और सही तरीके से भेजी हैं, तो आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो रहा है हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के लिए, जहां पर टोटल $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का मौका है। अगली अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जानने के लिए आप सुनते रहें 104.2 FM पर या फिर Rover पर।
1: Are you ready? Chatbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे।
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Fragrance and cosmetics clearance sale.
4: Some cloudy patches, should be mostly fine. 17-hour high into the city. Southern Motorway, 38 minutes. Monaco to the CBD, 45 from Drury. Slow at Manurewa, then heavy on and off Otahuhu to Green Lane. Southwestern, nothing too major going on. Northwestern, 30 minutes in from Massey. Slow from the causeway with heavy patches. Northern, 25 from Constellation. Slow most of the way there to the bridge and at Silverdale.
3: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glendowie from 9 a.m. while stocks last.
5: Sona Sansar Papa Tutu के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: Oh, the kids absolutely love Fiji. They were in the water basically the whole time, snorkeling, kayaking, jumping off the pontoon. They loved the kids club and so did we. Then there was the hermit crab racing.
9: In August, the Miles family needed to make an urgent claim for stolen property while they were in Fiji. Thanks to AA Travel Insurance, that wasn't the story they came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
10: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
11: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
12: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
13: अब हमारा क्या होगा?
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
12: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
17: अभी बस 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. थिएटर्स हम सभी लुक फोर्ड करते रहते हैं जाने के लिए, टू वॉच आवर फेवरेट मूवीज एंड ऑल. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए. मैं भी शायद हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आर्टिकल्स जो हैं ये अभी काफ़ी आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू द थिएटर्स, कुछ चीज़ें जो हैं ये आप हमेशा ध्यान में रखें. नंबर वन, कीप योर फोन अवे वंस द मूवी स्टार्ट्स.
18: ओके,
17: ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, नहीं कर पाते. डू नॉट टू टॉक थ्रू द एंटायर मूवी. कुछ लोग पूरी फिल्म में लगे रहते हैं.
18: या ट्रू.
17: द थर्ड वन, बी केयरफुल विद योर सीट्स. आपके सामने जो बैठा है वो आपका हर एक किक, पुश या जो रेस्टलेस मूवमेंट है ये फील कर सकता है. इसके अलावा, डू नॉट ट्रीट द आर्म रेस्ट लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. यू नो, आर्म रेस्ट जो दो सीटों के बीच होता है, अक्सर लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं उस, यू नो, कि ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है. कीप फूड एंड ड्रिंक्स अंडर कंट्रोल. यू नो, स्नैक्स जो है आ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आप ले रहे हैं. और कभी कभार ऐसा होता है कि the food becomes louder than the movie itself. Popcorn ho ya drinks ho, jo bhi ho, arrive on time instead of making an entrance halfway through.
18: Right,
17: samay se pehle pahunch jaye. And iske alawa, one of the most important things, do not record any part of the movie.
18: Ye log nahi karte hain ye, actually I think this is the most important one.
17: And फाइनल वन, लीव द थिएटर द वे यू फाउंड इट.
3: यस
17: नो, जैसे आपको साफ सुथरा मिला था उसी तरह से आप साफ सुथरा छोड़ कर जाए.
3: हाँ, यही कुछ जरूरी चीजें हैं करनी चाहिए. बेसिक यू नो बोलते हैं मैनर्स होते हैं, एटिक्विट्स होते हैं ये, पर अक्सर लोग जो है ये करना भूल जाते हैं या करते नहीं है ना, वो अलग बात है. एनीवेज, ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं रश आवर. जितने लोगों ने अपनी अपनी एंट्रीज हमारे पास सेंड की, थैंक यू सो मच आप सभी के एंट्रीज के लिए. कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. याद रहे, और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है. अभी जैसे जैसे बाकी हमारे साथी आते रहेंगे, और भी मौके आपको देंगे और भी शानदार इनाम जीतने के. और ये आपको याद रखना है कि व्हेनेवर वी इनवाइट एंट्रीज, आप ध्यान से सुने कि हर एक कॉम्पिटिशन के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है.
17: अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्रीज जो है इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं. नाउ व्हाट यू गॉट टू डू इज विजिट आवर फेसबुक पेज. वहां पर हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून का एक पिंड पोस्ट आपको मिलेगा, जिसमें डिटेल्स होंगे कि कौन कौन से इनाम जो है ये आप जीत सकते हैं. नाउ ऑल यू गॉट टू डू इज गो लाइक दैट पोस्ट और कमेंट सेक्शन में किसी को टैग करना है आपको.
3: ओके,
17: अभी से लेकर अराउंड थ्रोबैक तक का टाइम जो है ये हम आपको दे रहे हैं. विजिट आवर फेसबुक पेज, पिंड पोस्ट एक आपको मिलेगा हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून का, जिसमें डिटेल्स हैं कि कौन कौन से इनाम हैं जो आप जीत सकते हैं. उस पोस्ट को आप लाइक करें और उसके कमेंट सेक्शन में किसी को टैग करें.
3: राइट, गेट गोइंग और अपनी एंट्रीज जल्दी जल्दी हमारे पास आप सेंड कीजिए, और या माफ कीजिए, हमारे फेसबुक पर जाकर इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है. और ये भी याद रखें कि और भी मौके आपको हम बेशक देते रहेंगे. ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून शुरू हो चुका है.
2: Let's go.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी।

0: Club's Better Snacking.
1: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
6: Can't you just use my line from the TV ad?
5: Well, let's just do it again, please, Pepper.
6: Phone dollars are for phones. Obviously?
5: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
6: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
5: Q, T's and C's.
6: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/OneWallet.
5: Cool, and the end bit.
6: One New Zealand. Let's get connected.
7: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
8: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: तो इस साल 2026 में काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं, कई सालों बाद अलग अलग चीज़ें। अगर आपको याद होगा, ये वेलिंगटन में स्नो हुआ था,
11: हाँ,
10: कि हेल्स गिरे थे, कुछ तो हुआ था। ये वेलिंगटन वाले में ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे कि हेल हुआ था या स्नो हुआ था, जो भी है। बट ऑन द अदर हैंड, वेलिंगटन का जो गार्डन बेस्ट चेरी ब्लॉसम सीजन, कई सालों बाद ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वेलिंगटोनियंस को। और कहा गया है 450 trees जो है, they are packed with blossoms, लेकिन जो best time to go and see them, ये सबसे ज़रूरी सवाल है। Wellington Garden, यहाँ पर कहा गया है कि जो best cherry blossom season इस साल देखा गया है कई सालों में। Annual Blossom Very Cherry Blossom Festival, ये Aston Norwood Gardens Kaitoke Upper Hutt में यहाँ पर होता है, जिसमें हर साल 30,000 से भी ज़्यादा लोग जाते हैं।
11: अच्छा
10: जी,
11: मुझे तो इस garden के बारे में पता ही नहीं था।
10: Wellington में है ना, इसीलिए।
11: हाँ, फिर भी।
10: हाँ, तो वेलिंगटन में
11: 30,000 लोग सालाना जाते हैं, एनुअली। हाँ, जाते हैं वहाँ पर। मैं उनमें नहीं था,
10: बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी देखना ये है कि इस साल आप में से कितने लोग जो वेलिंगटन में रहते हैं इसे एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि एज आई हैव सेड, दिस ईयर हैज बीन सेड लाइक द बेस्ट ईयर व्हेन इट कम्स टू द चेरी ब्लॉसम सीजन इन वेलिंगटन। फिलहाल स्कूली छुट्टियां चल रही हैं, द सेकेंड वीक हैव स्टार्टेड, और इस सेकेंड वीक में भी बहुत सी अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं जिसका हिस्सा बन सकते हैं अगले घंटे व्हाट्सएप ऑकलैंड में, हम आपको ज़रूर बताएंगे।

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Hum, accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: A high of 17, plenty of cloud, but a mostly fine one today. Into the city on the northern motorway, the right lane blocked before the bridge due to a breakdown. Now, other than that, we're looking okay. 26 minutes in from Constellation Drive, slow from Constellation to the bridge with a couple of heavy patches. Northwestern, 24 minutes in from Massey, slow from the causeway, still heavy through Point Shep and St. Luke's. Southern, 36 in from Monaco, heavy on and off from East Tamaki.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
5: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
6: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
7: No Limit's massive sellout is in its final days. Massive deals on thousands of products from leading brands. TVs, whiteware, computers, smartphones, small appliances, plus loads more priced to sell out. Big brands, hot prices, ends Wednesday. Conditions apply, only at No Limit.
8: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
9: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
0: Time check.
11: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
12: Good morning, it's Samiti Kaat Bach Rahi Hai.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The Salvation Army has partnered with Warehouse Stationery to help with growing number of children unable to afford school supplies. Sally's spokesperson Christina Tyson says that families are doing it tough.
14: This is a chance for the community to tag in early in a way that expresses gratitude, and then next year that will mean we can provide some really important educational supplies to families and to children.
13: Downed lines are causing traffic woes in the Wellington region. A section of Eastern Hutt Road between Lower and Upper Hutt is closed after a truck clipped a power pole just before 8 a.m. Access to publicly funded HIV prevention drugs is being expanded to those here on visitor visas. Burnett Foundation CEO Liz Gibbs says it's an important step towards zero local transmissions by 2030.
15: Particularly important in the context of a very significant increase in cases from Fiji, and we do now have local cases linked to Fiji.
13: There are calls for Krista Pike's death sentence in the US to be commuted to life in prison following her botched execution. Her lawyer, Stephen Ferrell, told CNN she may never recover.
16: She's still in the hospital on a ventilator, critically ill. We don't really know the prognosis yet and may not know for several days.
13: To rugby league, with Machinery House in a league of their own, the Knights' fairy tale NRL season has come up 1 point short. Last year's Wooden Spooners losing last night's grand final 19-18 to the Roosters. Captain Caelan Ponga is gutted on Sky Sport.
17: It hurts so much. The ultimate goal is to win a comp. We'll be back.
13: And the NPC quarterfinals are set. Northland host Tasman. Taranaki's away to North Harbour. Otago's at home to Hawke's Bay. And Waikato travel to Canterbury.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best. Hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: आज तो सुपर सिटी ऑकलैंड में मौसम के बारे में बताया गया है कि क्लाउडी वेदर रहेगा, बाद में चलकर स्पेशली शाम के समय थोड़ा बहुत साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे ये सनसेट 7:21 पीएम पर होगा, टेम्परेचर 11.8 डिग्रीज तक पहुंच चुका है, ओवरनाइट 8 डिग्रीज, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
20: You buy Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
21: What's going on? Kya bakte ho?
22: Arre kehna kya chahte ho?
12: 1951 mein Chicago ke ek artist the Gertrude Abercrombie. Inhone ek painting jo hai ye banayi thi. और ये पेंटिंग जो है इसका टाइटल था ऑल्डमैन मैरियम्स शेल्स। और 1952 में एक मेडिकल प्रोसीजर करने के लिए ये पेंटिंग जो है जॉन रेनल्स जो कि मिशिगन के एक डॉक्टर थे उनको एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया था।
13: ओके।
12: और उनकी फैमिली ने ये पेंटिंग जो है लगभग 75 इयर्स तक रखी और जुलाई में उसको एक एस्टेट सेल के दौरान बेच दिया।
13: ओके।
12: $30 में $30 में ये बिक गया। उसके बाद कहीं से पता चला इसके बारे में और ये जो पेंटिंग है उसे हासिल किया गया और उसका ऑक्शन किया गया।
13: ओके।
12: एंड इट सोल्ड फॉर $1.35 million।
13: व्हाट?
12: $1.35 million।
13: नहीं नहीं, that I heard. वो मुझे सुनाई दिया। This is very interesting, ना?
12: हाँ।
13: Wow.
12: आपके घर में कोई पेंटिंग है?
13: चेक कर लो भैया।
12: उसको अच्छी तरह से देख लो।
13: बेचने से पहले देख लेना।
12: उस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम अगर विजय वर्मा है तो आपको millions of dollars मिल सकते हैं।
13: Yeah, really. राइट। एनीवेज, क्या बकते हो आज का आपके लिए लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। नाउ रिमेंबर कि अपॉर्चुनिटीज आज भी हमारे साथ बहुत सारी आपको हम दे रहे हैं। इस घंटे व्हाट्स गोइंग ऑन में बातें करेंगे आपके साथ और लेकर आए हैं जबकि आपके लिए एक और एक बेहतरीन मौका फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेकर इनाम जीतने का। तो क्या जीतना है इस बार, जानने के लिए हमारे साथ ही रहेगा। बट डोंट फॉरगेट, ये साल जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल इलेक्शंस जो है ये होने वाले हैं न्यूजीलैंड में और काफ़ी हैवी तरीके से कैंपेनिंग जो है अलग अलग पार्टीज की ये चल रही है। बहुत से अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं ओवर द वीकेंड, तो इससे जुड़े कुछ डिटेल्स आपके लिए इनफैक्ट हम लेकर आएंगे आज के हमारे डेली राउंड अप में। बट ऑन दी अदर हैंड आपको याद दिला रहे हैं कि इलेक्शन स्पेशल जो है ये ड्राइव शो विद सैनी इन रुजबे में आपके लिए जारी है और आपके साथ या लास्ट थर्सडे को इनफेक्ट बातें हुई थी सनी कौशल के साथ सैंडियन रुजबे की, जो कि न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो सनी कौशल हु इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और चेयरमैन एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और फॉर्मर चेयरमैन मिनिस्टीरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के लिए 2024 से लेकर 2026 के बीच में ये थे। तो इनसे कुछ जरूरी बातें इन्होंने की है, वे दे हैव डिस्कस्ड द प्रेशर्स जो कीवी बिजनेसेस फेस कर रहे हैं विद द राइजिंग क्राइम, रिपीट ऑफेंडर्स टू इमिग्रेशन, वर्क फोर्स शॉर्टेजेस और साथ में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन न्यूजीलैंड। इन्होंने कुछ डिटेल शेयर किए हैं दैट व्हाट ही बिलीव्स कि नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज और वेदर पॉलिटिशियंस आर ट्रूली लिसनिंग टू स्मॉल बिजनेसेस। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन दैट एवरी बिजनेस ओनर शुड बी आस्किंग कैंडिडेट्स बिफोर कास्टिंग देयर वोट, इस पर भी कुछ चर्चा इन्होंने किया है। तो इफ यू नीड डिटेल्स एज टू व्हाट यू कैन यू नो फाइंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जो इलेक्शन स्पेशल के दौरान ड्राइव शो में सैंडी एंड रुजबे ने की है, अगर आपको लिंक चाहिए तो इसके लिए ड्राइव लिखकर 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो ऑडियो है ये आप हासिल कर सकते हैं आफ्टर दैट।

0: समझ है? हाँ?
1: बढ़िया।
2: What's going on?
3: What's up, Auckland?
4: सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि महाउत्सव इसी संडे से मनाया जाएगा, मंगलवार 20 अक्टूबर तक, और ये रहेगा 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ स्थित द केव में, वेयर हाउस के ठीक सामने, और 6:30 बजे स्थापना पूजा आरंभ होगी और 7:30 बजे से श्रीमद देवी भागवत की कथा, जिसके बाद आरती प्रसाद और महाप्रसाद का भी प्रबंध रहेगा। गरबा, डांडिया, हुद्दतासा, रास आदि जो है ये हर दिन यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम होते रहेंगे।
5: और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि होने जा रहा है खास आपके लिए श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन, यहाँ पर श्री राम कथा, ये इनफैक्ट लास्ट वीक वेंसडे से शुरू हुआ है और लास्ट डे वुड बी टुमारो 6th of October 7 PM to 9 PM आप इसमें भाग ले सकते हैं। आज भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर पूज्य राजन जी जो है श्री राम कथा आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
4: श्री राम मंदिर पर 25 मेनिकाओ में नवरात्रि महोत्सव इसी रविवार से लेकर ट्यूजडे 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, और शाम 6 बजे वेदी स्थापना पूजा, 7:30 बजे से श्रीमद देवी भागवत कथा, इसके बाद आरती प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा। गरबा डांडिया भी यहां पर होगा, तो आप जाकर इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं।
5: और चलिए इसके अलावा अगर आपके आसपास कुछ इन यू नो कम्युनिटी के लिए इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में आप डिटेल्स जो है ये हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास जो इवेंट रिलेटेड जानकारियां हैं ये ईमेल कर दीजिए और इसे भेज दीजिए buzz@hamfm.com पर, ठीक है, buzz@hamfm.com पर। राइट नाउ जैसे कि हमने कहा दिस इज़ द सेकेंड वीक ऑफ स्कूल हॉलीडेज, और बच्चों के स्कूल हॉलीडेज़ कितने एंटरटेनिंग और इंटरेक्टिव बीत रहे हैं ये डेफिनेटली डिपेंड करता है ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस और कैसे आप को इसमें इंक्लूडेड रख सकते हैं। सो स्कूल हॉलीडेज आर हियर एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू विद द किड्स, ये हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। एक बहुत ही अमेजिंग चीज यहाँ ऑकलैंड में हो रही है, इसके लिए करना क्या है डिटेल्स हम शेयर करेंगे इन अ वाइल।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
6: ए देखो मैं आ गए।
7: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 20 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 10 बजने में और ठीक 10 पर या माफ कीजिएगा 20 मिनट हो चुके हैं,
3: 9 बजकर
2: बाकी का है, 20 मिनट हो चुके हैं। स्कूल हॉलीडेज के बारे में बातें कर रहे थे तो दे सम फन थिंग्स जो हो रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड में और ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं वी द यंग। ये हो रहा है ऑकलैंड में एंड इट्स रनिंग अंटिल संडे 11th of October, इसी संडे तक ही रहेगा। दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल हैज मोर देन 25 शोज, एक्टिविटीज एंड एडवेंचर्स जो हो रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट वेन्यूज, जिसमें आउटियर सेंटर, ऑकलैंड टाउन हॉल और आउटियर स्क्वायर जो है ये शामिल है। नाउ देयर इज एवरीथिंग फ्रॉम लाइव परफॉर्मेंसेस से लेकर क्रिएटिव एक्टिविटीज टू इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं जो आपके बच्चे कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सम परफॉर्मेंसेज, यहाँ पर मैजिक शोज वगैरह जो है ये भी होते हैं जिसमें आपके बच्चे जो है जाकर एक तो विटनेस भी कर सकते हैं, इफ लकी इनफ अगर मौका मिले तो वो उसमें इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज मोर देन हाफ ऑफ दीज एक्टिविटीज जो हो रहे हैं दे आर फ्री।
3: That's good news.
2: Yeah, you don't have to pay anything. So, चाहे बारिश हो रही हो या नहीं हो रही है, अगर आप throughout this particular week of school holidays कुछ तलाश रहे हैं जिसमें आप अपने बच्चों को involved और entertained रखना चाहते हैं और उनके साथ आप भी एक quality time spend करते हुए enjoy करना चाहते हैं, पहुंच जाइए Auckland City Centre and experience कीजिए We the Young। आप online जाकर Google भी कर सकते हैं और details आपको मिल जाएंगी। Auckland Live ये जो website है इनका, ऑकलैंड लाइव इनका वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं विच इज़ auckland live.co.nz, और यहाँ पर आपको एक तो पूरा का पूरा लाइनअप मिल जाएगा कि कब कहाँ कितने बजे क्या हो रहा है और साथ में कौन कौन से टिकटेड इवेंट्स हैं जिनके लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे और कौन कौन से फ्री इवेंट्स हैं जिसमें आप बिना एनी कॉस्ट शामिल हो सकते हैं, ये डिटेल्स आपको ज़रूर मिल जाएगी।
3: फिलहाल हमने पिछले घंटे आपसे कहा था कि हमारा जो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून का पिंड पोस्ट है आपको उसे लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में किसी को टैग करना है। तो सारिका है, साथ में लक्ष्मी है, नमीश है, अनीश, इसके अलावा धीर है, नताशा है, सुनील है, खुशाल है, प्रिया है, इसके अलावा सलमा, एश्विन, रोशनी, नितिका, नीलेश, एश्विन, थैंक यू सो मच आप सभी ने अभी तक जाकर जो लाइक है ये किया है और टैग किया है किसी को।
2: यस, और अब बारी है कि आपको हम दे एक और एक मौका हमारे साथ शामिल होकर अपनी दूसरी एंट्री हमारे साथ रजिस्टर कराने के लिए इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहां पर यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली ऑन हम। तो आपको करना क्या है, इस बार अगर आप जीतना चाहते हैं हैरिंगटन लिविंग की ओर से होम डेको या फिर फर्नीचर वाउचर्स वर्थ $1,000 जो आप में से किसी एक विनर को ही मिलेगा, यानी वन विनर ओनली एंड $1,000 का वाउचर इनका, ऑल थैंक्स टू हैरिंगटन लिविंग। और हैरिंगटन लिविंग मैनिकाउज स्प्रिंग सेल इज ऑन नाउ, जहां पर आप ब्यूटीफुल फर्नीचर जो है ये जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, इसे ले भी सकते हैं विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री। और ये जो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी, टीज एंड सीज आ रही है एट हैरिंगटन लिविंग मैनिकाउ, दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट एंड चेक आउट। रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रमोशन, इसके लिए जानने के लिए आप hum.over.nz विजिट कर सकते हैं। और जब भी आप हमारे पास अपनी एंट्री सेंड करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, ये याद रखें दैट स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स अप्लाई। तो हैरिंगटन लिविंग की ओर से होम डेको और फर्नीचर वाउचर्स वर्थ $1,000 अगर आपको जीतना है
3: तो अभी आपको टेक्स्ट करना है HL, याद रहे हैरिंगटन लिविंग का शॉर्ट फॉर्म HL लिखें, उसके बाद स्पेस दें और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेज दें। सो इट्स वेरी सिंपल, HL और अपना नाम 5599 पर। अगला गाना कितने मिनटों का है?
2: 4 मिनटों का है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको हम, अभी आपका टाइम शुरू हो रहा है, राइट नाउ टाइम स्टार्ट्स नाउ,
3: एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल रहा है। सो गेट गोइंग, HL अपना नाम 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।
2: याद रहे जिस कीवर्ड के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो सही तरीके से लिखकर हमारे पास सेंड करना जरूरी है। एंड द अदर थिंग, मेक श्योर आप अपना नाम भी लिख रहे हैं विद ईच एंट्री दैट यू आर सेंडिंग अक्रॉस।
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ा
0: Yes.
4: सीधा अंदर आऊं।
5: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो चलिए इसी गाने के साथ साथ अब टाइम इज अप. जितने लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एंट्रीज भेजी हैं, हैरिंगटन लिविंग इनकी ओर से जो $1,000 वर्थ ऑफ होम डेको या फर्नीचर वाउचर्स जो है ये जीतने के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी की एंट्रीज के लिए. आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं. याद रहे और भी बहुत से बेहतरीन मौके फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेते हुए आपको जरूर मिलेंगे ऑन हम इस दिवाली, जहाँ पर यू कैन ऑल्सो विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस.
1: Are you ready? Chatbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
7: Voting feels easier when you know what to expect. Accessible resources are available to help you prepare to vote in the 2026 general election. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You can vote from Monday 26 October to 7 PM on Election Day, Saturday 7 November. Brought to you by the Electoral Commission.
8: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
9: James, this is a radio ad.
8: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
10: A message for all drivers. You must now leave a 1.5 metre gap when passing people on bikes, e-scooters or horses that are travelling in the same direction and in the same lane as you. Learn more at nzta.govt.nz.
11: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardo's is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
14: What's going on?
15: 22 मिनट रह गए हैं 10 बजने में डेली राउंडअप में। कल ऑकलैंड के ग्लेनडीन में घटी एक सड़क दुर्घटना की वजह से दो लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाना पड़ा। सेंट जोन्स का कहना है कि 3 एम्बुलेंसेस, 2 क्रिटिकल केयर यूनिट्स और एक ऑपरेशंस मैनेजर जो है उनको किब स्ट्रीट घटी इस दुर्घटना में भेजा गया था। 2 पेशेंट्स जो हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक की हालत मोडरेट बताई गई है। और काफ़ी तादाद में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ये भी घटनास्थल पर कल मौजूद थे।
2: और दूसरी ओर, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन जो है अलग अलग पार्टीज ये कर रहे हैं, दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट टेक्स्ट एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज अप फ्रंट। और ऐसे में एवरीडे हाउसहोल्ड के लिए इसका क्या मतलब होगा या क्या डिफरेंस ये करेगा? ना एक कंपैरिजन जो है ये किया गया है, एंड RNZ हैज डन दिस रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट दे हैव शेयर्ड, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हाइपोथेटिकल हाउसहोल्ड अगर देखा जाए कि इनके इन पॉलिसी चेंजेस का या फिर जो टैक्स डिफरेंट टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज ये अनाउंस कर रहे हैं इस पर क्या असर पड़ेगा। ना ये जो हाइपोथेटिकल कंपैरिजन हुआ है, इसमें अगर एक रिटायर्ड कपल को ले लिया जाए with a 2 million mortgage with a 2 million mortgage free home, तो मॉडलिंग है सजेस्ट करता है कि नेशनल वुड मेक लिटिल इमीडिएट डिफरेंस। are under labor, their family home would be exempt from the proposed capital gains tax. Jabki they would or they could get free prescriptions and up to 3 GP visits a year, ye inke liye free rahega. I'm talking about a retired couple, jo example comparison mein kiya gaya hai. Aur uske alawa jo opportunities hai unhone propose kiya hai, land tax could cost this couple around $19,250 a year. Although ye jo party hai inka kehna hai ki the payment could be deferred until property is sold. और अगर एक यंग फैमिली को देखा जाए विद अ $900,000 होम एंड अ $800,000 मॉर्गेज, सिनारियो ऐसा है कि ये इस मामले में से काफ़ी डिफरेंट. जो मॉडलिंग कंपैरिजन है इसमें कहा गया है कि एस्टिमेट्स कुड बी अराउंड $13,800 a year better off under opportunity party, और while Te Pati Maori का जो proposed exchange है it could leave them around $9,200 better off. अगर ये comparisons किए जाए तो. And for a single 55 year old earning $85,000 a year, जो impact है और it'll be ranged from different categories, जिसमें little major changes under some parties would basically make a modest tax saving, जबकि बाकियों के लिए थोड़ा different होगा. इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो फिगर्स है शुडन बी व्यूड इन आइसोलेशन. चेंजेस टू टैक्स या चेंजेस टू टैक्स स्पेंडिंग एंड बोरोइंग गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है ये काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं. दे आर ऑल इन फैक्ट कनेक्टेड. सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना कोई भी वोट जो ये कास्ट करते हैं आप बिफोर मेकिंग अ डिसीजन जस्ट बाय हियरिंग वन पॉलिसी, बाकी सारे पॉलिसीज़ को आप रिव्यू कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड विच पॉलिसी साउंड्स बेस्ट इज़ नॉट द सिचुएशन हियर. द बिग क्वेश्चन इज़ कि एक हाउस होल्ड के लिए क्या कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं अंडर विच पार्टीज पॉलिसी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट.
15: इसके अलावा ऑकलैंड के एक एली लर्निंग सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है जब उसने अथॉरिटीज़ को बताया कि ये एली लर्निंग सर्विस जो है could have been exposed to asbestos contaminated rangoli powder. एजुकेशन रिव्यू ऑफिस को इसकी जानकारी दी गई और उसका कहना है कि अप्रोप्रिएट कदम जो है ये उठाए गए आफ्टर पोटेंशियल एस्बेस्टोस रिलेटेड इशू ये सामने आया रंगोली पाउडर को लेकर. इससे पहले ही एजुकेशन रिव्यू ऑफिस ने बता दिया था कि रिकॉल किया गया है कुछ रंगोली पाउडर प्रोडक्ट्स को, जो ख़ासतौर पर दिवाली के टाइम पर कई जगहों पर रंगोली पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा. और ERO के एक प्रवक्ता ने बताया कि एली लर्निंग सर्विसेज जो हैं ये जिम्मेदार हैं फॉर एंश्योरिंग दैट देयर प्रेमिसेज आर सेफ फॉर चिल्ड्रन स्टाफ एंड विजिटर्स. UEFA नेशंस लीग के जो मैचेस आज के खेले गए उन पर भी लगे हाथों अपडेट्स जो है ये जल्दी से आपको दे देते हैं. आज के जितने भी मैचेस जो खेले गए हैं उनमें देखें तो आज कई इंटरेस्टिंग मैचेस जो है ये हुए थे और इन के रिजल्ट्स की ओर देखें. कोसोवो और ऑस्ट्रिया एक एक गोल से बराबर ठहरे. आयरलैंड इसराइल वो एक एक गोल से बराबर. डेनमार्क 1 वेल्स नील. पोर्चुगल 2 नॉर्वे 1. नेदरलैंड्स 2 सेबिया 1. जर्मनी और ग्रीस निरोल से बराबर. माल्टा की जीत एंडोरा के खिलाफ 1-0 से हुई.
16: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
2: पहली वाली, कहते हैं कि असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है।
3: अरे वाह, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में

0: worth of prizes. Fuel vouchers worth $1,000, saath mein cash $1,000, home and deco, your home deco and furniture vouchers worth $1,000, Mitre 10 ke vouchers $1,000 ke, aur Newell ke vouchers $1,000 ke, ye aap jeet sakte hain thanks to these amazing sponsors hamare saath jo jude hue hain, NZPMI, Harrington Living, Logic Finance, Fortune aur saath mein Indelible Homes in Cuber se. To jeetne ke liye karna kya hai, janne ke liye bas aapko sunte rehna hoga. Jaise agla mauka aapko mile, is mauke ka फायदा जरूर उठाइएगा।
1: एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट अड्डा में मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ चुके हैं राज प्रदीप सिंह जी। और सवाल एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले तो मैं इनको गुड मॉर्निंग करूं। गुड मॉर्निंग राज जी, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग मी टुडे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू आस्क यू ईच टाइम आई कॉल अप लीगल एसोसिएट्स, आई हैव एन इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेरी। तो इन्होंने पूछा आपसे, गुड मॉर्निंग राज जी, व्हाट इज द ऑप्शन फॉर रेजिडेंस वीजा, हाउ कैन वी क्वालिफाई फॉर रेजिडेंस वीजा?
2: ओके, या दैट्स राइट, इट्स अ वेरी ओपन क्वेश्चन एंड या इट विल फिट फॉर ऑल। करंटली रेजिडेंस वीजा स्किल्ड माइग्रेशन में 6 पॉइंट्स हैं
1: जी,
2: और 6 पॉइंट्स तीन तरीके से हैं। वन इज बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, one is based on your registration, one is based on your pay rate, wage rate. तो अगर आपका सबसे easy होता है qualification based, it means अगर आपके पास किसी के पास न्यूजीलैंड की master degree है, PhD है overseas की, तो सब का point है 6. It means you just need a job offer letter or a current skilled employment, then you can apply.
1: Right.
2: दूसरा है अगर किसी के पास इंडिया की मास्टर डिग्री है या इंडिया की बैचलर डिग्री है, then you need to work in that occupation. I mean that will qualify. First thing is 5 points master degree, and India ki jo bachelor degree that will give you 4 points. Or agar New Zealand ki bachelor degree that will give you 5 points. So it means you need to work 1 year for master degree and for New Zealand bachelor degree 1 year. Or agar overseas ki like India ki ya पीजी से बैचलर डिग्री है, देन यू विल क्वालिफाई इन 1.5 इयर्स। अब मेन चीज है, ये तो पॉइंट सिस्टम है आपका, यू नो, या जैसे पे रेट है 52.50, तो इसके ऊपर आपका 3 पॉइंट्स है, एंड देन आपको 1.5 ईयर आपको वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ेगा
1: जी।
2: नहीं सॉरी, 2 इयर्स, सो 3 पॉइंट्स फॉर 52.50 एंड 3 पॉइंट्स फॉर 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ऐसे ही जो $70 है उसके सीधे 4 पॉइंट्स एंड यू नीड टू वर्क 1.5 इयर्स, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और तीसरा है जो स्टेट अवे आप रेजिडेंस डाल सकते हैं, वो है इस ईयर का रेट $105। जो इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, यू नो 5 to 10 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, जो उनके इतने रेट्स होते हैं, दे कैन अप्लाई, या कोई भी ऐसा पे रेट है दे कैन क्वालिफाई, इवन लो स्किल वाले भी जो एनजेड्स को में नहीं आते। तो दीज आर द सिस्टम्स वेयर दे क्वालिफाई। एंड ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन में होते हैं, जैसे टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, तो वो ग्रीन लिस्ट में है स्टेट टू रेजिडेंस वाले में, सो दे कैन अप्लाई एज वेल, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन। बहुत सारे हमारे ट्रेड वाले भी हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, यू नो दे गॉट रजिस्ट्रेशन एज वेल, सो दे कैन अप्लाई देयर ऑक्यूपेशन रेजिडेंस वीजा इन दैट। सो बहुत सारी ऑप्शन है, और इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है लोगों का जो हम डील कर रहे हैं अभी, वो है डायरेक्ट रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस टू देयर ऑक्यूपेशन। मीन्स जो जिस तरह का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भी मास्टर डिग्री है तो एक साल के अंदर ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे, तो एनजेड्स को की रिक्वायरमेंट मीट करना जरूरी है। उसके लिए प्लीज मेरी सबको एडवाइस होती है कि अपना केस अप्लाई करने से पहले एसेस कराओ। तो ऑफकोर्स एसेस कराने के लिए, एज यू ऑलवेज टेल, यू नो वी आर द राइट पीपल टू असेस देयर केस फॉर रेजिडेंस वीजा, एंड वी कैन एडवाइस देम, गाइड देम। मेन होता है कि वर्क एक्सपीरियंस आपको कब से क्वालिफाई होगा, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो जो इनका टाइम पीरियड है पिछले, जो अगर 1 ईयर है तो 2 ईयर, 1.5 ईयर है तो पिछले 3 साल के अंदर होना चाहिए, और अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो पिछले 4 साल के अंदर होना चाहिए। एंड एज यू अंडरस्टैंड के भी जो पे रेट है वो भी चेंज हो गया है, तो इसीलिए वो भी उन लोगों को चेक कराना पड़ेगा प्रॉपरली कि विच ईयर का मेडन वेज उनको क्वालिफाई करेगा वर्क एक्सपीरियंस के लिए। सो इट्स लिटिल टेक्निकल ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर एवरी एप्लीकेंट, बट अगेन दे कैन टेक ए लीगल एडवाइस एंड इट विल बी वेरी इजी, सो वी कैन एडवाइस देम प्रॉपरली। सो मेक अपॉइंटमेंट विद अस लीगल एसोसिएट, वन ऑफ माई टीम मेंबर्स, and then we will be able to guide them
1: ब्रिलियंट, आई थिंक आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिया. और अगर आपको भी पूछना है, legalassociates.co.nz की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन बुक कीजिए आप इनके साथ अपॉइंटमेंट. जो पहला आपका अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल फ्री है. एंड लेवल 131 ईस्ट मार्केट रोड पापाटोयोटो, या आप हैमिल्टन भी पहुंच सकते हैं. 0927994399 इज द मैजिक नंबर टू गिव अ कॉल एंड टॉक टू देम. थैंक यू सो मच राज जी, अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी.
2: Thank you, Kashika ji.
1: Have
2: a good day.
1: You too. Bye.
0: My time with Kashika.
3: आज कल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. हाफी तो नहीं.
4: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
5: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
4: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
5: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
4: बस इतना ही.
5: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट legalassociates.co.nz.
10: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
11: I am Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
12: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
13: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424.
14: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Office shout out.
1: Office shout out की बात करती हूँ तो मैं पहुंच चुकी हूँ all the way up till a very very nice. Thank you so much. And this is from लीगल एसोसिएट्स इटसेल्फ, आपकी टीम जो है मुझे अभी भी सुन रही है, उन्होंने कहा कि भाई काशिका जी, राज जी तो चले गए हैं लेकिन हम आपको अभी भी सुन रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो जो टीम है हमारे साथ, डेफिनेटली आपको बता दूँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम के लिए एक फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून आज से शुरू हो चुका है, जहाँ हम $5,000 वर्थ के प्राइजेस आपको इस दिवाली पर देने वाले हैं विन योर शेयर। और अब आपके शेयर के लिए आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ यू नो द ड्रिल, पर जितने लोग अभी सुनते आ रहे हैं, कितने साल हो गए हम कोशिश करते हैं दिवाली पे हम आप लोगों के लिए और भी जगमगाती हुई दिवाली को मेमोरेबल बना दें, और ऐसे में कुछ बढ़िया बढ़िया अब वो प्राइजेस वगैरह हम आपके लिए रेडी करते हैं। NZPMI आपको $1,000 के वाउचर्स दे रहे हैं ऑफ माइटर 10, और ये आप इनके साथ अगर ये वाउचर जीतना चाहते हैं तो आप NZPMI लिख के भेजिए, और आप अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पे। लेट्स कीप इट सिंपल, $1,000 के वाउचर्स अगर आपको मिल जाएं, समझ लीजिए क्या बात है। वैसे NZPMI के बारे में आपको मैं बता देती हूँ, अपनी प्रॉपर्टीज़ को अनलॉक कीजिए, ट्रू सेल वैल्यू आपकी NZPMI निकाल देती है, आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और फ्री असेसमेंट करते हैं आपके लिए। NZPMI.co.nz पर आप कॉल करें, क्लिक करें, या 0800 4 NZPMI पर आप इन्हें कॉल करके इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। लीजिए, वाह वाह, अजय, नीलेश, सनिल, आप लोगों के आंसर्स तो आ ही चुके हैं। तो चलिए बस मेरे पास टाइम है, एक अरिजीत सिंह का गाना मैं इस गाने के बाद बजाने वाली हूँ, कोशिश कीजिए, तब तक आप फटाफट मुझे अपने आंसर्स देते चले जाएं। आई है ना, आई हैव आल्सो गॉट देवेंद्र सिंह।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वैसे आप अपने आप को भी अपना बना सकते हैं और अपने आप को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं. बाय द वे, जॉब सीकर्स जो हैं, इन्होंने क्या किया है, यू नो, एआई इंटरव्यू एजेंट्स के साथ जब बात करने की कोशिश करती है तो सम पीपल ट्राई टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. अब ऐसे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है शी वाज वांटिंग टू आस्क सम लेडी एंड एआई ऑफ कोर्स कुड नॉट गिव दोस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू दैट एंड she didn't quite understand how things are going to be working. So it became a very bad and a very jarring experience for her. She felt that ye company jo unko interview kar rahi thi AI ke zariye, it was not really all what she was really wanting to do, but unko laga ki it's better that she complains about it to say that it was not right and she deserves some kind of like personal इंटरव्यू. एक ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं. बिल्कुल, आई एम टोटली विद हर. एंड ये एक कभी कभी फेक जॉब लिस्ट भी होती है, कभी कभी सीवीज और कवर लेटर्स जो होते हैं पोटेंशियली वैल्यूबल डेटा जो होता है उसके साथ उनके पास एक्सेस आ जाता है, फिर AI पता नहीं उसका क्या करती है. सो एक पिटिशन और एक वार्निंग एक साथ मिलकर उस पर काम कर रही हैं एक लेडी एंड शी इज वॉन्टिंग टू get this as a closure.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best hamari good brands bhi hai.

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. And of course, ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत जबरदस्त इस पिक्चर ने काम कर लिया है. And I am talking, I do not know, have you seen it or not? But Drishyam 3, it's just taken people by rage. And बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है पिक्चर. And फिल्म ने इतना कमाल का रिस्पॉन्स लेकर आ गए हैं दैट लोगों को लगता है क्या बात है. अब एक ब्रेक थ्रू हुआ है फॉर सलमान खान से मातृभूमि, जहाँ पे गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिल गई इसको, क्योंकि फिल्म रिवाइज की गई. इट शोज द टाइज ऑफ इंडिया एंड चाइना इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट. सो ऑल द सल्लू फैंस बी वेरी वेरी केयरफुल. बैटल ऑफ गलवान जो है ये रिक्रिस्टन किया गया और इसका नाम अब पड़ गया है मातृभूमि. अब ये ठीक है, ये 2020 के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है कहानी. बट वी विल सी हाउ इट गोज, बिकॉज सीइंग सलमान लाइक दिस विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. कमिंग अप नेक्स्ट, ड्रीम ड्रीम ड्रीम. क्या ड्रीम किया? अरे मुझे विनर्स तो नहीं है अभी, विनर्स तो हम काफ़ी लेट अनाउंस करेंगे, बट मुझे बताना है कि किस किस ने पार्टिसिपेट भी किया. बस इन अ बिट.
2: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. India आ रहा है ऑकलैंड and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को ऑल वाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को. एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का. ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड. अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस. बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
13: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
14: Smile.

0: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
1: Welcome to Peak Hour Commute, bye.
0: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
1: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
0: Yeah, that sounds like me.
1: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
0: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
2: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
4: ड्रीम डायरी से पहले मैं देखना चाहती हूँ एनजेड पीएमआई के लिए जो आपने $1,000 का एक ही वाउचर है हाँ मिलेगा उसके लिए मैंने नाम ऐड कर लिया हाँ सुनील कुमार विशाल अश्विन चांद सारिका एंड बाकी तो आप सबके नाम मैंने मुझे लगता है पहले ही अनाउंस कर दिए थे सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इसको इसमें भाग लिया अगले घंटे पर एक और कॉन्टेस्ट होने वाली है तो एक और आपके लिए खुलासा होगा Be ready for it. Okay, ये तो हो गया लेकिन हम ड्रीम्स के बारे में बात करें कभी कभी हमें लगता है कुछ वार्निंग्स हमें मिल जाती हैं अगर हम किसी सपने को देखते हैं इट कुड बी यू नो एनी ईस्टर्न इंडिया मतलब या ईस्ट की तरफ का कोई ट्रेडिशन हो सकता है जैसे कि यू नो टूटा हुआ ग्लास टूटा हुआ कांच गिरता हुआ घर या दांत टूट जाना इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत सारी फ़र्क पड़ता है लेकिन आपको सपना आया कि दांत टूट गया तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात होती है कि भाई दांत टूट गया तो फाइनेंशियल लॉस बताया जाता है तो आपके माइंड में अगर कोई बात है कोई है सपना ऐसा तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो बस चलिए यहाँ से अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ. लेकिन अभी के लिए आई लव दिस ट्रैक एंड आई थॉट चलो मंडे हैं, आपको मोटिवेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ शरारत कर लेते हैं.

0: भी आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:03 हो चुके हैं। आपका साथ मैं काशिका निभा रही हूँ 12 बजे तक, और 10 से 11 और 11 से 12 ये टाइम आपके साथ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बाय द वे, आपका वीकेंड कैसा गया था? अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो कशिश फूड्स के सौजन्य से माई टाइम चल रहा है आपके और मेरे बीच में, जहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ हमेशा आपसे कि क्या आपने अपने लिए ओवर द वीकेंड टाइम निकाला कि नहीं निकाला। जितने लोग वीकेंड पर काम करते हैं उनके लिए शायद आज और कल दो ऐसे छुट्टियां होती होंगी डेफिनेटली, क्योंकि यही दो दिन होते हैं जो स्लैक डेज होते हैं इन द रिटेल इंडस्ट्री। तो हाउ हैव यू बीन? आई होप यू बीन ग्रेट, यू बीन एंजॉयिंग योरसेल्फ्स। वैसे आप हमारे अगर कम्युनिटी की आवाज़ अगर आप चाहते हैं हम बन जाएं तो मैं आपको बता देती हूँ, budgethumfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और ये 6 अक्टूबर तक यानी कल तक श्री राम मंदिर में पूज्य राजन जी जो हैं आपके लिए प्रवचन लेकर आने वाले हैं 7 से 9 बजे, और उसके बाद वहाँ महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाने वाला है। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि बजाऊँ क्या करना है ना, मुझे गाना बजाना है। बहुत दिनों बाद ही गाना सुन रही हूँ, सुनिए।
1: बजाओ क्या

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. एक वैसे बात बता दूं, इलेक्शन जोर पर होने वाला है अगले महीने की बात है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है अब उस तरफ बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहा है दिवाली के साथ साथ. दिवाली के दिन एग्जैक्टली कीवी बिजनेसेस आर की जब मैं बात करती हूं, वहां पर क्राइम जो है इट हैड बीन ऑन अ राइज और काफ़ी ऑफेंडर्स को जो है वर्क प्लेस पे शॉर्टेज आ गई. ऑफेंडर्स को इमिग्रेशन से हटा दिया गया, उनको निकाल दिया गया. बट ऐसे में चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सुनील सनी कौशल और साथ साथ ही इज द चेयरमैन ऑफ एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, बहुत सारे ये रोल्स अपने लेते हैं. इनका पूरा एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो 5599 पे आप ड्राइव लिख कर ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ सैंडी और उसपे ने इनके साथ बात किया. और ऑफकोर्स इन्होंने शर्ली सेठिया के साथ भी बात की अबाउट हर स्ट्रगल्स एज एन आर्टिस्ट. इसके बारे में भी कैचअप आप करना चाहें तो कर सकते हैं. बियॉन्ड डेट जो है, अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, व्हाट इज आफ्टर यू गेट सेटल्ड, ऑफ डू यू एक्चुअली थिंक यू हैव गॉट सेटल्ड, यही सब बातें आपके साथ शेयर करनी है. अच्छा बहुत जल्द, ओके वेट, अभी नहीं. आई विल टेक आउट वन मोर नेम फ्रॉम माई बैग, जिसमें पता चलेगा कि कौन अब $1,000 कैश का तो नहीं है, कि किस कौन सा प्राइस है. इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार. बट अभी के लिए सिक्स वर्ड स्टोरी की मैं बात करती हूँ. बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो लेट्स कीप द टॉपिक एज सिक्स वर्ड स्टोरी में चिल्ड्रन और किड्स. हाउ इज़ दैट?
2: क्या

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एंड इट्स लुकिंग अग्ली आउट देयर ऑन द रोड्स विद सेवियर डिलेज ऑन ऑल मोटरवेज इनटू द सिटी।
2: कांट वेट फॉर कॉफी? देन डोंट Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
3: डिब्बा खुल गया।
4: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा, तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा।
4: डिब्बा खुल गया।
5: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
6: Spring savings are on now at Bedzaras. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Bedzaras Manikau and Pokekohe, where dreams begin.
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
13: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
14: मैं सिक्स वर्ड स्टोरी की तरफ अगर चलती हूँ तो वैसे आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आँखों के तारे ये वो अनमोल रतन हैं जिन्हें भगवान भी बहुत प्यार करते हैं है ना तो टेक्स्ट आपका तो नहीं आया लेकिन आई वॉज रेडी विद वन मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को प्रेप करने में मेरी तो प्रेप थी इसलिए शायद आई वॉज रेडी विद इट विद स्मॉल स्टेप्स दे आउट ग्रू अस With small steps, they outgrew us. Okay, 5599 पे आप भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डिटेल्स है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कीजिए इसी के साथ साथ मैं कुछ और भी बातें जो होती हैं आपके साथ शेयर करती हूँ बट दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल टाउपो ने क्या किया है इन्होंने डिस्टिंक्टली एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ग्लो जो था जहाँ 200 गोल्डन रिट्रीवर्स अपने ओनर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी ब्रीड को सेलेक्ट सेलिब्रेट किया ये आइडिया जो था ये स्कॉटलैंड से आया था और जहाँ पे एक गैदरिंग ऑफ गोल्डन्स के नाम से इसको लगभग 160 ईयर्स से सेलिब्रेट किया जाता है शी गॉट वेरी इंस्पायर्ड द लेडी लिंडा जो इन्होंने ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ रिट्रीवर्स आई थॉट कि क्या आएंगे कि नहीं आएंगे बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दे डिडंट एक्सपेक्ट दिस बट दे थॉट कि 200 रिट्रीवर्स जो हैं ये 50 आ जाएंगे बट दे वर मोर देन 200 रिट्रीवर्स ओ इज़न दैट सच अ ब्यूटिफुल थॉट सो पीपल वर एक्चुअली कमिंग टू सी देम ऑल फ्रॉम ऑकलैंड फांगरे एंड टोरंगा Isn't that so cute? जैसे हम बच्चों के लिए इतना प्यार रखते हैं, ठीक उसी तरह कुछ सोचते हैं कि बच्चों के लिए ये ऐसी चीज़ें अच्छी रहेंगी. आप इमेजिन कीजिए, somebody all the way from Auckland must have gone just with their dog to be in Taupo. Isn't that such a beautiful thought? ये फोटोज़ देख के मुझे बस मन कर रहा है इन डॉग्स को मैं एक हग कर लूँ. इतने क्यूट लुकिंग डॉग्स हैं. ओह, I don't know. I mean, I get totally taken in by all these kinds of beautiful animals. In fact, अभी मैंने एक अपने हमारे हम FM के इंस्टा पर पोस्ट किया है. I was at the zoo with a team building exercise of my sales team. तो ऐसे में हम सबको zoo में ले जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें सबको एक वहाँ एक conference room था जहाँ हमारे साथ उन्होंने कुछ team building की exercises करवाई. वो हमने सब करी, लेकिन इसके साथ साथ वो बीच में हमें वी वर टोटली लॉक्ड इनसाइड. उसके बाद जब हमें वो उन्होंने मौका दिया कि कहाँ जा सकते हो, आपके पास हाफ एन आवर है, आपके पास उसमें खाना भी खाना है, थोड़ा सा जू घूमना है और थोड़ा बताना है जू में क्या हुआ. आई हैपन टू फाइंड दिस ब्यूटिफुल मंकीज, अब इनकी ब्रीड मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी. एंड इनके साथ मैंने एक फ़ोटो खींची, बड़े प्यार से उन्होंने फ़ोटो खिंचाई. तो आ जाइए इंस्टा पे आके मेरी स्टोरी चेकआउट कीजिए. वैसे आप मेरी खुद की स्टोरी जो है कशिका अंडरस्कोर हम, इस पर भी आपको मेरी स्टोरी डेफिनेटली मिल सकती है. आके चेकआउट जरूर कीजिएगा, दे आर ऑसम.
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.
14: I know this is one song which somebody really...

0: Morning with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: बात जब चल रही है अबाउट फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून तो मैं बता देती हूँ इस घंटे पर मेरे पास देने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए और लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला का नाम याद कर लीजिए. एक हाउस होल्ड नेम है फाइनेंस की और इंडस्ट्री में और फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. 0800 लॉजिक जी इनका टोल फ्री नंबर है. आप क्या कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं $1000 वर्थ के न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स. एक ही विनर होगा, याद रखिएगा, एक ही विनर होगा. हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए आपको रोवा हम डॉट रोवा डॉट एन जेड पर क्लिक करना है. मेक श्योर बस आपके लिए अगला जो मैं गाना बजा रही हूँ एक दिल से दिल तक का तभी तक का टाइम आपके लिए वैलिड है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays 6 to 10 a.m. कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. दैट्स commonwealthvault.co.nz.
8: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
9: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
10: James, this is a radio ad.
9: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: Rescue me, recycle me.
3: Recycle me, reuse me. भाई इसमें हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हमें लगता है अरे भाई वाह क्या बात है. अच्छा मेरे साथ क्या हुआ कि ओवर द वीकेंड मैंने बनाया था चिकन एंड जब वो चिकन बच गया तो मैंने कहा अब क्या करें. तो बार बार इतना ज़्यादा चिकन खाया जाता था तो मॉडिफाई कर लिया उसको मैंने. व्हाट आई डिड, मैंने प्याज लिया, उसको हल्का सा ब्राउन किया, चावल भिगो के रख दिए और उसके बाद बस मैंने पुलाव के लिए मतलब लिटरली लाइक उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, गोल मिर्च, लौंग, मोटी इलायची ये सब डाल के पहले अच्छी तरह से प्याज को उसके अंदर खुशबू ले आई. एंड आफ्टर दैट जो चिकन करी बची हुई थी मेरी वो मैंने चिकन करी उसमें ऐड की, उसको हल्का हल्का भूनना शुरू किया. अब उसका जो रसा जो था बचा हुआ वो चिकन के अंदर चला गया. फिर मैंने उसमें चावल ऐड किए. क्या बनकर आया निकल के, ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया देख के और खा के भी. तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह से कुछ रीयूज करना, रिसाइकल करना, तो आप वो भी कर सकते हैं.
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: आप बताइए, इतना मजा आ रहा है इस समय आप लोगों के मैसेजेस देख के। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, ये $5,000 के वर्थ वाउचर्स हम आपको देना चाहते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप फटाफट जाइए और फटाफट जाकर अगला जो भी हम अनाउंसमेंट करते हैं उसमें आप भाग जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी दिन कहलाएगा मंगलवार। आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं नन अदर देन यहाँ पर केतन, इनका साथ जरूर दीजिएगा। बाय द वे, एक चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ आपके साथ, वो ये है कि लाइफ इज़ लवली व्हेन यू लिव इट विद लव, ग्रैटिट्यूड एंड अ ब्यूटिफुल हार्ट। तो बस इसी कोट पे अगर आप भी कुछ अपना ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली ऐड कीजिए। एंड दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज, लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। दिल छोटा सा है, छोटी सी आशा है कि नहीं, मगर ये आशाएँ हमारी कितनी ज़्यादा हमें एस्पायर करती हैं, इंस्पायर करती हैं। टेक केयर, बाय।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 나와서 공작이.
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेलियस, आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारी बातें होने वाली यहाँ पे, बहुत सारे दिनवापी होगी आपको। आपका क्या काम है, आप बस अभी से लेके 3 बजे तक बने रहिए। और यस, इस आर में काफ़ी कुछ खबरें लेके आने वाला हूँ लेटेस्ट खबर के साथ साथ। लेटेस्ट नहीं, एक्चुअली बैक टू बैक रैपिड वाली न्यूज़ लेके आऊँगा, जहाँ पे एक ही सेगमेंट पे यू विल गेट टू हियर सो मेनी न्यूज़। एंड यस, एट द सेम टाइम आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी होगी टू टेक पार्ट इन मेनी मेनी थिंग्स जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मेरा नाम केतन है और अभी से लेके 3 बजे तक यहाँ पे हूँ और बहुत ही बढ़िया दिन जाने वाला। वैसे आपका वीकेंड कैसा रहा, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 5599। आज एक्चुअली पूछेंगे कॉल करवाने को बिकॉज लेट्स सी यार, और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इफ एनीथिंग, एनी न्यू थिंग यू केम अक्रॉस। शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने से। लंच बॉक्स शो है तो ऑफकोर्स कुछ एकदम तड़कता भड़कता वाला गाना से शुरुआत करता हूँ मैं।
2: बचाओ क्या?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत नए हफ्ते के। एक्चुअली पहला मंडे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ दिस मंथ। हाँ, पहला मंडे, बिकॉज लास्ट मंडे तो 28 थी। सो यस, ऑफिशियली कह सकते हैं कि आज से ये एक नया महीना शुरू हो रहा है, नए हफ्ते के हिसाब से अगर देखें तो। पर यस, कैसा जा रहा है, आपकी शुरुआत कैसी रही अक्टूबर मंथ की? काफ़ी फेस्टिव सीजन है जो आने वाले हैं और अगस्त से ही शुरू हो जाता है, लाइक इंडिपेंडेंस डे। मैं मतलब बैक होम की बात कर रहा हूँ। और भी फेस्टिवल्स होते हैं, इट्स जस्ट दैट यू नो वी नॉट यूज टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। तो जब मैं इंडिया में था तो एक्चुअली देखे ना तो रक्षाबंधन और यहाँ से फेस्टिव सीजन शुरू होता था। देन गोइंग फॉरवर्ड यू नो सारे यू नो दोस्त लोग होते थे वो भी बुलाते थे फॉर ईद और डिफरेंट फेस्टिवल्स। एंड देन दिवाली वी ऑल यूज टू गेट अप, आई मीन वी ऑल्स टुगेदर, एंड खाना बांटना एंड पॉटलक करना, इट वॉज अमेजिंग टाइम। दैट्स वाई यू नो ये जो आखिरी के जो पाँच महीने होते हैं, छः से पाँच महीने हर साल के, वो इट इज़ लाइक अमेजिंग। बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता ही होता है। सो यस, आप मुझे बताइए आपका वीकेंड कैसा रहा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे 0800-004-866 पे, या फिर यस ऑफकोर्स आप टेक्स्ट तो मुझे कर ही सकते हैं 5599 पे। होमसिक के रेडी, अभी जब तक कॉल आता है मैं तब तक होमसिक रेमेडीज के मैसेज पढ़ लेता हूँ। एक मैसेज आया मुझे प्रतीक भाई का। यार फॉर्मेट की अगर दाद देनी पड़ेगी, आप इतना बढ़िया फॉर्मेट लिख के भेजते हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो यस, वो बोल रहे हैं पुट माई रिसाइकलिंग विली बिन आउट ऑन द कर्व यस्टरडे ओनली टू फाइंड अ बिग ब्राइट रेड स्टिकर ऑन इट दिस मॉर्निंग। Been rejected due to contamination. अरे ये तो last time भी किसी को हुआ था। Oh, so you also faced the same thing. All because I accidentally tossed a soft plastic bread wrapper inside. ये इनका message आया। Well, प्रतीक भाई obviously ये message मुझे last time भी आया था, उन्होंने भी same story share की थी और मैंने बताया भी था कि at least we are in the better situation. इतना tight नहीं जितना, I know sometimes it does happen और आपको वो नहीं करना चाहिए। You know जिस तरह से उन्होंने कर रखा है कि भाई आपको येलो बिन में इस तरह की चीज़ें डालनी है या फिर रेड बिन में इस तरह की चीज़ें डालनी है, तो वैसा ही अगर फॉलो करें, इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, दैट्स इट। इट इज़ नॉट वेरी हार्श बट इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी, बट वंस यू आर इन हैबिट फिर तो आपको लगेगा हाँ यार ये इतना हार्ड भी नहीं है, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। तो इस पर एक बार आप गौर करिएगा, बट आई होप जो बिल ज़्यादा नहीं हो, बिकॉज मुझे पता नहीं कितना फाइन लगता है। एनीवन नोज या कि अगर ऐसा कुछ होता है और फाइन लगता है यहाँ पे, लाइक कोई बताना चाहेगा मुझे, आप टेक्स्ट करिए 5599 पे और बताइए मुझे कि अगर गलती से किसी ने जो खाना है फूड है वो रिसाइकल में डाल दिया या फिर रिसाइकल वाली चीज़ें वेस्ट में डाल दी, तो उसका फाइन कितना लगता है, और इज इट लाइक वार्निंग मिलती है पहले, किस तरह से काम होता है, आप मुझे प्लीज बताइए 5599 पे। मैं भी अपनी तरफ से सर्च करता हूँ, बट यस आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू फर्स्ट कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे यस बने रहिए, बिकॉज ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए, क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, और अगर बाहर से मंगाया तो क्या मंगाया, कहाँ से मंगाया, डू लेट मी नो। लेट्स मेक एवरीवन फील सो यू नो क्रेव अबाउट द फूड व्हाट यू गाइस आर हैविंग, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, आप जल्दी से मुझे मैसेज करिए 5599 पे। लंच बॉक्स विद केतन,
1: मुझे पसंद है लड़का। हम हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: This Diwali, listen to Hum on 104.2 FM or Rova and take part in Festival of Fortune and get in the draw to win your share of $5,000 worth of prizes like grocery vouchers, fuel vouchers, home deco and furniture vouchers, building and garden supply vouchers and cash. Festival of Fortune, brought to you by Indelible Homes, your building experts. Harrington Living, Manuko, beautiful furniture with 60 months interest-free. NZPMI, your local development experts. Logic Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
6: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
7: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havil Jolion, Havilet 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
9: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and that seat.
10: James, this is a radio ad.
9: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: Lunchbox with Ketan.
14: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
13: हम. Office shout out.
0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. दो लोगों ने मुझे मैसेज किया है regarding office shout out. वैसे आपने कॉल नहीं किया. आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, एक का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था रिगार्डिंग, बट ऑब्वियसली ही थॉट दैट इट इज लाइव, बट ऑफ कोर्स उनको मैंने बताया कि लाइव तो नहीं. एंड आई सेड लाइक यू नो कैन यू कम लाइव, देन ही सेड लाइक नो आई एम जस्ट गोना गो बैक टू वर्क, सो आई थॉट आई एम ऑलरेडी लाइव, बट इट्स फाइन. सो उन्होंने बताया था उनका वीकेंड की प्लान, सो इट वॉज वेरी ग्रेट. सो ही सेड दैट यू नो ही स्पेंड हिज सैटरडे ऑन आउट ऑफ द लाइक आउट ऑन द फील्ड, क्रिकेट खेला है. And then of course he said that he's very excited for Indian team as well, who is about to come over here and play against our home team. So he's very very excited, and this is going to be his first time he will be experiencing that. So actually unka naam puchna main bhool gaya main ki, because ye sab obviously I had to come live over here immediately, so I completely forgot to ask his name. But mere liye bhi ye pehla experience hoga. Hopefully bas finger cross hai ki barish na ho yaar, barish na ho, weather kharab na ho, because mere paas do hi ticket hai aur wo dono din agar sab kuch bhi hua tha, I would like no, that is my meri kehta na meri buri kismat hi kharab hai. But yes, thank you again, bro. If you're still listening me, thank you for the call. But I was expecting you to be live, but that's fine. That's why we understand your time as well. But yes, ऑफिस शाउट आउट के लिए ये रहे मैसेज जो मुझे आए हैं, दो आए हैं। एक प्रियंका का, वो कहती हैं शी इज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एंड बॉट चिकन एंड एवोकाडो सैंडविच फॉर लंच। अरे क्या बात है, मतलब आज तो एकदम पपाय वाला सैंडविच, फुल फुल हेल्दी। उसके बाद मोहित भाई ने लिखा है, वर्किंग फ्रॉम होम टुडे आई मेड सम राजमा चावल फॉर लंच, माय फेवरेट कुजीन इज पंजाबी इंडियन। अरे क्या ना क्या बात है मोहित भाई, थैंक यू। वैसे काफी टाइम हो गया, मैंने सुना नहीं था ये दैट यू नो हु मेड्स समथिंग, बिकॉज यूजली मैसेजेस आते हैं वो ये बताते कि मेरी मम्मी ने ये बनाया, मेरी बीवी ने ये बनाया, या फिर मेरी बहन ने, या मेरे भाई ने, या मेरे चाचा, मेरे पापा, मामा, जो भी है। लाइक दिस इज व्हाट द मैसेज यूज टू कम। बट काफी टाइम बाद इन्होंने मैसेज किया है मोहित भाई ने, वो कहते हैं कि उन्होंने खुद के लिए राजमा चावल बनाए हैं। आई लव राजमा चावल, एनी राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल लवर ओवर हियर।
11: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

What a song, Tu Hi Na Jaane. Sonu Nigam, Prakriti Pakkar, Kakkar, sorry, my bad. Prakriti Kakkar ki awaaz mein hai. But yes, abhi ke liye aapko ye bata deta hoon history of New Zealand ke baare mein. So yes, aaj ke din, yani ki 5 October hai, 1866 ki baat hai ye. Four men known as Maunga Tapu murderers were hanged in Nelson. जी हाँ, न्यूजीलैंड में उनको फांसी दी गई थी. उनका इन्वॉल्वमेंट ये था इन अ सीरीज ऑफ ब्रूटल रॉबरीज एंड मर्डर्स. और उनका जो गैंग है वो बेसिकली टारगेट करते थे ट्रैवलर्स अक्रॉस क्रॉसिंग द मोंगा टापू ट्रैक नियर नेल्सन, और उनको मार के उनसे पैसा हड़पना और जो भी उनकी बिलोंगिंग्स होती है उनको चुराना, ये वो काम करते थे. एक मेंबर रिचर्ड बर्गस लेटर कन्फेस टू द क्राइम. ये वो पकड़े गए थे और उन्हें कन्फेस किया था दैट दिस इज वॉट दे बीन डूइंग, और उसी वजह से जो पुलिस थी यहाँ की उन्हें हेल्प मिल सकी हेल्पिंग इन्वेस्टिगेटर्स अनकवर द ट्रुथ. सो यस, ये केस इतना शॉकिंग था कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल केसेस भी माना जाता है न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में. सो यस, आप ये जानते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ देम, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 20th सेंचुरी में आखिरी फांसी दी गई थी. उसके बाद से न्यूजीलैंड में कोई कभी फांसी नहीं देते हैं, यू नो, दे विल पुट देम इन द जेल फॉर द लाइफ टाइम इन प्रिजन बट नो फांसी. जी हाँ, बढ़िया. yes, आज की ये न्यूज़ कैसी लगी आपको, आप मुझे बताइए 5599 पे, और आप बस बने रहिए, मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्द एक और चटपटी खबर.

0: मस्ती में गाए जा जुबी जुबी जुबी जुबी। बहुत सही गाना यार, ये कौन सी फिल्म का था वैसे ओरिजिनली? ऐसा कुछ था शायद। बट यस, लेट मी प्ले समथिंग ओवर हियर, वेरी नाइस एक्चुअली। ना मैं आज से कुछ एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, होपफुली ये अगर बढ़िया चला तो मैं फुल कोशिश करता रहूँगा टू ब्रिंग दिस टू यू। एंड या लेट मी प्ले हियर, ये थोड़ा म्यूजिक थोड़ा कम कर देते हैं एंड लेट मी प्ले हियर। वेज इट देयर यू गो।
1: स्टील कॉम्बो,
0: नॉट दिस ये वाली नहीं। बट यस, ये एक तो ना एड्स इतने आते हैं, ये एड्स इज लाइक एवरीवेयर। और एड्स तो अच्छा भी है, आने चाहिए क्योंकि एड्स की वजह से तो बाकियों की कमाई होती है। सो यस बेसिकली वो तो अभी मिल नहीं रहा है, तो आई एम जस्ट गोना रीड इट आउट। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी देखी है। वेल ये स्टोरी आप ध्यान से सुनना। रूम नंबर 309, ये है स्टोरी का नाम। जो आज की जो स्टोरी है बेसिकली एक ऐसे होटल की है जहाँ एक कमरा जो है पिछले 15 सालों से बंद था। कहते हैं कि उस कमरे में रात के करीबन 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है। पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, दिस इज हॉरर, तो डोंट अज्यूम इट टू बी लाइक फनी और समथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाई आई रिड्यूस द जो फन वाला जो म्यूजिक था ना पीछे, मैंने वो बंद कर दिया। आई थॉट मे बी आई शेयर विथ यू एंड लेट मी नो। और ये मैं इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट कंटिन्यू कर सके काम पे। ऐसा नहीं हो क्योंकि रात में अगर सुनाया मैंने तो आप छोड़ो मेरी खुद की भी फट जाएगी। सो यस, 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में सुनकर लोगों की जो रूह है वो बहुत ही ज़्यादा कांपती थी। ये कहानी है राहुल नाम के एक आदमी की, जो एक रात ऑकलैंड से हैमिल्टन ड्राइव करके जा रहा था। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई और मौसम इतना ख़राब हुआ कि राहुल को रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकना पड़ा। होटल काफ़ी पुराना था, रिसेप्शन पर एक जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो बैठे थे और उन्होंने राहुल को बताया कि सिर्फ एक ही कमरा खाली है, रूम नंबर 309। राहुल ने चाबी ली और तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में पहुंच गए। कमरे में कुछ जो सब कुछ था वो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन बेड के सामने लगे मिरर पर एक अजीब सा मैसेज लिखा हुआ था, डोंट ओपन द डोर आफ्टर मिडनाइट। राहुल ने इसे कोई मजाक ही समझा और बिना ज़्यादा सोचे सोने की तैयारी करने लगे। रात के ठीक 12 बजे अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजे के अंदर जाकर पूछा कौन है। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज दरवाज़ा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राहुल ने पीप होल के बाहर देखा लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, इसी वजह से वो वापस बेड पर आकर लेट गए। कुछ ही देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार उस औरत ने राहुल का नाम लेकर बोला, राहुल प्लीज दरवाजा खोल दो। ये सुनकर राहुल के होश तो उड़ गए और उन्होंने किसी को अपना नाम बताया भी नहीं था और इस वजह से वो ज़्यादा काफ़ी शॉकिंग भी थे। घबराहट में उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से सिर्फ किसी की तेज़ सांसें लेने की आवाज़ ही आ रही थी। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आने लगी। राहुल बाथरूम में गया और मिरर पर लिखे शब्दों को देखकर उसका जो खून है वो एकदम से जम गया था, इनसाइड द बॉडी। और मिरर पर लिखा था, शी इज ऑलरेडी इनसाइड, ये लिखा हुआ था वहाँ पे। वैसे राहुल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कमरे के एक कोने में सफ़ेद कपड़े पहनी एक औरत खड़ी थी और उन्होंने लंबे गीले बाल जो है उनके चेहरे को ढक रहे थे और उन्होंने उनके जो पैर थे वो भी सही पोजीशन पे नहीं थे। राहुल दरवाजे की तरफ भागा और उन्होंने खोला और सीधा रिसेप्शन पहुंच गया। उसने जो बुज़ुर्ग आदमी थे उनसे कहा कि उनके कमरे में कोई औरत है। ये सुनकर बुज़ुर्ग आदमी का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने राहुल को बताया कि 15 साल पहले इसी होटल के रूम नंबर 309 में एक औरत की डेथ हुई थी। तब से उस कमरे में रुकने वाले कई लोगों ने आधी रात को एक औरत को देखने का दावा किया है। राहुल ने तुरंत होटल छोड़ दिया लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने होटल के बारे में पता लगाया तो उसे एक ऐसी बात मालूम हुई जिससे उनके जो डर था वो और भी बढ़ गया। वेल, होटल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रूम नंबर 309 नाम का कोई कमरा ही नहीं था। तो सवाल ये है, अगर रूम नंबर 309 होटल में था ही नहीं वक्त राहुल रात भर किस कमरे में रुके हुए थे और वो औरत कौन थी जो उसका नाम लेकर दरवाज़ा खुलवाना चाहती थी। वेल यस, ये जो राज है ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके होटल के दरवाजे पर रात के 12 बजे कोई अनजान आवाज़ आपको नाम लेकर पुकारे तो आप क्या करेंगे? दरवाज़ा खोलेंगे या फिर किस्मत में छोड़ देंगे? बताइए। वेल यस, 5599 इज़ द नंबर जहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो ये कहानी जो है ऑब्वियसली रियल नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। सो यस, मुझे बताइए अगर आपको ये कहानी जो है कैसी लगी। डू लेट मी नो 5599 पे।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
4: हम 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at the warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
2: Lunchbox with Kathan.
3: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी. हम
4: चटनी शॉट्स. चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे फटाफट से एक न्यूज पढ़ लेते हैं. वैसे यस, एक कुछ मैसेजेस आए मुझे भी, वो कह रहे हैं कि द स्टोरी वॉज ग्रेट एंड वी लव्ड द वे हाउ यू नरेटेड. Obviously, it did make us feel a little scared, but obviously, thank God, it was a daytime, so we can still continue the day, the work. इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, but thank you again for liking the story. But yes, अभी की एक बार बात बताता हूँ. एक news, East of Eden is a new ambitious screen adaptation starring Florence Pugh with parts of production film in New Zealand. यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे Dunedin and Oamaru यहाँ पे शूटिंग होने वाली है. जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब करेगा और मोस्टली इसकी फिल्मिंग जो होगी वो साउथ आइलैंड में होने वाली है. फ्लोरेंस पग ये है showing its landscape and historic location as well. अभी वैसे जो काम है सेट बनाने में वो तो शुरू हो चुके हैं. स्टोरी बेसिकली बेस्ड है जॉन स्टिनबेक्स क्लासिक नोवेल, जो कि फैमिली रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, बदला लेता है कुछ जेलसी और स्ट्रगल के बीच में ये गुड एंड ईवल को लेके ये कहानी फिल्म हो रही है. 7 एपिसोड की ये नेटफ्लिक्स सीरीज मिनी सीरीज जो कि 2024 और 2025 के बीच हुई थी थोड़ी बात, और उसका जो बाकी का पार्ट है वो अब आगे होने वाला है. सो इट्स सक्सेस इज रेजिंग होप फॉर मोर इंटरनेशनल प्रोडक्शन एंड टूरिज्म इन ओटैगो. जो उसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी लोकल जॉब्स भी लेके आया है कुछ टाइम के लिए, और ऑफ कोर्स काफ़ी बिजनेसेस को भी इंक्रीज किया है. कुछ इंटरनेशनल टूरिज्म वो भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है. विद स्ट्रीट्स इन ओमारो एंड डनेडिन, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया एकदम 20th सेंचुरी जैसा सेट क्रिएट हो रहा है. फिल्म ओटैगो साउथलैंड होप्स द सीरीज विल इंकरेज विजिटर टू एक्सप्लोर द लोकेशन एंड अट्रैक्ट मोर बिग बजट प्रोडक्शन टू द रीजन.
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट कॉमनवेल्थवॉल्ट.co.nz। That's commonwealthworld.co.nz. Smile.